FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून 2026। इस समय सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। थोड़ी ही देर में होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश

0: closely to maintain security, our long and uniquely open border.
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा. दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं. पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है. दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है.
2: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है. गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया. श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया. श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी. उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है. एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है. एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है. भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं. न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली. दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए. मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: हम आकाशवाणी कोटाबूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं. लीजिए श्रोताओं, सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना.

ईश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है, ये सभी बाधाओं को पार कर जाता है। ईश्वर का प्रेम असीमित और अनंत होता है, जो किसी भी बाधा या फिर कठिनाई को पार कर जाता है। हर मनुष्य को ईश्वर की शरण लेना आवश्यक है, तो आइए उसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और उनका स्मरण करते हैं।

ईश्वर की योजनाएं हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होती है, भले ही वे हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं के विपरीत हो। ईश्वर पर विश्वास रखें, वो आपके जीवन के हर हिस्से को सही दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि वे तो अंतर्यामी हैं, हम सबके स्वामी हैं।

ईश्वर का आशीर्वाद केवल शब्दों से नहीं बल्कि मन से किए गए विश्वास और निष्ठा से मिलता है। सच्चे मन से ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा से ही हम उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं, तो उनमें लगन लगाना आवश्यक है।

जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर एक मार्गदर्शक की तरह होते हैं। गिरने के बाद उठने की हिम्मत देते हैं ताकि आगे बढ़ने की क्षमता हमें मिल सके, और उनकी आराधना करना सर्वोपरि है।

प्रार्थना हृदय का उफान है, ये स्वर्ग की ओर एक सरल दृष्टि है, ये पहचान है और प्रेम की एक पुकार है।

भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्चना में आज आपने सुना शान जगजीत सिंह, अनूप जलोटा, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पोडवाल के स्वरों को। और इसी के साथ भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्चना अब यहीं पर संपन्न होता है।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर था सुरेश वाडकर का। आकाशवाणी कोटा की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आलोक में सुनिए वार्ता। विषय है भर्तृहरि के वैराग्य शतक से पाठ। वार्ताकार हैं दामोदर शास्त्री।
1: भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो

हमने विषयों को भोगा नहीं, उल्टे विषयों ने ही हमको भोग दिया। हमने तप नहीं किया, बल्कि तप ने हमें तपा दिया। हमने समय नहीं बिताया, किंतु समय ने ही हमें नष्ट कर दिया। इतना होने पर भी तृष्णा हमारी कम नहीं हुई, बल्कि हम वृद्ध हो गए। क्षान्तुम् न क्षमया गृहो चित सुखम त्यक्तं न संतोषतः सूढ़ा दुस्सह शीतवात तपन क्लेशा न तप्तम तपः ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमित प्राणैर्न संभो पदं तत्तत् कर्म कृतं यदेव मुनिभिः तैस्तैः फलैर्वञ्चितम्। क्षमा किया किंतु हमने असक्त होकर, संसार का सुख छोड़ा तब जब हम विवश हो गए। सर्दी गर्मी आदि सहन की किंतु तप न किया। धन का ध्यान किया किंतु भगवान का कभी ध्यान नहीं किया। हमने कर्म तो वो किया जो मुनि द्वारा किए जाते हैं, किंतु हम फलों से हमेशा वंचित रहे। वलिभिर मुखमाक्रांतम पलितैरंकितम शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते कृष्णैका तरुणायते। मुंह में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल पक गए और अंग शिथिल हो गए। किंतु कृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो अब भी युवा होती जा रही है। येनैवाम्बर खंडेन संवीतो निशिचंद्रमाः तेनैव च दिवाभानुः अहो दौर्गत्यमेतयोः। एक ही आकाश को नापने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों भ्रमण करते हैं, और

0: लोसा को प्राप्त होते हैं, किंतु कोई भी इस आकाश को नापने में सफल नहीं हुआ। अवश्यम या तारस्थिरतरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्य यति न मनो यत् स्वयममून् व्रजन्तस्वातन्त्र्यात् अतुलपरितापाय मनसः स्वयं त्यक्त्वा इहेति श्रमसुखमनन्तं विदधति। जब यह संचित विषय अंत में छूट ही जाएगा तो मनुष्य उसे प्रथम ही क्यों नहीं त्याग देता, क्योंकि जब अपने से ही छूट जाएगा तो हमें दुख होगा और जब स्वयं ही उसे हम छोड़ देंगे तो हमें महासुख की प्राप्ति होगी। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। वे कवि सबसे श्रेष्ठ हैं जो अनेक रसों में निष्णात हैं, ऐसी काव्य रचना करते हैं जिससे अपने कीर्ति से उन्हें न तो बुढ़ापे का भय होता है न मृत्यु का भय होता है। ऐसे कवि हमेशा संसार में अमर होते हैं।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आलोक। हम आकाशवाणी कोटाबूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर श्रीमती विमला डोकवाल से राजेश मावर की बातचीत। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत सदाबहार गीत। आठ बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम लोक संगीत का। आठ बजकर 30 पर होगा सुगम संगीत कार्यक्रम। नौ बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में। 9:10 पर फिर से आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का।

सुबह 9:30 का समय होगा बच्चों के कार्यक्रम बाल संसार का। आज के इस कार्यक्रम में बच्चे सुनेंगे मीठे बोल के महत्व के बारे में वार्ता श्री परमेश्वर गुप्ता से। चर्चा होगी संवाद में सभ्यता झलके विषय पर। बच्चों के मुख से आप सुनेंगे बाल गीत भी।

आप सुनेंगे परिचर्चा आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफर। प्रतिभागी होंगे डॉक्टर रामकृष्ण बागला, श्री अनिल कुमार जटिल, श्री राजेंद्र कुमार एवं श्रीमती अंकिता सेन। संचालन होगा राजेश महावर का। शाम 6 बजे होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम के समय 6:05 पर आप आनंद लेंगे फिर से फिल्म संगीत का। शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय होगा जैविक खेती और उसका महत्व। साथ ही चर्चा होगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर। जानकारी सुनेंगे फसल चक्र पर और जानेंगे नवीन कृषि सूचनाएं व मौसम की जानकारी। शाम 7:30 पर होगा कार्यक्रम चिरमी राजस्थानी लोक संगीत और रात्रि 8 बजे आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम रात रानी के फूल। तो जरूर सुने कार्यक्रम रात रानी के फूल।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे कार्यक्रम विवरण और रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 11:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला सभा की

आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: आहूतवान्। एषः निर्देशः बीएसएफ इति सीमा सुरक्षा बलस्य त्रिपुरा सीमा मुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तर राज्य सीमा क्षेत्र विषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमन्त्री विगत पञ्चवर्षाणां भूमि लेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंक सत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अन्तिमां तिथिं जून मासस्य सप्तम दिनांक पर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य षष्ठः दिनांकः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च उत्तम प्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकी दलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चण्डीगढे भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकष स्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडा समाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7 बजे का समय है। लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

नई नई सुबह, नया नया सवेरा, सूरज के किरण और हवा का बसेरा। इस खुले आसमान में जरा उठ कर के देखिए इस सूरज का चेहरा, है ना कितना सुंदर इस सुबह का सवेरा। नमस्कार, कोटा सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जब भी निकलती है तो सभी अंधकारों को मिटा देती है और फिर एक नई जीवन ज्योत जलती है जो हमारे जीवन में खूब सारा प्रकाश करती है। और श्रोताओं,

जीवन प्रकाशमय बन जाता है तो जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाने के साथ साथ जीवन में एक सुकून लौट आता है, मन खिलखिलाता है, मन गुनगुनाता है और हर दिन तरोताजा लगता है। तो अगर आपको भी जीवन को खुशनुमा प्रकाशमय बनाना है तो आलस्य त्याग कर आज की इस खूबसूरत सुबह का आनंद लीजिए, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत मधुर संगीत। फिलहाल नमस्कार कोटा।

आनंद लीजिए, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत मधुर संगीत। फिलहाल नमस्कार कोटा कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ, लीजिए आनंद इस मधुर संगीत का।

श्रोताओं, बड़ा ही खूबसूरत संदेश इस गीत में छिपा है कि विपत्ति सभी पर आती है, लेकिन जो व्यक्ति फिर से उठ करके तिनका तिनका जोड़ करके अपनी कुटिया को संभालता है, अपने जीवन को सुधारता है, वही सच्चा इंसान है। मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को उत्थान और भलाई के लिए भी होना चाहिए। और श्रोताओं, जीवन में कुछ सार्थक करने के लिए त्याग जो है वो बेहद जरूरी है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा। श्रोताओं आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है 7 जून को। और आपको बता दें इस वैश्विक अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वो है दूषित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना, उनकी पहचान करना और लोगों को सुरक्षित व पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना। और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए लीजिए सुनिए भेंटवार्ता विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर श्रीमती विमला डोंकवाल कुलगुरु कृषि विश्वविद्यालय कोटा से श्री राजेश महावर की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार कोटा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। सुबह सवेरे का ये वक्त है और क्यों ना इसी समय हम ये जान लें कि आज के दिन की क्या महत्ता है। श्रोताओं जब आप सुबह ही इस बारे में जान लेंगे तो आपका पूरा दिवस इसी चिंतन में निकलेगा कि हम अपना रास्ता सही दिशा के लिए चुन लें। आज हम विश्व खाद्य दिवस मना रहे हैं। आज हमारे साथ अतिथि के तौर पर हैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा कुलगुरु प्रोफेसर विमला डोंकवाल जी। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं
4: जी। नमस्कार सर
3: जी। आज हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, ऐसे अवसर पर हम खाद्य की सुरक्षा के लिए जो चिंतन करते हैं वो चिंतन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी महत्व का है। और पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्व का है लेकिन इंसान होने के बावजूद भी हमने पर्यावरण को दूषित किया और पर्यावरण का ये प्रदूषण हमें खाद्य की चिंता भी सामने लेकर आ रहा है। इस विषय पर आज आप यहाँ हैं तो बहुत सी काम की बातें और ऐसी अलार्मिंग जो साइन है वो हमारे श्रोताओं तक आपके माध्यम से पहुँचे, इसलिए आपके शब्दों का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे
4: जी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है समस्या से समाधान, साथ ही सुरक्षित भोजन सभी को उपलब्ध हो, इस पर ही हमारा फोकस रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि जो सुरक्षा है वो हम सभी के लिए आवश्यक होती है चाहे वो किसी भी रूप में हो। इसी प्रकार से खाद्य को भी हमें सुरक्षा प्रदान करनी आवश्यक हो जाती है। ये हमारे दिमाग से कई बार निकल जाता है कि अगर हम सुरक्षित खाद्य पदार्थ अपने आहार में नहीं लेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां होने की जो अवसर है या चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जैसे हम मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दो स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो खाद्य सुरक्षा है वो हमें क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लोगों का जब

0: नैतिक जो मूल्य जो होते हैं हमारे, जब हमारे जीवन से खत्म हो जाते हैं और हम मनुष्य हैं, वैसे हम पर्यावरण में देखें तो भगवान की जितनी भी कृतियां हैं मनुष्य के अलावा सभी सकारात्मक हैं।
1: क्या बात है,
0: है ना। मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है, तो जब उसने अपने लिए सोचना शुरू करा तो हमारी जो भूमि है वो भूमि भी हमारी धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि उसमें निरंतर पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते जा रहे हैं
1: जी।
0: दूसरी बात कि मनुष्य को लगता है कि चलिए जो उत्पादन हमारे पास आ गया है उससे और मुझे पैसा कमाना है, तो वो फिर मिलावट पर आ गया। तो उस मिलावट में वो फिर दूसरी अखाद्य जो चीजें होती हैं, चाहे उसको उसमें पत्थर को मिलाना है, रंग मिलाने हैं या और दूसरी चीजें मिलाती है, उस स्तर पर आ गए। तीसरे हम बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा विकास होना चाहिए, तो औद्योगिकीकरण है वो बहुत ज्यादा हुआ, और औद्योगिकीकरण के कारण जितना भी जो प्रदूषित जो चीजें निकल रही हैं उद्योग से, वो सारी की सारी उस पानी में चली जाती हैं जिस पानी से कृषि करी जा रही है
1: जी।
0: तो हम मतलब देखें तो हमने हर तरह से हमारी कृषि को प्रभावित कर दिया, जिसके कारण कि जो हमारी थाली में अभी जो आहार है वो पूरा का पूरा खराब हो चुका है। तो इसके कारण हम सबको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। हमें एक बार, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें यहाँ रुकना होगा। जो हमारी पद्धतियां चल रही हैं उस पर हमको, उस पर फोकस करते हुए अपनी पद्धतियों को फिर से, जो हमारी सनातन कृषि पद्धतियां थी उनको अपनाना होगा। उससे हमारा जो सुरक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा, वो हमारी, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। एक कुलगुरु होने के नाते भी आपने इतनी महत्व की बात ये कही कि खतरे की घंटी ध्वनि हमें सुननी चाहिए और तदनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। आपने ये बताया कि इंसान इस धरती की खूबसूरत कृति है, सबसे समझदार भी है, लेकिन दिशा गलत चुन ली गई है। रफ्तार भी ठीक है लेकिन दिशा गलत है। इसे यदि हम सही लेकर चलें तब काम हमारा बनेगा। जैसे कि इस वर्ष की थीम समस्या से समाधान आपने बताया, ये समस्या तो सामने है, समाधान के तौर पर हमें किस तरह से मानसिक रूप से तैयार होना होगा।
0: जी बिल्कुल, जो हम समस्या से समाधान की बात कर रहे हैं, देखिए समाधान इसका केवल एक ही है कि हमको जो हमारी कृषि पद्धति है उसको शुरू से ठीक करना होगा।
1: शुरू
0: से कैसे, कि जो खेत है उस खेत की जो मिट्टी है उस मिट्टी को हमें पहचानना होगा, और उस मिट्टी के जो भी हम जैसे बोलते हैं उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं, तो उसकी संख्या को निरंतर बढ़ाना होगा। और वो कैसे बढ़ेगा, जब हम, हमारे ये था कि कृषि और पशु दोनों को मिलाकर के अगर हम चलते हैं तो ही हम जो अच्छी कृषि है, क्वालिटी की जो बात करते हैं, वो हो पाता है। लेकिन हमने धीरे धीरे कृषि को पशुओं से अलग कर दिया। जहां हमने पशुओं को अलग करा वहीं पे हमारी कृषि खराब हो गई। तो अब हमें एक बार ये सोचने की जरूरत है कि फिर से पशुओं को हम अपने साथ रखें, और उनके जो भी हम बोल बात करते हैं कि पंच जो तत्व हैं पशुओं के, उससे हमारी खेत की जो मिट्टी है वो फिर से अच्छी होने लगती है। उसका कार्बन जो तत्व होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जीवाणु उसमें बढ़ जाते हैं, और जो बीज जब हम उसमें डाल रहे हैं तो वही वाली बात है कि जब खेत अच्छा होगा तो उसमें जब आप बीज डालेंगे, उपचारित बीज डालेंगे, तो अपने आप में हमारी खेती भी अच्छी होगी। तो हमें हमारी जो, मैंने फिर पहले भी कहा था, सनातन कृषि पद्धति जो हमारी पहले थी वही हमें आज वापस लेनी पड़ेगी, वो ही एक उसका विकल्प है। और उस पर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसने कार्य भी शुरू कर चुके हैं। हम, हमारे यहाँ पर प्राकृतिक खेती उसके ऊपर पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें गायों से जो भी हमको मिल रहे हैं उसकी जो चीजें, गाय मतलब गोबर है, गौमूत्र है, उससे उसकी खाद बनाई जाती है, और उसी से फिर हम उसका जो है आगे उस, केवल उसी के प्रयोग से ही हम खेती उगा रहे हैं। उसके बाद हमने एक और कोशिश करी कि जैसे हम बात करते ना वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट भी साथ में लगाया, और उसके बाद हमने केमिकल के साथ भी किया। तीनों का जब हमने जब तुलनात्मक उसमें शोध किया तो प्राकृतिक खेती के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। वर्मी कंपोस्ट भी हम काम में ले रहे हैं लेकिन उसके भी और भी बहुत अच्छे आए हैं। तो हमको ये चीजें ध्यान में देनी होंगी।
1: क्या बात है, आपने इस बात पर भी जोर दिया कि हम जब से क्वांटिटी की तरफ चले गए तब से ये बात सत्य है कि क्वालिटी डम्प हो गई, और उस डाउन क्वालिटी को अप करने के

0: यानी कि समस्या से समाधान की जब हम बात करेंगे, तब आपने यही बताया कि जो पंच तत्व हैं प्रकृति के, वो हमारे शरीर को पोषित करते हैं
1: जी।
0: एक समय था जब ये कहा जाता था कि भोजन हाथ से करना चाहिए, जिससे कि पांचों उंगलियां पंच तत्व का प्रतीक हैं। अब जब से चम्मच आ गए तो भोजन जो थाली में था वहां भी गुणवत्ता कम हुई है, और फिर जब भोजन की शुरुआत जहां खेत से होती है वहां भी इन पंच तत्वों की कमी आई है। अब जब आपने ये बात कही कि हम गाय और उसके द्वारा जो तत्व हमें प्राप्त होते हैं उसे हम फसलों में लेकर आ रहे हैं, जिससे हमें फिर से गुण मिले, लेकिन क्या वाकई में ये किसानों के लिए चिंता की बात नहीं हो जाएगी कि जब उन्हें अधिक उत्पादन का जो लत लगी है वो फिर से उन्हें कहीं परेशान तो नहीं करेगी?
1: जी बिल्कुल जी। कई बार क्या होता है कि जो जिनका सपना एक उद्योग चल रहा होता है, ये एक एक बाजार में ये बात छोड़ दी गई है कि जो प्राकृतिक खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे, उनका उत्पादन कम हो जाएगा
0: जी।
1: ऐसा कतई नहीं है। अगर हम जो भी वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि प्राकृतिक खेती के क्या क्या क्या हमको उसमें काम में लेना है, कितनी मात्रा में काम में लेना है, तो उसका उत्पादन भी उतना ही हो रहा है। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी प्रकृति अलग तरह की होती है, हमको ये लगता है कि हम बुद्धिमत्ता पूर्वक जो भी हमें बताया जाता है हम उसमें अपना अपना ज्ञान और जोड़ लेते हैं और उसके बाद उसका दुगना प्रयोग करते हैं,
0: चाहे वो ज्ञान नकारात्मक दिशा में।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। अब जैसे हम अगर यूरिया की बात करते हैं या पेस्टिसाइड्स जो होते हैं जितनी भी तरह के हम काम में लेते हैं, तो उसमें तो यही कहा गया ना कि कुछ एक सीमित मात्रा में बताया गया, लेकिन पहले हमने इनको क्या बोला कि ये हमारी दवाइयां हैं, ये हमारे खेत को सुधारेंगी, हमारी फसलों को सुधारेंगी। तो देखिए दवाई का एक साइकोलॉजिकल पार्ट है कि वो हमको सही करता है, ठीक है। और अगर हम एक बार दवाई हमने ली, नहीं असर हुआ, तो हम क्या कहते हैं आधी और दवाई ले लेते हैं
0: जी।
1: तो किसान की भी मनोवैज्ञानिकता वही है। वो उसने मान लीजिए एक बोरी उसकी आवश्यकता थी, उसको लगा कि अरे एक बोरी से मैं डेढ़ बोरी भी डाल सकता हूं,
0: शायद उत्पादन बढ़ जाए।
1: हाँ। लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव आना शुरू हुआ
0: जी।
1: अब हमने ये बात शुरू करी कि इसको दवाई नहीं, देखिए शब्दों का भी हमें एक प्रयोग जो होता है वो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। अब हमने कहा ये जहर है, हम सभी यही कहते हैं ना कि अरे ये सब जहर है, इन जहर का प्रयोग मत करिए। तो अब किसानों को भी लगने लगा है, तो वो क्या करें कि अब एक बोरी की जगह, अब क्योंकि आदत है अभी तक हम उसी पद्धति पे काम कर रहे थे, तो अब एक की बजाय वो आधी पे भी आ गए हैं।
0: शने शने सुधार होगा,
1: बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पर होगा
0: जी। हाँ, तो इसी की हम भी आशा करते हैं। आप कुलगुरु हैं, आपके माध्यम से जब यूनिवर्सिटी के अनेक प्रोफेसर्स सीखते हैं और उनके द्वारा फिर कृषक भाई भी सीखते हैं
1: जी,
0: ये सीखने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर सतत ये प्रयास किया जाए तो हम सार्थक दिशा में चल पड़ेंगे। बात हम करें खेत की, वहां की भूमि का आपने जिक्र किया, भूमि भी इतनी बीमार हो गई कि ये भी अलार्मिंग साइन है। किसानों को इस ओर आपके क्या शब्द होंगे?
1: खेती के लिए हमें भूमि को बचाना बहुत जरूरी है। हम बात करें जैसे खेत बचाओ की हम जो बात करते हैं, और अभी अगर आप ध्यान दें तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी हैं, उनका पूरा जो फोकस है वो इसी बात पर है कि हमको खेत भी बचाने हैं
0: जी।
1: जो कि अभी 1 जून से लेकर के हमारे 31 जून तक चलेगा ये। और आपने भी बात कही कि सतत प्रयास जब हम करते हैं तो वो स्थिर होते हैं, और स्थिरता के लिए हमें सघन अभियान चलाने होंगे। हमने अभी हमारे कृषि जो विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से, जो हमारे 6 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हमने ग्राम कृषि महोत्सव आयोजित किए, जिसमें लगभग 1000 से 1100 की संख्या में मतलब किसान आते रहे। और उसका हमारा जो थीम थी वो यही थी कि हमको संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे खेत बचे रहेंगे, और खेत बचेंगे तो ही हम कृषि की बात कर पाएंगे। खेत बचाने से तात्पर्य यही है कि हमें कम से कम पेस्टिसाइड्स काम में लेने हैं, नेचुरल जो चीजें हैं, प्राकृतिक जो चीजें हैं, चाहे वो गाय से प्राप्त हो रही है या हमें वर्मी कंपोस्ट की हम बात करते हैं उनसे प्राप्त हो रही है या हम बायोचार बायोमास की बात करते हैं, इन पर ही हमको फोकस करना होगा। इससे हमारी कृषि की लागत भी कम होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा।

0: और हम जिस मतलब जिसको हम चर्चा में यहाँ लेकर के बैठे हैं कि खाद्य सुरक्षा,
1: जी
0: वो भी हम उसको अचीव कर पाएंगे।
1: जी बहुत ही सुंदर बातें आपकी हैं। अब आसमान से मेघ बरसता है, पानी आता है, लेकिन कभी कभी जब फसलों की कटाई होती है उस दौरान हम ये देखते हैं कि आसमान से कुछ और भी बरसता है। हमारे खाली मैदानों पर, मकानों की छतों पर कुछ काले काले चिन्ह होते हैं। पता लगता है कि किसान भाइयों ने अपने खेत की
0: पराली है,
1: पराली है उस जला दी है। यहाँ बहुत समझाइश की जा रही है, लेकिन आप अगर इस विषय पर और जोर देंगे तो खेत का जो उपजाऊपन है वो और बरकरार रहेगा।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। कई बार क्या होता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम अपना ज्ञान भी लगाते हैं, कि कोई भी हम जब कार्य करते हैं तो अगर आप पूर्व की जो पद्धतियां उसको देखें तो सबसे ज्यादा पंजाब है जहां पर की पराली बहुत ज्यादा जलाई जाती थी, क्योंकि गेहूं का उत्पादन वहां पे बहुत ज्यादा होता था।
1: जी
0: तो ऐसे में प्रदूषण पूरी तरह होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि किसानों को हमने दूसरी तरह की पद्धतियां बताई कि पराली को अगर हम मतलब उसके रोल बना दें तो वो हमारे चारे के काम में भी आ जाते हैं। उससे और दूसरी तरह की ईंट बनानी शुरू करी, ब्रिक जो होती है उस तरह से बन जाती हैं। साथ ही हमने कृषि विश्वविद्यालय में जीरो टिलेज पे काम किया। जीरो टिलेज मतलब कि जो पराली जो वहां पे रह गई है उसको वापस उस खेत में रोटावेटर चला करके उसमें मिक्स कर दिया जाता है और फिर खेत को खाली छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा कि जो पराली वहां पर है वो धीरे धीरे उसमें एक तो मॉइस्चर रिटेन करेगी, जैसे पानी की भी कमी हो जाती है तो पानी मॉइस्चर रिटेन करती है और उससे को खाद में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अब क्योंकि हमारे कुछ कृषक जो भाई हैं उनको ये पता नहीं है और वो उसको जलाने का काम करते हैं। जलाने से क्या हुआ कि जो पराली के मतलब हम बोल रहे हैं कि उससे हमको जो खाद मिलनी थी वो भी नहीं मिली, साथ ही हमने जो खेत के अच्छे जीवाणु थे उसको भी हमने जला करके खत्म कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: तो हमने बल्कि अपना ज्यादा नुकसान कर लिया।
1: जी तो ये आपके द्वारा दी गई जानकारी हो सकता है हमारे किसान भाई समझ पाए, और क्योंकि किसान भाई यही चाहते हैं कि हम उत्पादन भी लें और हमारी जो आजीविका होती है उसका भी स्तर हम बढ़ाएं। तो आपने जो भी बिंदु बताए उससे दोनों ही बातें सिद्ध हो रही हैं किसान भाइयों की। आपने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के महत्व पर इतने महत्व की बातें कही। हम ये चाहेंगे चलते चलते कुछ और विशेष बिंदु आप हमारे श्रोताओं को, खासकर किसान भाइयों को कहें।
0: जी मेरा एक ही निवेदन रहेगा कृषक भाइयों से भी और जो वैज्ञानिक हैं जो इस पर काम कर रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और यौगिक खेती एक और आया है टर्म, उस पर काम करने की आवश्यकता है। यौगिक खेती से तात्पर्य कि हमको अपने खेत पर रोज जाना है, क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस ये हो जाती है कि हम एक बार बीजा मतलब उसमें बीज रोपण कर देते हैं फिर हम 7-8 दिन बाद वापस आते हैं, तो वो 7-8 दिन का जो अंतर होता है खेत से अपना जो कृषक है उसका उतना कॉन्टेक्ट जैसे बोलते हैं कनेक्ट होना। जब आप रोज जाएंगे तो आपको उस खेत की हर एक चीज के बारे में आपको पता होगा, कहाँ पे क्या बीमारी लगी है, कहाँ पे कितनी कमी आ रही है, तो वो कनेक्ट होने से होता है। जब वो 7-8 दिन बाद जाता है तब तक कोई बीमारी तब तक लग चुकी होती है और उसका फिर समाधान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जब हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं जिसमें कि हमने कहा कि गायों की जो गोबर है वो हमको डालना है उसमें, उससे धीरे धीरे जो हार्डनेस है सॉइल की मृदा की जो हम बोलते हैं कठोरता वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसमें उत्पादन जो है वो बढ़ रहा है। तो हम मेरा जो सबको एक संदेश है कि हम खुद भी अच्छा खाएं, दूसरों को भी अच्छा खिलाएं, क्योंकि जो खाद्य मतलब सुरक्षित जो भोजन है वो केवल स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, उसका समाज हमारा जो है वो स्वस्थ समाज बने, साथ ही समृद्ध राष्ट्र बने, ये उसकी नींव है।
1: क्या बात है।
0: और हम भी अच्छा खाएं जैसा मैंने पहले कहा और लोगों को भी जागरूक बनाएं इसके लिए, क्योंकि एक अभियान चलाना पड़ेगा हमको और जब अभियान जब चलता है तो हमें सफलता निश्चित मिलती है।
1: बिल्कुल, आज आपके आकाशवाणी आने के अवसर पर ये जो अभियान है इसे और गति मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर श्रीमती विमला डोंकवाल, कुलगुरु कृषि विश्वविद्यालय कोटा से श्री राजेश महावर की

0: Bătșit.
1: उन्नीस से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।
2: लीजिए श्रोताओं, नमस्कार। कोटा कार्यक्रम में अब आपको जानकारी दें आज के सूर्यास्त और कल के सूर्योदय के बारे में। आज सूर्यास्त होगा शाम 7:20 पर। और कल सूर्योदय होगा 5:35 पर। तापमान की अगर बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहेगा 40.3°C। न्यूनतम तापमान 29.3°C।

शहर की गतिविधि में अगर बात करें तो तैराकी में कोटा के कनिष्क ने 2 स्वर्ण जीत करके बनाया है रिकॉर्ड। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के तरणताल में आयोजित 75वीं सीनियर स्टेट एक्वेटिक चैंपियनशिप में कोटा के कनिष्क नागर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो श्रोताओं नमस्कार, कोटा कार्यक्रम में बस आज इतना ही। अब वक्त तो चला है आपसे अनुमति लेने का। इस कार्यक्रम का संयोजन रहा तेजराम मीणा का, सह सहयोग रहा राजेश महावर का। अब दीजिए निशा रावल को अनुमति। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत सदाबहार गीत। फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं हेमलता के स्वर में। शब्द रचना है रविंद्र जैन की, संगीत रविंद्र जैन का।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर के स्वर में, शब्द रचना है रविंद्र जैन की और संगीत भी रविंद्र जैन का। फिल्म का नाम है हिना।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत सदाबहार गीत। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला गीत।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वर में। शब्द रचना है रविंद्र जैन की, संगीत रविंद्र जैन का। फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत सदाबहार गीत में अब सुनिए अंतिम गीत। अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम और सुरेश वाडकर के स्वर में। शब्द रचना है समीर की, संगीत आनंद मिलिंद का। फिल्म का नाम हस्ती।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: तो श्रोताओं, फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
9: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार

अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के

0: का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की।

0: भी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और

0: राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 8:15 का समय है। प्रस्तुत है लोक संगीत।

लोक संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं बशीर अहमद खान के स्वर में ये लोक संगीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए अगला गीत सरिता राज के स्वर में।

सरिता राज द्वारा गाए इसी लोकगीत के साथ अब लोक संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम।

सुगम संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा रावल का प्यार भरा नमस्कार। जब सुर खनकते हैं बेजान साजों से तो झूम झूम लहराता है ये दिल। सुगम संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, सुगम संगीत में पहली गजल आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के स्वर में।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। लीजिए सुनिए अगली गजल आशा भोसले के स्वर में।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगली गजल जगजीत सिंह के स्वर में।

0: जगजीत सिंह के स्वर में ये गजल अभी आपने सुनी। आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के प्रिय श्रोताओं, आपके दिल की धड़कनों को छूने के लिए एक बार फिर से आ रहा है वही प्रोग्राम जिसका नाम तो याद ही होगा आपको, रात के सुकून भरे पलों में काव्य संगीत और अल्फाज की अदायगी से आपकी धड़कनों को महकाता हुआ कार्यक्रम रात रानी के फूल, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर रात रानी के फूल। अब ये कार्यक्रम सुनिए अपने बदले हुए दिन यानी रविवार को रात 9 बजे।
0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। श्रोताओं लीजिए सुनिए अगली गजल पंकज उदास की स्वर में।

पंकज उदास के स्वर में ये गजल अभी आपने सुनी। आप आकाशवाणी कोटाबूंदी के चंबल चैनल से सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अंतिम गजल चंदन दास के स्वर में।

चंदन दास द्वारा गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा है कि ये विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी संदेश को नहीं मानने और किसी तरह का भुगतान नहीं करने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा कल जोधपुर रेंज कार्यालय में अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर बैठक कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने इन क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देकर अपराधियों, अवैध गतिविधियों और अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। श्री शर्मा नए आपराधिक कानूनों का प्रयोग कर पुलिस के ध्येय वाक्य आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय की दिशा में काम करने की बात कही।
1: जो ड्रग माफिया हैं उनके संपत्तियों

0: को नष्ट करने की जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है। आज की भी बैठक में ड्रग्स के खिलाफ और किस तरह से प्रभावी कार्रवाई हमें करनी है इस पे विशेष रूप से चर्चा की। राजस्थान में एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना हो रही है, इसके लिए भी हम लोग कोशिश में हैं कि वो जल्दी ही क्रियाशील हो। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पे हमारी जो निगरानी है साइबर क्राइम में उसको हमने बढ़ाया है।
1: बैठक में जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह सहित जोधपुर ग्राम

0: निगरानी है साइबर क्राइम में, इसको हमने बढ़ाया है।
1: बैठक में जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह सहित जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बालोतरा, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और जालौर जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। जैसलमेर के सरहदी गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना 2 के तहत विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। भारत पाक सीमा से सटे 30 गांवों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, पलायन रोकना और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
2: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ये योजना का संचालन होता है। इसमें इस बार टोटल 184 विलेजेस लिए गए हैं। इसमें से जैसलमेर जिले के 30 विलेजेस को आइडेंटिफाई करा है। बेसिकली जो सरकार चाह रही है कि उसमें जो हमारे कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, 4G कनेक्टिविटी हो गया, दूरभाष कनेक्शन हो गया, टीवी कनेक्टिविटी हो गया, तो इन पैरामीटर्स में सभी चयनित गांवों का सैचुरेशन हो।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वे कल जयपुर में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की बैठक में भूमि आवंटन से संबंधित बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से आपसी तालमेल के साथ लंबित मामलों का निराकरण करने और हर प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने भूमि उपलब्धता से जुड़ी बाधाओं को दूर कर बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये दिन हर साल 7 जून को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में श्री शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रदेश भर में काउंटडाउन कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न शहरों, पार्कों, स्टेडियमों और योग संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वर्ण नगरी जैसलमेर में भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। व्यास बगीची में लोगों ने अनेक आसनों के जरिए नियमित रूप से योग करने का संदेश दिया। योग दिवस की इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस बीच अहमदाबाद में चल रही विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत के रोहन तायडे ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने ये उपलब्धि लड़कों की सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल प्रतियोगिता में हासिल की। चैंपियनशिप में भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। फिट इंडिया मिशन के संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में साइकिल सवारों ने भाग लिया। पाली में पुलिसकर्मियों ने रैली निकालकर लोगों को सेहत के प्रति जागरूक रहने और नियमित व्यायाम और फिटनेस का संदेश दिया। अजमेर में राजस्थान पुलिस और 11 राज यूनिट एनसीसी की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान यूनिट के सीओ कर्नल अजय दाधीच ने दैनिक जीवन में साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
3: साइकिल चलाने से हम सिर्फ पोल्यूशन का ही नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हैं, हम अपनी सेहत के ऊपर सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इफ यू वांट टू फिट योरसेल्फ, एक बार संडे को, नहीं तो कभी भी छुट्टी पे, और जैसे बच्चों की तो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उसमें साइकिल का ग्रुप बना के आराम से कहीं ना कहीं इवेंट रखना चाहिए कि आज यहां जा रहे हैं, कभी इस फ्रेंड के यहां जा रहे हैं।

0: आप फिट रहेंगे।
1: राज्य में सक्रिय परिसंचरण तंत्र के असर से कल कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर सहित करीब 13 शहरों में बारिश हुई। इसके साथ ही बीकानेर के लूणकरणसर में ओले गिरने के भी समाचार हैं। आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 44.3 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच रात का न्यूनतम तापमान भी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। विभाग ने आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में बरसात की संभावना व्यक्त की है। आंधी बारिश की गतिविधियों में कल से कमी आने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। कल से पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट जीत लिया है। जापान के काकामिगाहारा में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला हॉकी टीम ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टीमों को बधाई देते हुए कहा कि ये खिलाड़ी भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। और संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत आज प्रदेश में कई स्थानों पर साइकिल रैली के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी की चंबल चैनल से बोल रहे हैं। 9:10 का समय है। लीजिए श्रोताओं सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की आवाज में। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत आदेश श्रीवास्तव का। फिल्म का नाम चलते चलते।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी कोटाबूंदी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अगला गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में। शब्द रचना है समीर की और संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम दिल का रिश्ता।

अलका याग्निक और कुमार सानू के स्वर में ये गीत अभी आपने सुना। लीजिए सुनिए अगला गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यस बॉस से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत जतिन ललित का।

0: आकाशवाणी कोटा बूंदी के प्रिय श्रोताओं, आपके दिल की धड़कनों को छूने के लिए एक बार फिर से आ रहा है वही प्रोग्राम जिसका नाम तो याद ही होगा आपको, रात के सुकून भरे पलों में काव्य संगीत और अल्फाज की अदायगी से आपकी धड़कनों को महकाता हुआ कार्यक्रम रात रानी के फूल, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर रात रानी के फूल। अब ये कार्यक्रम सुनिए अपने बदले हुए दिन यानी रविवार को रात 9 बजे
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए श्रोताओं, सुनिए फिल्म संगीत से अब अंतिम गीत। अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण हरिहरन और हेमा की आवाज में।

शब्द रचना मिताली शशांक की और संगीत राम लक्ष्मण का। फिल्म का नाम हम साथ साथ हैं।

उदित नारायण और साथियों के साथ गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल संसार।

0: बोलो बच्चों, जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: प्यारे बच्चों, आपके अपने चहेते कार्यक्रम बाल संसार में मैं हूं आपकी दीदी लीना, और मेरे साथ है बहुत प्यारे प्यारे से मधु स्मृति महिला एवं बाल कल्याण उत्थान संस्थान के कुछ बाल कलाकार अपनी प्यारी सी प्रस्तुतियों के साथ। तो सभी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। तो आज का अनमोल सूत्र, जीवन में हर चीज को केवल तर्क से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से भी समझना चाहिए। तो इसी के साथ करें अपने कार्यक्रम की शुरुआत।
2: जी दीदी, प्रभु वंदना के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं।
0: अच्छा, तो अपना नाम तो बताइए आप लोग।
3: मेरा नाम वेदिका है।
4: मेरा नाम मुस्कान कुमारी है।
5: मेरा नाम कृतिका कुशवाहा है।

0: ही है।
1: मेरा नाम अमन है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे एक कविता सुनानी है।
2: सुनाओ।
1: फूलों के मुस्कान बसी धरती की अनमोल कहानियाँ, हर पंखुड़ी में छिपी हुई प्रकृति की प्यारी नादानियाँ। सवेरे के शीतल बयार में खिलते हैं नन्हे सपने, हवा संग झूमते गाते बांटते खुशबू रतन के अनजाने।
3: जी दीदी, ये सुनकर मुझे भी एक प्रेरक प्रसंग याद आ रहा है। मेरा नाम कृतिका कुशवाहा है और मेरा प्रेरक प्रसंग कुछ इस प्रकार है। इसका शीर्षक है नदी और चट्टान का संघर्ष, यानी दृढ़ता और निरंतरता। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कठोर से कठोर परिस्थिति को भी लगातार किए गए प्रयास से बदला जा सकता है।

0: एक ऊंचे पहाड़ से एक नदी बड़ी तेजी से नीचे बह रही थी। रास्ते में एक बहुत बड़ी और भारी चट्टान खड़ी थी। नदी रोज उस चट्टान से टकराती और अपना रास्ता बदल लेती। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। सदियों बाद एक दिन उस विशाल चट्टान ने एक बीचों बीच एक गहरा छेद हो गया। नदी ने चट्टान को चीरते हुए अपना सीधा रास्ता बना लिया। किसी ने नदी से पूछा, तुमने इस कठोर चट्टान को कैसे काटा? तुम्हारे पास तो कोई औजार भी नहीं था। तो नदी ने उत्तर दिया, मैंने चट्टान को अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी निरंतरता से काटा है। मेरे पानी की बूंदे बिना रुके सालों तक उस पर गिरती रही। जीवन में कठिन लक्ष्य बड़ी ताकत से नहीं बल्कि लगातार मेहनत करने से हासिल होते हैं।
1: बिल्कुल कृतिका, जानते हैं बच्चों, प्रकृति के अनुपम वरदानों में से हवा के साथ साथ जल भी बहुत जरूरी है। और इतनी गर्मी में बारिश को लाने में कौन मदद करता है जानते हैं? वो है समुद्र।
2: हाँ दीदी, समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनाता है और बादल से वर्षा होती है जिससे नदी नाले बनते।
1: बिल्कुल यही होता है। हाँ, समुद्र में छोटे छोटे पौधे जिसे फाइटोप्लांकटन कहते हैं, ये 50-60% तक ऑक्सीजन बनाते हैं। सागर गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रखता है। और आयात निर्यात यानी आवागमन में भी समुद्र की बड़ी मदद मिलती है।
3: जी दीदी, पूरी दुनिया में 5 महासागर भी तो है।
1: बिल्कुल, कौन से हैं जानते हो?
3: जी, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर।
2: वाह दीदी, कितनी हेल्प करता है समुद्र हमें, तो मजा आ गया ये सुनकर।
4: बिल्कुल सही है, मैं प्यारी सी कविता सुनाऊं मैं?
1: अच्छा, अपना नाम तो बताओ।
4: मेरा नाम कुणाल है।
1: अच्छा कुणाल, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
4: मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ।
1: अच्छा सुनाओ, क्या सुनाओगे?
4: हरी भरी वादियाँ, सुंदर से नजारे, कल कल बहते झरने, वो मन को प्यारे, चहचहाते परिंदे, लहराती हवाएं, धरती माँ की गोद में जीवन मुस्कुराए।
5: प्रकृति माँ की गोद में, ये जीव जंतु जो प्रकृति ने हमें दिया है, जंगल वगैरह, ये भी हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं। जी मेरा नाम सोमेश सेन है।
1: क्या सुनाएंगे आप?
5: मैं एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। खरगोश और कछुए की कहानी हम सबने सुनी है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसमें कछुआ जी जाता है और खरगोश हार जाता है। परंतु आज मैं उससे आगे की कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस बार खरगोश कछुए के पास जाता है और उससे दौड़ के लिए बोलता है कि आज हम वापस रेस करते हैं। उनकी रेस स्टार्ट होती है, वो जीत जाता है। खरगोश आगे निकल जाता है और आसानी से रेस को जीत जाता है। फिर कछुआ उससे वापस जाता है और दौड़ के लिए बोलता है। इस बार कछुआ मार्ग को चेंज कर देता है, तो वो जब रेस स्टार्ट होती है, खरगोश आगे निकल जाता है, परंतु जो मार्ग था वो एक नहर को पार करके जाने वाला था, तो खरगोश वहां पर आकर रुक जाता है। अब वो नहर को पार नहीं कर पाने में असमर्थ था और कछुआ आसानी से नहर को तैर कर पार कर लेता है और रेस जीत जाता है। इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। एक शिक्षा तो ये, खरगोश ने अपनी गलती को पहचाना और उसे दोहराया नहीं। दूसरी शिक्षा ये, कछुए ने अपनी काबिलियत को पहचाना, क्योंकि वो जानता था और वो तैरना जानता है, तो उसने अपनी काबिलियत को पहचाना और रेस बदल दी और रेस को जीत
6: चुका। सोमेश भैया की कहानी सुनकर मुझे एक कविता याद आई, क्या वो मैं सुनाऊं?
7: मेरा नाम सुमित अग्रवाल है, मैं कक्षा 7th में पढ़ता हूं।
1: क्या सुनाएंगे आप?
7: पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ समय बचाते हैं, मीठे फल देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है, फिर भी बेचारे कटते, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।
1: कि हम सबको जो भोजन है, हम उसकी कीमत को कितना समझते हैं, आप बता सकते हैं?
8: हाँ दीदी, हम भोजन करने से पहले भोजन मंत्र का उच्चारण करते हैं धन्यवाद देने के लिए, जो कि इस प्रकार है। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में, लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। ओम शांति शांति शांति।
3: हमें कैसा भोजन करना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भोजन ताजा हो और इसी के साथ हम संतुलित आहार लें, पैकेज फूड का उपयोग नहीं करें, भोजन से पहले हाथ धो लें।
2: हाँ हाँ, पता है, जिससे हम बीमार ना हो। जितना खाएं उतना ही थाली में लें, ताजे फलों का रस लें और गर्मी से राहत लें।
9: अच्छा खाना अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा तन मन, तो खेल में कूद में लगता मन।
1: अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए कि खेलों की बात हो रही है, यानी कि आपका मन खेलों में लगता है?
9: जी हाँ जरूर, मेरा प्रिय खेल कबड्डी है और मैंने इसकी शुरुआत 10 वर्ष से ही कर दी थी और मैं इसे खेलने में बहुत अच्छा हूँ।
1: अच्छा, तो अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अमन?
9: मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। अभी जो 11 जून बच्चों के खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उस पर मैं इस बात को बता रहा हूँ अपनी। कबड्डी भारत का एक लोकप्रिय खेल है,

0: ये खेल शारीरिक फुर्ती और साहस और टीम भावना का विकास करता है। मैंने विद्यालय और जिला स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और रजत पदक भी जीता। इसी से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और मैं कबड्डी में अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ।
1: वाह अमन, तुम्हारी बात सुनकर जो जोश आया है ना, वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नारे की याद दिलाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है।
2: नज्म लिखी थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। इनका जन्म दिवस 11 जून को होता है।
1: जी दीदी, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में मुझे प्रेरक प्रसंग भी याद आ रहा है।
2: बिल्कुल सुनाओ।
1: सन 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध काकोरी आंदोलन चलाया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए भी उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था। एक दिन जेलर ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? बिस्मिल मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति मातृभूमि के लिए जीता है वह मृत्यु से नहीं डरता। मेरा शरीर समाप्त हो सकता है लेकिन आजादी का विचार कभी नहीं मर सकता। फांसी से पहले उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा था। माँ भी उतनी ही साहसी थी। जब मुलाकात हुई तो बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, मैंने सोचा था मेरा बेटा बहादुर है, फिर ये आंसू क्यों? बिस्मिल ने उत्तर दिया, ये आंसू मृत्यु के डर से नहीं बल्कि माँ के प्रति प्रेम के हैं। 19 दिसंबर 1927 को वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और वंदे मातरम तथा भारत माता की जय के नारे लगाए। इससे हमें शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति देश समाज और अपने आदर्शों के लिए समर्पित होता है उसे कोई भी कठिनाई नहीं झुका सकती।
3: वाह वेदिका दीदी, आपके मुंह से ये बात सुनकर मुझे भी एक जोशीली कविता याद आ गई जिसे मैं अपने सभी बाल साथियों को सुनाना चाहता हूँ।
2: अच्छा, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम बाबू सिंह है।
2: कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
3: मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
2: अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि इस जोश में आप क्या सुनाना चाहते हैं?
3: मैं कविता सुनाना चाहता हूँ।
2: सुनाइए।
3: हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता हमारे पुरखों की सौगात है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारिया, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारिया, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, जय हिंद जय भारत।
2: अच्छा बच्चों, इसी तरह के एक नायक जिनकी बात हम करते हैं, एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और साथ ही आदिवासियों अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है। 9 जून इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये एक गुरु बनकर उन्हें प्रेरणा देते। अंधविश्वास छोड़ो, शराब छोड़ो, साफ रहो, चोरी बेईमानी न करो। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार के बढ़ते अत्याचारों के दौरान उनके खिलाफ आदिवासी लोगों की एक सेना बनाई। वे आदिवासियों के लिए देवता समान बन गए। कैसी लगी यह बात? क्या आप लोगों को ये जानकारी थी?
4: नहीं।
2: ठीक है, अब आपको ये सारी बातें याद रहेगी।
1: हाँ। कि दीदी, ये सब सुनकर मेरे लिखी एक कविता याद आ रही है जो मैं अपने बाल साथियों को सुनाना चाहती हूँ। क्या दीदी मैं सुनाऊँ?
2: बिल्कुल, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मेरा नाम पायल मीना है।
2: क्या बात है, आपने खुद ने कोई कविता लिखी है?
1: जी दीदी। हाँ जी दीदी, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। ये एक शहीद की कविता है जिसमें एक बेटा अपने पिता का इंतजार करता है। एक 8 साल का बालक जिसके पिता शहीद हो जाते हैं और वो अपनी माँ से प्रश्न करता है कि माँ, पिता के वापस न आने के बारे में प्रश्न करता है कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, आंगन में बैठा बैठा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। माँ उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देती है, फिर भी वो अपनी माँ से प्रश्न करता है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है, है बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितने प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार,
4: दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात। बेटा अपनी माँ से प्रश्न करके थोड़ी देर बाहर खेलने जाता है और वापस अपनी माँ के पास आता है। किसी के

0: मिठाइयां भी और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता क्यों है सोना घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार। माँ उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देती है। बेटा अपनी माँ से रूठ कर अकेले जाकर बैठता है और वापस अपनी माँ से कहता है, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूँगा मैं तुम्हारी न सुनूंगा, ऐसा क्या हुआ जो बताने से इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बार। की विडम्बना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। एक तक अपनी माँ को देखता है, एक तक अपने पिता को देखता है, फिर वो अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया था अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा आपकी बार।
1: हाँ, तो पायल में आपकी कविता सुनकर ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में दुख के साथ कभी कभी सुख भी आते हैं और सुख के साथ कभी कभी दुख भी आते हैं, तो इन बातों को छोड़कर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए मैं एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। आज का प्रेरक प्रसंग है खाली जेब। एक फकीर से किसी ने पूछा, आपके पास कुछ नहीं है फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? तो फकीर बोला, जेब खाली है पर मन नहीं, जिसके मन में शुक्र है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। इनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि खुशी चीजों में नहीं, खुशी अपनी सोच में होती है।
2: प्रोग्राम में हमारे साथ मधु स्मृति संस्थान के प्रिंसिपल महोदय भी आपसे वार्ता करने के लिए हमारे साथ है, तो हम सब उनका स्वागत करते हैं।
3: नमस्कार बच्चों, जीवन में संवाद में सभ्यता का क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें सभ्यता और संस्कार और हमारे चरित्र को संवाद के माध्यम से हम निर्माण कर सकते हैं। आपने अभी नमस्कार करके अभिवादन किया, तो ये किसका प्रतीक है? हमारे सम्मान का, हमारे संस्कार का प्रतीक है, हमारे गुरु और शिष्य की परंपरा का प्रतीक है। गुरुकुल पद्धति के अंदर गुरुजी प्रणाम क्या आ गया है, इस प्रकार का वाचन करके वो नम्रता की सीख देते थे। और नम्रता से जिस प्रकार से आम का पौधा होता है, आपने देखा है, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, फिर उसमें आम आते हैं, तो आम आने के बाद उसकी टहनियां झुक जाती है, झुकती है ना, तो उसकी टहनियां झुकना किसका प्रतीक है? विनम्रता का। तो गांधी जी के दर्शन में जब भी संवाद हुआ, उन्होंने हमेशा विनम्र भाव में ही अपनी बात को रखा और उनकी बात को कोई नकारा नहीं गया, क्योंकि उसमें क्रोध का भाव नहीं होता है। एक अब जैसे किसी महात्मा से, किसी संत से, किसी ऋषि से, किसी मुनि से जब उनको प्रेम पूर्वक विनती करते हैं तो वो वरदान देते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी के मामले में क्या था कि उनका स्वभाव बहुत क्रोधित था, जो भी आता था वो उनको ज्यादातर श्राप देते थे। अब एक दिन उन्होंने किसको चुना? भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये मेरे पास जूंटी खीर है तुम्हारे लिए, अब इस जूंटी खीर को तुम अपने शरीर पे लेप करो और फिर मुझे बताओ कि तुमने इस लेपन से क्या सीखा। तो भगवान उनके भाव को समझ गया, अगर वो मना करते तो क्या करते? श्राप दे देते। इसलिए उन्होंने जूंटी खीर का लेपन किया, तो लेपन करने से वो प्रसन्न हुए और भगवान को उन्होंने वरदान दिया कि जिस प्रकार खीर की मिठास से व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, प्रेम से रहता है, उसी प्रकार से पूरी दुनिया में, सृष्टि में तुम्हारे को प्रेम के नाम से जाना जाएगा, कृष्ण प्रेम के नाम से जाना जाएगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण की भी उन्होंने परीक्षा ली। उसके बाद वो एक बार राजा अम्बरीश के दरबार में गए। राजा अम्बरीश के दरबार में गए तो एक दिन पहले एकादशी होती है, दूसरे दिन उसका पारणा होता है। तो पारणे का समय होने वाला था, दुर्वासा ऋषि पहुंचे, उन्होंने कहा, राजा ने विनती करी कि महाराज जी अब आ गए तो पारणे का समय होने वाला है, आप भी पारणा कीजिए, हम सब भी पारणा करेंगे। दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए कि मैं भी स्नान करने जाऊंगा, उसके बाद मैं आता हूं। अब उधर स्नान करने चल गए, उनको समय अधिक हो गया और इधर राजा अम्बरीश के पारने का समय होगा, तो साधु ब्राह्मण उन्होंने

0: परामर्श किया कि समय तो निकला जा रहा है, पता नहीं दुर्वासा ऋषि कितनी देर में आएंगे, क्यों ना हम चरणामत ले लेते हैं। तो चरणामत से उन्होंने चरणामत लेकर के भगवान का अर्पण कर लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर के श्राप देने की सोची और अपने क्रोध से एक राक्षसी को उत्पन्न किया। एक राक्षसी को उत्पन्न करके उस राक्षसी को वो कहा कि इस राजा का वध कर दो। राक्षसी राजा का वध करने के लिए दौड़ी। राजा अमरीश ने क्या किया, भगवान विष्णु की शरण ली, भगवान विष्णु की विनती करी। विनती करके भगवान का ध्यान किया कि अब आप ही बचा सकते हो, मैंने तो आपका ही व्रत का पालन किया है। तो भगवान और सुदर्शन चक्र से उस राक्षसी का वध कर दिया और फिर दुर्वासा ऋषि की ओर वह सुदर्शन चक्र पीछे छोड़ दिया। तो दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे भगवान शिव के पास गए शरण में कि मैं आपकी शरण में हूं, भगवान मुझे इससे बचाओ। भगवान शिव ने कहा मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा मुझे बचा लो इस सुदर्शन से, मैं नहीं बचा सकता। फिर अंत में श्री नारायण के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए और उनसे शरण मांगी कि मुझे इससे बचा लो, कि मैं भी नहीं बचाऊंगा। राजा अमरीश के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो, वो फिर आपको बचा सकते हैं। तो अंत में दुर्वासा ऋषि का अहंकार शांत हुआ और राजा अमरीश से क्षमा मांगी और भगवान ने सुदर्शन चक्र वापस लिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि क्रोध और अहंकार दोनों हमारे दुश्मन होते हैं, इसलिए हमें हमेशा विनम्रता से विवेक के साथ हमें कार्य करना चाहिए। हम दूसरे की बात को एक तो ध्यान पूर्वक सुने, बीच में नहीं बोले। फिर क्या करें, हम हमारी जो भाषा है वो विनम्र भाषा का हम प्रयोग, आप कैसे हो, कैसे आना हुआ, इस प्रकार की हम भाषा का प्रयोग करें। इसके बाद में हम क्या करें, अपने जो भी विचार हम उनको कहें वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट हमारे सरल शब्दों में ऐसे हो जो उनको आसानी से समझ में आ जाए, सामने वाले को समझ में आ जाए। कोई भी संवाद में आप मतभेद रखो, जैसे आप किसी बात को नहीं मान रहे हो लेकिन उस व्यक्ति की आलोचना न करें। जैसे पिताजी कहते हैं कि भाई आपको 6 बजे खाना खा लेना है या आपको 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन आप ये स्वीकार नहीं करते तो मैं तो निकलूंगी बाहर, ऐसा नहीं। इससे इसका मतलब ये नहीं आप उस बात से विरोध हो सकते हो लेकिन अपने पिताजी से यानी व्यक्ति से विरोध नहीं करना, यानी व्यक्ति की आलोचना नहीं, केवल स्टेटमेंट यानी कथन की आलोचना कर सकते हो आप। अब यदि संवाद में कहीं क्रोध पैदा होता है तो क्या होता है, जहाँ माता पिता गुरुजनों और अन्य प्रकार से हमारे ऊपर क्या होता है, क्रोध पैदा हो जाता है तो क्या होता है, बच्चा आत्महत्या कर लेता है, करता है ना, वो सहन नहीं कर पाता, विवेक खो देता है, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन में चला जाता है बालक। इस प्रकार संवादहीनता की स्थिति में क्रोध में कई बार आत्महत्या और पलायन जैसा कदम उठाता है, घर छोड़ के चला जाता है। कई स्थिति में ऐसा आता है जहाँ माता पिता में झगड़ा होता है तो बालक घर छोड़ के चला जाता है, उसकी बात को स्वीकार नहीं करते, नहीं प्रॉपर संवाद नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारा व्यक्तित्व का आचरण उच्च स्तर की ओर ले जाने वाला होना चाहिए।
1: लेकिन सर कई बातें ऐसी याद आती है, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो अभी मेरे मतलब मैं पढ़ता हूँ ना, वैसे वो पढ़ाई नहीं करता और चाय की टपरी भी काम करता है, तो ऐसा मैं क्या करूँ कि वो मेरी तरह पढ़े और मेरे साथ खेले, मेरे साथ पढ़ाई करे।
0: हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये बाल श्रम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो बालक घर से बाहर कोई कार्य करता है उसकी मजबूरी है, आर्थिक कारण है, सामाजिक विषमता है, जिसके कारण से बालक को बाहर कार्य करना पड़ता है। बालक काम करने में कोई बुराई नहीं है अगर वो उस काम से वो कौशल अर्जित करता है, 14 वर्ष के बाद वो कौशल अर्जित करके और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है, अपनी आजीविका का साधन बना सकता है, लेकिन ये बाधा उसकी शिक्षा में नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में अगर बाधा आ रही है, शिक्षा के समय अगर वो कार्य कर रहा है, और इसका निवारण बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र चला रखे हैं, सरकार ने जैसे हमारी संस्था ये भी मदद करता है, कई प्रकार के NGO है वो भी मदद करते हैं, इसमें समाज सेवी भी मदद करते हैं। और हमें भी क्या करना चाहिए, हम जो पढ़ते हैं, अभी आप लोग भी पढ़ रहे हो, तो आपकी जो पुरानी बुक्स है उसको ऐसे जरूरतमंद को हम, तो वह शिक्षा में उसके काम आ सकती है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है, इस प्रकार और भी हम उसके भोजन में, तो संस्थाएं मदद कर, शिक्षा में भी मदद कर सकती है। अगर उसको बच्चे को दिक्कत है

0: तो वह यहाँ संस्थान में आए और संपर्क करें तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी होती है। बहुत सारे सामाजिक संस्थान जुड़े हुए हैं, वो भी आपको मदद कर सकते हैं। तो उसको केवल काउंसलिंग की आवश्यकता है। अगर उसकी काउंसलिंग होती है, वो आता है, तो उसकी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समाज में हर तरह के लोगों के लिए दिया हुआ है।
1: सर, आपकी इन सब बातों को सुनकर मेरे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो कि चाय के होटलों में काम करते हैं, या फिर कहीं पर जो भी कारीगर के काम होते हैं उनमें काम करते हैं, वो पत्थर उठाते हैं, तो इन सब बच्चों के ये सब काम करने के पीछे क्या कारण हो सकता
0: है? उसका जो मुख्य जो कारण समझ में आता है, परिवार की स्थिति में माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि वो बालक का परवरिश सामान्य तरीके से कर सके। आर्थिक कारण उससे जुड़ा हुआ, सामाजिक कारण भी है, समाज में कुछ वर्ग आज भी है। तो इस एक तो सोच को बदलना पड़ेगा कि बाल श्रम मजबूरी में कर रहा है वो बात है, लेकिन उसका एक समय निर्धारित होता है, लेकिन शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। और शिक्षा से जोड़ने के लिए तो सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, यहाँ तक कि रात्रिकालीन पाठशालाएं भी खोली गई है। दिन में बच्चा काम करके रात्रिकालीन पाठशालाएं, ओपन स्कूल की स्कीम बहुत अच्छी है, जिसमें घर बैठ के बालक पढ़ सकता है और परीक्षा भी दे सकता है। सरकार ने उसके लिए ओपन स्कीम में, मतलब किसी स्कूल की बाउंडेशन नहीं है कि वो स्कूल में जाके और 10 बजे से 4 बजे तक पढ़े। ओपन स्कूल में उसको फ्री में बुक्स मिलती है, सारे मटेरियल मिलते हैं, और वो घर जाके पढ़ के केवल उसको परीक्षा देनी होती है। तो बहुत सारी स्कीम है, लेकिन जो मूल कारण है वो आर्थिक स्थिति है। तो इसमें माता पिता को समझाइश करनी है कि माता पिता उसको ऐसे दुर्घटना जहाँ घटित होती है ऐसे कारखाने में न भेजें, पत्थर वाले कारखाने में न भेजें, उसको ऐसी सुरक्षित जगह पर भेजें जहाँ पर वो सामान्य रूप से रह सके और उसकी परवरिश हो सके। इस प्रकार से हम उस बालक के भविष्य को संवार सकते हैं। और स्वयं से भी संस्थाएं तो आगे आती है इसमें, अगर पता लगता है तो वो इसमें काम कर रही है सब।
2: तो प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप सभी की मदद करने के लिए तैयार हैं? अच्छा व्यवहार अपने जीवन में बनाए रखेंगे?
3: सर, आपकी बातों से प्रेरित होकर हमें बहुत जोश आया और एक गीत याद आता है।

0: बिल्कुल, बहुत प्यारा सा वादा है आप सभी का। तो बच्चों, हमें सहयोग किया इस कार्यक्रम को सुंदर और प्यारा सा बनाने में तकनीकी सहयोग श्री विनीत कुमार स्नेही जी का और घनेन्द्र कुमार शर्मा का, संयोजन श्री तेजराम जी मीणा और प्रस्तुति श्री राजेश महावर जी की रही। आप सभी मधु स्मृति संस्थान के नन्हे कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप नन्हे कलाकारों और जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे करते हैं अगले रविवार मुलाकात। तो तब तक के लिए करते हैं हम सब जय हिंद,
1: जय हिंद।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने अपने आप को फील करवाता हूँ और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूं कि क्यों हैं आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से।
0: हाँ।
1: जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे और मम्मी मुंबई से ही है। तो हम सभी आठ भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता।
0: हाँ।
1: और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो था
0: ना, था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला के थे, आजा बुलाओ, बुलाओ इसको, बुलाओ उसको, बुलाओ, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेंस आए, अभी टेरेंस नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: वो जरूरत नहीं क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। हम चार भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और

0: मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश एनवायरनमेंट में पला पड़ा. बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था. और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके. आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वॉज जस्ट हैप्पी और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था. फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, मेरा हाथ उठ गया. तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया. बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया. उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है. तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा. तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया. ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ. और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था. तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था. तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है. तो मैं मौका ढूंढता हूं कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे. तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया.
1: अब इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय. चलिए गाइए तो गाना तो बताइए.
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम, ओके,
1: बोनियम का, ओके,
0: बोनियम 1975 में. तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था. उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था. फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक हिंदी फिल्म की थी, शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन.
0: तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया. तो ऐसे फिर अजीब दास्ता है. हाँ. अजीब दास मेरी बहने रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी. तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी रहता, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं. तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में. तो वही
1: याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे. तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तान के लिए मैंने बहुत बार पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है. तब मेरी आवाज एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वाज सूटिंग दैट सॉन्ग. फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन.

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है,
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ।
0: लेकिन हमारे
1: मैंने
0: लिए
1: कुछ
0: तो...
1: भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है,
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मारनी पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था, तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर मतलब अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गए ना आप, तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता है।
1: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया, तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर वो

अपने आप को एकदम जो भी है आपके अंदर, जो टैलेंट, जो फन है, वो बताना। कभी कभी लोगों को, लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देख कर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया। तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे, तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया तो मेरी डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, लिए अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल,
1: 17 साल की थी,
0: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया। तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उन पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्हें कि आप ले लो, यू नो ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे, आप सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली क्यों, देखो मैं पढ़ाई में होशियार था तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया, पैसे अच्छे रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे

0: लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तो इतना पढ़ा लिखा है, तो इतना होशियार बच्चा था, तो डॉक्टर बनने वाला था, और फिर तुम माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया है, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में डांस की एक एक लग्जरी है, ये यू नो ये अमीर लोगों के लिए यू नो शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब यू नो आइदर टीचर है या यू नो फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूं, तो उन्होंने सब ने ना कर दी। मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
1: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी।
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
0: करेक्ट।
1: वो हर चीज से डरता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए,
0: हाँ,
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो।
0: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है। हाँ। लेकिन हमारे मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए, वो
1: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने दो कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश हो
1: तो खुशी मिल गई।
0: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गई, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
1: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने यू नो एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूं तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूं, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
1: लेकिन एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
0: नहीं होता। तो वो अकल बाद में फिर जो जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और यू नो तो ये बड़े बड़े ख्याल, मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो। तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अच्छा टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में
1: जरूर,
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे? किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा कहना, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ कई बार आई एम टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना, नहीं है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
1: नहीं सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुए में उड़ा, ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है। मैं

0: ये गीत तो हमने सुन लिया।
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, देखते क्या है, तब तक तो मुझे कोई थी नहीं, मैं मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है। लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है, उससे बहुत कम है। तो कभी वो लत या लगाम लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेंस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया।
0: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा था कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
0: हाँ।
1: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहां जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपने परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊं, वो

0: में लगा पड़ा रहता था, और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा, और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त पे मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था, और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊँगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के बगे गए। तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है। मैंने
1: फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में यू नो सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, यू नो स्कूल कॉलेज फंक्शन सब यू नो दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया, और फिल्म जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती
0: है
1: वो वाला डांस सेक्शन,
0: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको
0: तो रीना मेरी यू नो वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये यू नो प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मतलब कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे मतलब यू नो पार्टीज में से, नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं नहीं नहीं, ये तुमको आना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में यू नो
1: कहानी है
0: तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए,
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे स्कूल्स में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके न्यूएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग,
1: उसके ट्रिक्स अलग होते हैं, वो तो आप जानते नहीं थे। फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा।
0: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बिठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है आप बताओ। आशुतोष सर वाज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत. इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत, आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स. इस मैं नहीं करना, मैं बोल रहा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है. सर क्यों डरे हो, आपको आता है? मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया था.

0: ऐसे वो हमारी जिम्मेदारी और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरामैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है, आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू'ल बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा, मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली, गाना ए आर रहमान का गाना था वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब इन्हों नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे दो दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा, अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज अ बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए, मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए, ऐसे आप दो दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ, तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी तीसरे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े कलाकार को बड़ी फिल्म थी
0: हाँ।
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था,
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तट्टी के सहयोग एचआर पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: पिटारा में आज
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, इस अंक में आज हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश आपके लिए लेकर आए हैं। आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुई इस विविध लोकरंगी संध्या में प्रतिभागी कलाकार थे डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, ममता वर्मा और नरोत्तम बेन। सहभागी कलाकार थे तबला पर शशांक नीलेश प्रभु, हारमोनियम पर सिद्धार्थ मेस्ता, ढोलक पर सुधीर जंगम और सहवाद्य पर थे जयंत पात्रिकर। इस विविध रंगी लोक संगीत संध्या में नगर सेवक शिवा शेट्टी, निदेशक अभियांत्रिकी राजेश बेलदार, सहायक कार्यक्रम निदेशक डॉ संतोष जाधव, विविध भारती के अधिकारी व कर्मचारी और जाने माने साहित्यकार कलाकार उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया ममता सिंह और यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 21 मई को संपन्न हुए लोकरंग कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी अपनी स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है और इस मौके पर विविध भारती के सृजन भारती के अंतर्गत हमने लोक रंग का आयोजन किया है। लोक रंग के जरिए आप ये देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों का जो संगीत है उसके भीतर एक अंतरधारा है जो हम सबको आपस में जोड़ती है और जो ये दिखाती है कि भारत विविधता में एकता का देश है। तो आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं और देश के अलग अलग राज्यों के लोक संगीत की बेमिसाल प्रस्तुति के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। ये सृजन भारती का लोक रंग क्या कार्यक्रम है, इसका परिचय देने के लिए मैं विविध भारती के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर संतोष जाधव को आमंत्रित कर रहा हूँ।
2: नमस्कार, आज के इस महफिल में सारे कलाकार और उपस्थित सभी संगीत प्रेमी, रेडियो प्रेमी, विविध भारती प्रेमी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी भारत की गौरवशाली प्रसारण परंपरा की एक प्रतीक है। आकाशवाणी ने अपनी 90 बरस की प्रेरणादायी अविस्मरणीय यात्रा पूर्ण की है। इस 90 बरस में आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और संगीत जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। इस गौरवशाली स्मरणोत्सव के अंतर्गत विविध भारती द्वारा इस लोक रंग महफिल का आयोजन किया गया है। इस महफिल में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। भारत विविधता से समृद्ध देश है। यहाँ की लोक संस्कृति, लोकगीत और लोक धुनों में हमारी मिट्टी की खुशबू है। सांस्कृतिक विरासत का आनंद लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस मंच पर उपस्थित कलाकार अपनी मधुर प्रस्तुतियों से लोक संगीत पेश करेंगे। तो आइए लोक रंग की इस सुरमई शाम में हम शामिल होते हैं। आकाशवाणी के 90 बरस की एक गौरवशाली यात्रा को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा, भारत की जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, भारत के जितने लोगों तक पहुँचता है पानी, उनसे भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है आकाशवाणी। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष यादव। और अब अतिथि

क्योंकि स्वागत की बारी है। आज के इस कार्यक्रम में आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग पुष्प गुच्छ के जरिए स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पौधा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फूल तो मुरझा जाते हैं पर पौधा कायम रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो कलाकार मौजूद हैं, एक एक करके मैं उनका जल्दी से परिचय देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट

0: डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव माननीय राष्ट्रपति के हाथों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। बीते बरस वे पोर्ट ऑफ स्पेन, नेल्सन आइलैंड और सेंट लूसिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा माटी सम्मान से सम्मानित किया गया है। विभा रानी हिंदी और मैथिली की जानी मानी साहित्यकार हैं। 20 से ज्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं, जिनमें कहानी संग्रह, नाटक, उपन्यास और लोक कथा संग्रह शामिल हैं। वे एक सक्रिय थिएटर और फिल्म कलाकार हैं। लाडली मीडिया सम्मान और नेमी चंद जैन नाट्य लेखन सम्मान से सम्मानित की जा चुकी हैं। मोहन राकेश सम्मान, इंडियन ऑयल वीमेन अचीवर सम्मान उन्हें मिल चुका है। लाल कप्तान, शमशेरा, महारानी, माँ जैसी फिल्में और वेब सीरीज उन्होंने की हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं मधुबन की मुनिया, प्रेग्नेंट फादर, दूसरा आदमी, पीर पराई, आवतनिक प्रेम करें, अगले जन्म मोहे, बिटिया न कीजो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया था। प्राध्यापक प्रशांत मोरे एक बहुत मशहूर लोक कवि हैं। कथा, तिच्चा, लग्नाची और स्पर्श जैसी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, गाए हैं और स्वरबद्ध किए हैं। हिंदी, उर्दू, मराठी मुशायरे में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने किया है। आईचा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के भारत भर में 5600 शो हो चुके हैं, कमाल का रिकॉर्ड। नामदेव ढसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना सातारकर, कबीरांची दीन, माय अर्थात आईची कविता, खंड एक और खंड दो, अभिवादन बा भीम। नरोत्तम बेन विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं। जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम बेन यहां बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियां करने वाली हैं। तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम, तबला और ढोलक पर मौजूद हैं और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारी मिट्टी की उस मीठी खुशबू को, जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गाँव की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते। तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विदुषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। जरा जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक खास रंग लिए होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की परंपरा रही। विवाह गीत जब गाते हैं तो उससे पहले देवी गीत गाते हैं, तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
2: आप सभी के हमारे प्रणाम स्वीकार करें, अपने माटी की सेवा खातिर यहाँ बुलावल ले लेंगे। आज मुझे विविध भारती ने याद किया है अपनी लोक रंग त्रिजन भारती की श्रृंखला में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आकाशवाणी की अहम भूमिका है मुझे गढ़ने में। हर समय मुझे आकाशवाणी ने एक सर्वोत्तम मंच दिया और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो सरस्वती का हम लोग यहाँ भोग में सुरस्वती कहीं ले जाए, तब सुनावत है आप सबके
1: सुरस्वती मैया की जय।
2: हाँ।

0: क्या बात है।
1: जाने माने सभी जो उपस्थित गण हैं सबका मैं मंच से स्वागत करती हूँ, बहुत आभारी हूँ विविध भारती की।
0: शुक्रिया शैलेश जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
1: देखिए विविध भारती आपका 90 वर्ष,
0: तो उस पर कुछ गा रही।
1: हाँ, सुनाई गाती हूँ।

0: सुंदर अंदाज में आपने पेश किया, तो ये भी बता दीजिए कि इन मौकों पर इस ये लोकगीत गाया जाता है।
1: ये तो सोहर है, 150-200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। जब जब प्रसव पीड़ा में नारी होती है तो सोहर इसका नाम ही है। तो इसके स्वर ऐसे हैं कि जिनसे वो अपने सारे कष्ट को भूल जाती है, मतलब वो हर लेता है, क्योंकि म्यूजिक और स्वर जो ईश्वर तक जाने का इतना एक सहज माध्यम, इसीलिए माना गया है कि इसके जो भाव हैं, इसके जो लगाव हैं सुरों के, वो ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं।
0: तो अब लोकगीत का कौन सा वाला रंग छेड़ रही हैं, जिस रंग में हम अभिभूत होने जा रहे हैं?
1: अब देखिए, मैं तो बलिया की हूँ, बागी बलिया, और वहाँ की मैं पहली गायिका महिला कलाकार हूँ, बलिया की पहली जी, महिला गायिका कलाकार हूँ। तो कितनी सारी वहाँ पे मुझे हमारे शब्दों में कहते ताने वगैरह भी सुनने को मिलते थे, लड़की के गवाओ तरन के ब्याह करी इनके घर के लड़की से। आज तो सब लोग, हर दूसरा घर का बच्चा या बच्ची कहता है देखिए देखिए हमारी बच्ची गा रही है, इधर देखिए कितना अच्छा गा रही है, उसको इतने सारे एक्सपोजर हैं। पर हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल था। हमारी माँ कहती थी हम नहीं शादी करके आए हैं, इनको लड़का बना के घुमा रहे हैं, कैसे होगा इनका शादी ब्याह कायस्थ के घर में। तो घर में ही इतनी दुविधा थी। अगर मैं बलिया से सीधे भैया बम्बई ये नहीं बतावा, यहाँ देखा था सब बदल, मेट्रो गाड़ी चल रहा है, यहाँ देख के बड़ा घबराएगा भैया कहाँ सही आए, जगह आए कि नहीं आए। अच्छा तो देखे कि भाई अब उनके पति तो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको साड़ी भेजे एक नहीं दुईठो, मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, भरारू घूमने आ रही है, पहन के घूमो यार, लोग देखें तो देखिए वो कैसे चल रही है। अरे

0: गाड़ी की यात्रा तो बड़ी मजेदार रहल है।
1: शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है, उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलिहान है, पूरी संस्कृति है, परम्परा है। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, प्रशांत मोरे जी जो प्राध्यापक भी हैं और संगीत के बहुत जानकार हैं, संगीतकार भी हैं, तो प्रशांत मोरे जी आपको माइक दे रहे हैं। जरा महाराष्ट्र के लोक रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति दीजिए।
2: सर्वांना नमस्कार। भाषा कळते ना, जरी भाषा कळली नाही तरी भावना कळेल, आणि भावना ह्या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
0: बिलकुल
2: है क्या नाही, भाषा बदलते भावना बदलत नाही। भावना काय असते, भावना तीच असते। सैमा

0: बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले ही इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है, वहाँ के मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति विभा रानी देंगी। खासतौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया, झिझिया के बारे में बताइए विभा जी क्या होता है, और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए।
1: बिहार के उत्तरी भाग मिथिला सची मैथिली भाषा है, सृजन भारती सब कार्यक्रम में ऐठा हमरा आमंत्रित कैल गेले। हम विविध भारती के बहुत बहुत आभारी छी। हमर करियर के शुरुआत आकाशवाणी से भेल है, तो बुझाइ जे आकाशवाणी हमरा लेल नैहर माने मायका अछि। अभी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है। एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रणझुंझार शिवशाही। अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि उसमें मैथिली में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं।
0: क्या बात है।
1: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि भी बैठे हुए थे। भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए, उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई, तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा, तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब, हम प्रेम करब। तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बोले वहीं से बैठे बैठे हम माहुर लौ कर मर रहब, मतलब मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो। तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली, तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा। ममता, आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने अभी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना। झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवती की आराधना की जाती है। भगवती के भाई हैं भैरव, ब्रह्म उनके बोलते हैं, उनकी आराधना की जाती है।

0: लोकगीतों में कहानी किस्से होते हैं, मनुहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है, तो एक जाट और जटिन जब बात करते हैं तो उस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, जरा बताइए विभाजी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी फसल, तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन उसकी पत्नी उसको वो कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में मेघ दिखे तुम मुझे आवाज़ देना और मैं वहाँ से आऊँगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई, जट परदेश में था, कमाता रहा, जटिन के संदेश का इंतज़ार करता रहा। जटिन भी अकेली थी, वो अपने मायके चली गई। 12 साल के बाद उसने देखा कि आकाश में काले काले मेघ आए हैं, तो उसने वहीं से आवाज़ दी, ए जटिन।

जट्टा को आवाज सुनाई थी, उसने वहीं से कहा, एलियोगे जट्टिन एलियो, एलियोगे जट्टिन एलियो, आयब गेलियोगे जट्टिन आयब गेलियो। और जट्टा आ गया, जटिन भी मायके से आ गया। अब जब 12 साल के बाद पति पत्नी मिले हैं तो थोड़ा सा मान मनोबल तो होगा ना। तो जटिन कहती है, तुमसे मैंने जब जब टीका मंगवाया, गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनोगी। तो ये इस जट जटिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है विभादी, बहुत अच्छा आपने गाया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभाजी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने गावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अब अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहां अगर आप किसी का नाम पूछें, कहे भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो जवाब आएगा तुम्हें क्या करने, मतलब नाम बताने से पहले व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें करना क्या है, नाम से क्या करना है। लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रेम है, नरोत्तम बेन बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। तो भैया नानू भैया इसी के साथ शुरू करो आज की महफिल, फिर तुम्हारी मर्जी जो तुम गावे चाहो।
2: तो प्रणाम पहले सभी जनन को, नरमदे हर, जय महाराष्ट्र जय भारत।
3: ये बम्बुलिया और एक लमटेरा, ये बहुत ही अद्भुत चीज है बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड का सबसे फेमस फॉर्म है राई। बुंदेलखंड के फोक की आप बात करेंगे तो राई के बिना मामला अधूरा होता है, ऐसा ही ये है बम्बुलिया और लमटेरा।

लमटेरा यानी लंबी टेर, लंबी टेर लंबी आवाज। तो बहुत अच्छी जानकारी लोगों के से हमें इनके बारे में मिली कि पहले क्या होता था कि लोग गांवों में रहते थे, गांवों से जाते थे, खेत के रास्ते से गुजरते थे, मेला देखने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो एक साथ निकला करते थे वो लोग। और एक बंदा कहीं बहुत दूर है बैलगाड़ी में, उसने वहां से कुछ एक लाइन बोल दी, कुछ एक लाइन उसने गा दिया, फिर पीछे का कोई भी बंदा है जिसने सुना बैलगाड़ी पर चला रहा है तो उसकी एक लाइन सुनकर जो है उसका जवाब दिया करता था। फिर किसी और छोर पे कोई दूसरा बंदा होता था, उसने सुना, उसको जवाब सूझा तो ऐसा फिर वो गाता था, तो उसको लमटेरा कहते थे। इसी से मिला हुआ है बम्बुलिया, वो भी लंबी लमटेरा का ही एक रूप है, उसमें देवी महिमा खासकर नर्मदा जी इन सबका जो जिक्र होता है उसके लिए मामला है। भाई चंग पैटर्न पे आप चलते चलिएगा।

0: थैंक यू.
1: वाह वाह, क्या बात है. नरोत्तम जी बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं. अगर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा गाया. और जोरदार तालियां नानू जी के लिए, जोरदार तालियां, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड की कहानी थी इनके गाने में. बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर. आमंत्रित कर रहे हैं ममता वर्मा को, जो वैसे पहाड़ों पर हम जब सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है. बर्फ की बारिश में भीगना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वहाँ का जीवन कितना कठिन है ये हम में से शायद ही कोई सोचता है. लेकिन पहाड़ों का लोकगीत बहुत ही सुंदर है, बड़ी मिठास है. भले ही आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन मीठी आवाज़ में ममता वर्मा बहुत बढ़िया गाती हैं. तो ममता से हम उनसे कुछ पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहते हैं. ममता, हम आप गाए इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं. हमने सुना है कि उत्तराखंड जहाँ के आप रहने वाली हैं वहाँ का जीवन काफ़ी कठिन है और कमाई का जरिया बहुत कम है, तो वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो कमाने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं और महिलाएँ अकेली रह जाती हैं. महिलाएँ अपना जीवन

0: यापन खुद करती हैं, खेती किसानी से लेकर जो भी काम होता करती हैं, और बड़ी निडर होती हैं, तो हम ममता से पूछते हैं वहाँ के जीवन के बारे में, बताइए कि जब पुरुष घर में नहीं होते तो डर नहीं लगता है वहाँ के जो?
1: नहीं, वहाँ की महिलाएं जो होती हैं बहुत निडर महिलाएं होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, कभी कभी भालू और बाघ से भी वो लड़ जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। मैं ममता वर्मा उत्तराखंड कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ। मैं आपके सामने जो गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उस गाने में ही एक लड़की और एक औरत का दुख पीड़ा जो होता है वो उस गाने में व्याख्यान किया है। ये प्रहलाद मेहरा जी ने ये गाना गाया है। एक लड़की के दुख और उसके पीड़ा, वो जो घर में काम करती है वो उस काम का व्याख्यान इस गाने में किया है।
0: तो वो गा के सुनाइए।

वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक हमने सुना है दर्शकों की ओर से फरमाइश भी आई है कि एक गाने पर आप नृत्य भी करती हैं, और वो नृत्य भी थोड़ा सा अगर आप चार लाइन भी गाते हुए सुना सकती हैं तो सुनाइए। और आपकी जो पोशाक है, वेशभूषा है, हम अपने दर्शकों को और अपने रेडियो के श्रोताओं को बता दें कि ममता वर्मा ने जो पोशाक पहनी है, बाकायदा उत्तराखंड की एक जो महिला होती है वहाँ की पोशाक पहन रखी है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

0: वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति और नृत्य के साथ गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरे सुर में, सुर के साथ और भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया। ममता वर्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये थी लोक संगीत संध्या की विविध रंगी प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने और वहां उपस्थित दर्शकों ने मंच पर जैसे धमाल मचा दी, और इसके बाद वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पात्रिकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
0: आखिर में दो लाइन, चलत मुसाफिर मोहलियो रे, इस गाने पे सारे दर्शक खड़े होके नृत्य करेंगे और यहाँ पर मंच पर सारे कलाकार हम सब उसमें शामिल रहेंगे।
2: उड़ उड़ बैठी पनवनिया दो कनिया, पनवा के सबर सले पिंजड़े।

0: तो कन्हैया उड़ उड़ बैठी बजा जिया तो कन्हैया है उड़नी के सब रस ले पिजड़े वाली मुनिया है उड़नी के सब रस ले ली और पिजड़े वाली मुनिया। थैंक यू विविध भारती।
1: धन्यवाद।
0: मुंह से रिदम जिन्होंने बजाया मुझे तौफीक भाई की याद आ गई, एक जोरदार तालियां।
2: शैली जी, एक कमाल की बात यह है कि साज नहीं थे लेकिन इस बीच में ये नानू और जयंत जी ने जिस तरह से बीट बॉक्सिंग की है वो बहुत कमाल का था, बहुत ही गजब।
1: विविध भारती की ओर से आयोजित सृजन भारती के इस लोकरंग कार्यक्रम में आज की इस शानदार प्रस्तुति के लिए विविध भारती परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। इस विविध रंगी शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का विविध भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे नगर सेवक शिवाय शेट्टी जी के प्रति, हरीश छेड़ा साहब अध्यक्ष बोरीवली सांस्कृतिक केंद्र, ये ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। राजेश बेलदार जी साहब हमारे निदेशक अभियांत्रिकी विविध भारती के, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताड़े साहब और सभी इंजीनियरिंग के साथियों का, विशेषकर मंगेश सांगड़े जी और विनायक रेणके जी सक्रिय सहयोग देने के लिए हम उनके आभारी हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साउंड सिस्टम के लिए डीजे जस्सी और उनकी टीम का आभार और हमारे आज के कलाकारों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव।

0: विभारानी, ममता वर्मा, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नेहा जी और नरोत्तम बेन जी, आप सभी का इस लोकरंगी कार्यक्रम में आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। संगत करने वाले सभी साथी सिद्धार्थ मेस्ता, सुधीर जंगम साहब और बाकी साथी थे, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का एक बार फिर से हम अमूल्य वक्त देने के लिए और बहुमूल्य वक्त देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
4: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी। तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
4: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
4: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
5: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
6: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जी आई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
6: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत

0: 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा

0: तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और अब आपको सुनवाते हैं ब्लैकमेल फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर ने इसे गाया है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुहाना सफर, इस फिल्म का गीत आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर, और इस गीत को गा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब आपको सुनवाते हैं शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार के संगीत से सजा ये गीत। गीता दत्त ने इस गीत को गाया है और फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

ये गीत सुना आपने अभी गीता दत्त की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं यादों की बारात। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की युगल आवाजें हैं, युगल स्वर हैं। मजू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है राहुल देव बर्मन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नीरज का लिखा गीत। शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है। कन्यादान फिल्म से ये गीत है।

प्रेम कहानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी की रचना है, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार का गाया गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, आजी बर्मन ने संगीत बद किया।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में शक्ति फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया।

0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया संदेश में सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प लेने को कहा है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत होर्मुज जलडमरू मध्य से ऊर्जा माल की आवाजाही जारी रखने में सफल रहा। मंत्रालय के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। इस बीच घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बोर्ड के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इस बीच सरकार की ओर से नीट यूजी परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। एनटीए ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही प्रश्न पत्र लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी तरह के संदेश पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख करते हुए श्री मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कोटपुतली में पुलिस कर्मियों ने साइकिल रैली निकाली। इसके बाद पुलिस लाइन मैदान में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। सवाई माधोपुर में दशहरा मैदान से सर्किट हाउस तक साइकिल रैली में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौसम विभाग ने आज राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राजधानी जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में तेज हवा के साथ बरसात हो सकती है। इस बीच पश्चिमी जिले एक बार फिर तेज गर्मी की चपेट में हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर सहित कई अन्य स्थानों पर दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले दो दिनों तक तापमान बढ़ने और गर्मी का असर बने रहने की संभावना जताई है। बीकानेर में होने वाले खेलो बीकानेर यूथ गेम्स 3.0 के लिए खिलाड़ियों के पंजीयन शुरू हो गए हैं। इसके लिए 25 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा
2: तो नहीं देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफर लेकर आ रही हैं तो स्वागत।
0: साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आगे सुनती है तब ये गीत गूंज उठ

हैं कुछ गीतों के बारे में। उन्होंने कहा जैसे कि इन हवाओं में, इन फिजाओं में आजा आजा रे, तुझको विविध भारती का प्यार पुकारे। क्या बात है।

तो श्रोताओं, सबसे पहले आपके लिए हम इबारत भी तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ ली है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर जरूर सुनाएंगे। कुछ श्रोता जो कुछ देरी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब से तेरी आहट उतरी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आंख चुराए फिरती हूं मैं सबसे तेरे नाम पर। आंचल में भर ली है मैंने खुशियां इस संसार की, कलियां खिला दी तूने मेरे गोरे अंग में, जियरा ने तेरी यादों में कैसी सांवरी महफिल सजाई है। दो मन थे जो दूर दूर तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक डोर बंधाई है। आग ओढ़कर पिघले जवानी, चांदनी भी शर्मा जाए, किसी के होठों पर मेरा नाम 100 बार उभरा है। आंखें चार हुई तो जैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर ने चुपके से प्रेम दीपक वारा है। जा रे जा कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ, हर इनकार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संगमरमर सा चेहरा तेरा, पानी सा निर्मल मन है, हवा ने तेरी खुशबू को हर सू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रहे हो क्यों दिल के कोमल तारों को, इंतजार की लंबी रातों ने सपना सवारा है। सीने के सुर्ख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है, हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुंची हूँ, अब मेरी हर धड़कन ने बस तुझको ही पुकारा है।

जी हाँ श्रोताओं, ये थी आज की इबारत एक कविता के रूप में, प्यार से ओतप्रोत। हाँ, प्यार से भरी बातें, प्यार से भरी है इबारत। एक स्त्री का मन जब प्यार से भर जाता है तो हवा, पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं, बस हर पल मिलन का इंतजार रहने लगता है। अनछुआ सा प्यार जो सिर्फ नजरों से ही ऐसी छुवन दे जाता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। मन बस में नहीं रहता, बदन का तार तार पिघला देता है। वैसे प्यार तो है ही इस इबारत में, पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है, जिसके आने का हमें इंतजार है अब बेसब्री से, है ना, जिसके बिना हमारी अगन कम नहीं होने वाली है। आप बताते चलिए, सुरीले सफर का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि प्यार की गली बहुत सक्रिय होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसे पुरानी आहट लिए चुभने लगती है। उनकी प्रेम कहानी आंखों द्वारा खारा पानी बन बहने लगती है, अपने आप से आंखें चुराने लगते महबूब के नाम का आंचल ओढ़ फिरते हैं। फिर चमन में कलियां खिले या कांटे मिले, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उन्होंने एक गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है। फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनवाने वाले हैं, उसी शब्द पर आधारित। जी तो, लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो

ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख भेजिए। और इस फिल्म में एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है?

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतजार है हम सभी को बिल्कुल बेसब्री से, है ना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार के तरह ही बन जाता है। तभी तो पानी के बिना प्यार की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना। और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी, बिल्कुल सही। जो कब आएगा, कितना इंतज़ार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतज़ार। श्रोताओं, आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सुरीला सफ़र का कार्यक्रम हम सफ़र बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और जिंदगी की ट्रेन में अब हम काफ़ी आगे की डब्बे में सवार हैं, जहाँ प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज़ भी नहीं रह गई। वो रह गुजर, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकहे इजहार अब हमारे लिए बेमानी है। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

जी श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, और हमने एक और सवाल पूछा, इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है, और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना।

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही जरा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो। कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है जब तुम पुकारते हो। तुम्हारे दिल की गली तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूं मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन के सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा री जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथियों की आवाजों में। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब ये अगला गीत।

श्रोताओं, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं, ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

जी श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, साइकिल पे तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के ज़माने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज़्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा की। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसकी जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतज़ार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए।

एक श्रोता कहते हैं कि पूरी भारत में प्यार ही प्यार भरा पड़ा है। क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता की कुछ लाइनें यहां पर हमें लिखकर भेजी हैं। हाँ, और इसका जवाब दिया गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है। क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफर को। चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री हैं, यानी

स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल है हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती हैं और मन की बातों को उनके साथ सुर में पिरो रही हैं। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतजार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियां भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बड़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए उसके लिए तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनवाया लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की, और अपनी खुशी जता रही हैं। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना, उनसे मिली नजर लता मंगेशकर ने इसे गाया था, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग है।

जी हाँ, हीर ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

0: सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं?
1: आप

लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे हैं आनंद बख्शी के बोल एसडी बर्मन का संगीत। हीर राजा फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसे लिखा था कैफी आजमी ने, मदन मोहन का संगीत था।

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा। आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

नमस्कार। सुबह से लेकर रात तक जो हमारे शरीर को चलाता है और रात में सोते हुए शरीर की टूट फूट दुरुस्त कर थकान मिटाता है, आज की त्रिवेणी में उसी भोजन की बातें। हवा और पानी के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है भोजन। हड्डियां, मांसपेशियां, यहाँ तक कि छोटे छोटे सेल्स भी भोजन से मिली शक्ति से चलते हैं। देखा जाए तो एक मजबूत शरीर देकर भोजन हमें रोगों से दूर करके चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी भी उठाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जो जीवन का आधार और ईश्वर का रूप है। अन्न को अन्न देवता और किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। भोजन शुरू करने से पहले अन्नदाता सुखी भव कहकर प्रार्थना की जाती है। वास्तव में ये किसान ही हैं जो नन्हे से बीज को अपनी मेहनत से सींच कर उसे इस योग्य बना देते हैं कि वो लहलहाती गेहूं या धान की बालियों में पककर अनाज के रूप में हम तक पहुंचता है। हरी भरी सब्जियां हो या रंग बिरंगे फल, तमाम भोजन सामग्री उन्हीं अन्नदाताओं की तपस्या का फल है जो खेतों में मेहनत करते हैं, रखवाली करते हैं।

0: खाया।
1: भोजन प्रसाद है, इसीलिए भोजन सामग्री बाजार से खरीदने से लेकर घर में पकाने तक कुछ खास बातों पर अगर नजर रहे तो कितना अच्छा हो। भोजन में पौष्टिकता का ध्यान तो रखा जाए, पकाते समय भी पौष्टिक तत्वों का ख्याल रखा जाए, यानी खाना ना तो जरूरत से ज्यादा पका हो और ना ही अधपका हो। थाली में 56 व्यंजन हो ना हो, भोजन की चाह जरूर हो। यही से भोजन में स्वाद की भूमिका भी जुड़ जाती है। जहाँ तक संभव हो भोजन में षडरस और सभी रंग शामिल किए जाएं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम भोजन के लिए नहीं जी रहे,

0: बल्कि जीने के लिए भोजन कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत का भी ख्याल रखा जाए। रसोई से उठती खुशबू पास बुलाए और परोसी हुई थाली देखकर ही भूख से जुड़े एंजाइम खाने का न्योता दें, तभी भोजन किया जाए।
1: आलू की भाजी, बैंगन का भरता,

0: भोजन में पौष्टिकता, स्वच्छता, स्वाद के साथ ही मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है। खासतौर से आज के दौर में जब उत्सवों समारोहों में लंबे लंबे मेन्यू शान की बात माने जाते हैं, ढेर सारे व्यंजन मेज पर सजाए जाते हैं और बाद में काफी खाना बर्बाद होता है, उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि कई सब्जियां और दालें बनवाने की बजाय एक या दो डिशेस तैयार करके भी लजीज खाना परोसा जा सकता है। अक्सर दावतों में पहली बार में ही अपनी प्लेट लबालब भर ली जाती है और फिर थोड़ा बहुत खाकर बचे हुए ढेर सारे खाने समेत डस्टबिन तक पहुंचा दी जाती है। बात सिर्फ दावतों तक ही सीमित नहीं है, घर में भी अक्सर होने वाली खाने की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए बाजार से जरूरत मुताबिक भोजन सामग्री लाई जाए, उसे एयरटाइट डिब्बों में रखा जाए, साथ ही पकाते वक्त निर्धारित मात्रा में ही भोजन बनाना होगा और जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाना परोसने से बचना होगा, क्योंकि जो चीज पसंद आ रही है उसे दोबारा भी लिया जा सकता है। अगर बड़े इस तरह समझाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाएंगे कि जो भी परोसा जाए उसे मुंह बनाकर नहीं बल्कि खुशी से खाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की

0: स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातिये क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है।

0: आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद आप सभी का स्वागत है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सतावाहन नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल उद्यानवी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिल लुधियानवी के बोल हैं संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: सबसे हसी ए नाम है ये, छू लेने दो नाजुक हूँ तुमको।
1: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और ये अगला गीत दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। जीएल रावल ने इस गीत को लिखा, सोनिक ओमिका संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बत किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। मनचाहे गीत इस कार्यक्रम में हम करते हैं शामिल आपके उन पत्रों को जिनमें आप लिख भेजते हैं हमें आपकी मनचाहे गीत। लीजिए हम पहला पत्र शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, जिसे हमें लिख भेजा है छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता और कोमल गुप्ता ने। इन्होंने फरमाइश की है छोटी बहन फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। तो सुनिए अपना मनचाहा गीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में लीजिए। अब अगला खत हमने शामिल किया है खंडवा रोड सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, निर्मला वर्मा, अनुज, आयुषी, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार के सदस्यगण। इन्होंने हमें लिख भेजा है सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत पहली पहली बार मोहब्बत। गायक कलाकार अलका याग्निक और कुमार सानू, लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। समीर के बोल, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारी।

लीजिए अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो जरूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकीब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खां। वालिये करनाल राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खां आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल किसी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल किसी ही बात लगती है।
3: कहिए, कैसे आड़ा हुआ? कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है।

0: मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चाचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
1: हद तेरे की, हार हो गई। जंग का तो हमें पता लग गया था, मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना है इब?
0: जी आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
1: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
1: है? हाँ जरूर जरूर। और लक्ष्मण जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
2: जी
0: सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
0: हजूर ने मैंने याद किया ही है।
1: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
0: सौंपो जी सौंपो।
1: ये हैं नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
0: साड़ी मदद?
1: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
0: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
1: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
0: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानित ही रखूंगा।
1: जी जी यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
0: तो चचा जान मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
1: और जाओ गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
3: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
4: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम खादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अभी बताती हूँ, लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
3: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
4: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्जी को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन जनाब ने उसे माफ।
3: उफ दादी जान,
4: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह दखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
3: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये इरादा तो कभी नहीं रहा। लीजिए मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
4: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
3: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
4: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में न आए।
3: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
4: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
3: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
4: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीज की तरह।
3: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
4: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
3: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
5: जो हुक्म आ लीजिए। आलम बना, गुलाम कादिर हाजिर है।
3: बदज़ात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाई और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल की तू शाही हरम में?
6: हुजूर, हुजूर, रहम।
3: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हराम खोर की कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाए।

उफ, कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज

0: मियां शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगा कर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मनबहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है, शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

वाह, तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक दो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेह याबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह है। अब किसी को भी मैं बच्चों के घरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा, और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी।

0: लाला जी, गुलाम कादिर किले में दाखिल हो गया है। ये मैंने तहकीक कर लिया है कि शहनशाह से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जहाँ बना हरम में जा चुके हैं।
1: उफ मियाँ शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहाँ पना को आगाह करना होगा।
0: हुजूर, बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो मैं जाता हूँ, अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहंशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां अपना गुस्ताख ही माफ हो, वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर, गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां अपना वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है। मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अलीजा, मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखें क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलमपना, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर वो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पना के हुक्म के दे रहे, अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से दगा होगी। हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ तका, तवारीख के सफ़े लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
3: जनाब ने कैसे याद किया?
2: कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दी।
3: जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से सबका पड़ा ही कहा है। गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
2: क्या कहा?
3: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में एतकाद रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो, इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
2: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
3: नहीं, लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार बख्त की तख्त नशीनी का चश्मा।

0: मजदूर के बच्चे नालायक लासमान कहाँ छुपा रखा है?
1: हुजूर, मैंने तो आपकी मदद ही की है।
0: देता है कि छुरा पार कर दूं?
1: अभी सब देता हूं हुजूर, अभी सब देता हूं।
0: ला, निकल।

0: मुस्लिम से भलाई कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं

0: हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक फान पहुंची हैं।
1: है? फरीदाबाद तक?
0: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई हैं।
1: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
1: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है। ये बला कैसे आन तक की?

0: बीसाजी। इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले
1: श्रीमंत,
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है।

0: जहां पना किले की ये दुर्दशा।
1: बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया।
0: जहां पना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने। हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीहे, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शें, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।
1: खुदा हाफिज़।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहांपनाह, सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में उस नीच कादिर के आंख, कान, नाक, होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, हाँ, दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह, ये शायद उसके होठ हैं, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी, इसी वक्त।
2: नहीं,
1: यह है सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
3: हुजूर,
0: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
3: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जाने बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
0: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
3: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
0: ओहो, बहुत नेक है सरदार। इसे 1,000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमा बरदार अजीज दोस्त माधव जी सिंधिया भी शामिल है।

लाला शीतल दास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिक

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप

0: ठीक को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
0: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, चल चल रे नौजवान या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, झांकी हिंदुस्तान की या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था आपके घर का, क्या माहौल था? और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
1: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीजें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहां पर शहादत हुई रेजांगला में, और वो चीज से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं, रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहां पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहां चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊंगा जब तक मैं घर जाऊंगा, हो सकता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की, उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं, आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन, उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहां पर जाके वो जो अपनी मीटिंग खत्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे
0: जी।
1: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में
0: जी।
1: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहां पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहां पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में,
0: बिल्कुल।
1: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहां पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये गीत जब तक

0: वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है
1: जी।
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है अब सुविनियर में देना है लाइंस, तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है।

0: ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है
1: जी।
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे, ठीक है। अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है आशा दीदी गाएगी, फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में हुआ, ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने
1: दिल्ली में,
0: तो रिहर्सल कैसे करेंगे। एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी,
1: अच्छा,
0: एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना, लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने में, और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहां बज रहा है, वहां हाँ, गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना
1: जी,
0: तो इनवाइटेड नहीं थे, तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहां पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए
1: जी,
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, लोग एकदम सुनना शुरू किया कि ये क्या है। जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है, और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे, और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो
1: था।
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको, क्योंकि उनके मन में भी ग्लानी बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी, तो वो चीज को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानी थी
1: जी,
0: गिल्ट फीलिंग
1: जी।
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है,
1: अच्छा,
0: ये लिखा किसने है
1: जी।
0: तो लता दीदी ने कहा नहीं वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहां पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण, उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहां के हैं, ये तो बंबई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बंबई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को जरूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई, दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है, हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं
1: जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत
0: जी,
1: जी
0: वो आए दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहां पर आपका गीत जो बजा है तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में,
1: अच्छा,
0: बोलते हम सब तो थे लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूं कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी
1: जी जी,
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना, ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें

0: नहीं बुलाया गया और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
1: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा और बात खत्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए
0: जी,
1: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहां पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा, ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं
0: जी,
1: आपका लिखा गीत है, चल चल रहे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी।
0: बताइए
1: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो जाते थे दिल्ली
0: जी, जी,
1: तो ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है
0: कि जो होता है अच्छा के लिए होता है
1: जी। उसके बाद में उनको कहा गया मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
0: अच्छा, इसी गीत को सुनाए।
1: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ, हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहां पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहां पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया। और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
0: वाह, बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
1: जी।
0: और साथ ही उनके गीतों में राष्ट्रीयता थी, अध्यात्म था और मानवता का गहरा समावेश देखने को मिला, और तभी ये गीत लिखा गया जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो क्या ये गीत हम सुन लें?
1: हम सुनने से पहले एक बात और बता दूं
0: जी,
1: कि ये गीत की जितनी भी रॉयल्टी आई वो सभी हम लोगों ने और मेरे पिता ने जवानों की विधवाओं के लिए दान कर दी है
0: जी।
1: ए मेरे वतन के लोगों की जो भी रॉयल्टी आती है वो वहां पर जाती है उनके घर वालों को, उनके परिवार को। वो मेरे पिता की इच्छा थी, तो इसको हमने आज तक हमने निभाया है।
0: ये गीत सुन लें, मेरे वतन के लिए
1: जरूर जरूर,
0: जरा आंख में भर लो पानी।

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरी वतन की लोगों।
1: जी,
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय

0: वेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए
1: जी।
0: एक समय ऐसा भी आया, आप इस बात को कैसे कहेंगी, आप किस तरह का माहौल लगता था, कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे
0: जी।
1: तो ये नहीं है कि कभी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे, आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल।
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास। हाँ
0: हाँ।
1: और कभी कभी ऐसा होता था तो अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे हम लोग खड़े। तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट देके रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं
0: जी।
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे हमारे घर पे, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
0: जी
1: काफी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे सिर्फ मिलने के लिए
0: जी जी।
1: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए
0: जी।
1: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
0: बिल्कुल।
1: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब वो सुन भी लेते थे
0: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में वो जादू था।
1: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो हम मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था, न्यूज, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो 4-5 अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
0: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
1: हाँ हाँ, अभी भी याद, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार
0: जी,
1: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज्यादा आएंगे न्यूज, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज आएंगे और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये 6 अखबार हमारे वहां रोज आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
0: इतनी भाषाओं के
1: हमारे वहाँ अखबार आते थे
0: और उसे पढ़ा
1: और आज भी आते हैं, वो मैंने बंद नहीं किए
0: जी।
1: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं होती। बीबीसी न्यूज उनका रोज का सवेरे का 6:45 का न्यूज वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में आएंगे,
0: हाँ,
1: वो सब उनको सुनना जरूरी था।
0: तो घर में एक रेडियो था?
1: हाँ हाँ
0: जी,
1: एक नहीं, 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविजन भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में तीन अलग अलग रेडियो बजते थे, तो मैं जो है विविध

0: भारती सुनती थी।
1: अच्छा।
0: जैसे मैंने कहा वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है, तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज में।
1: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था और हर कण कण तो में वो
0: ये जो जागरूकता थी ना वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं माँ और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता मतलब वो क्या आ रहा है सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह मेरे पिता के जाने के बाद सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
1: तो मितुल जी अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो, अरे वो रोशनी वालों।
1: वाह क्या बात है, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है ये
0: जी।
1: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को, गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत, आइए सुनते हैं ये गीत।

उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम

0: आप दोनों बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए ये दो चीजें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसी, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: सबसे दुनिया में रहते हुए भी
1: उस
0: माहौल में रहते हुए भी,
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा।
0: और किसी तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के बताइए?
1: हाँ हाँ, नहीं नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कम्पोज करूंगा, बप्पी लहरी ने
0: जी,
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी मैं जानती हूं, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूं, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, हम अभी
0: जो फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था, हाँ, कविताओं का।
1: हाँ, हाँ, तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ
0: जी।
1: तो उन्होंने मैंने जैसे पहले कहा था कि आजाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद, तब कविता लिखी थी, उसी दौरान उसके बाद में जब हमको आजादी मिली
0: जी,
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले गए, लो फिर पुलक उठे वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए, कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही, निखिल प्रकृति लहलही विमल वातास बही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब नवयुग में खुशी से आनंदित है क्योंकि हमको उस वक्त आजादी मिली थी। और आप अगर सुने एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: यही पैगाम,
1: ये वही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह पाए। तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश के लिए पॉपुलर है और आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा, और
0: यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते भुला नहीं सकते, झुटला नहीं सकते हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम सुन लें?
1: ये जरूर बजाइए, बहुत अच्छा गीत है,
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त, ये इतना बड़ा दिन था
0: जी
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियां बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा, हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से, मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारी पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाए और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति मिली हमको। जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी जी।
1: और लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त

0: दोस्त नहीं थे।
1: अच्छा,
0: जब मिल गई आजादी उसके 2-4 साल के बाद, उनको लगा कि आजादी तो मिल गई है लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
1: बहुत बड़ा सवाल।
0: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आजादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्या आप इस देश को आजाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
1: इस देश को रखना मेरे
0: बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि उनको वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे, तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से। और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े देश, आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
1: जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहाँ पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं, उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है।
0: हर एक लाइन सुनिए आप
1: जी।

0: तो रखना मेरे बच्चों संभाल के।
1: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही है और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आपको गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
2: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा। क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ था
1: जी,
2: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत। तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि प्रदीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलता मैं कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नैयर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं नहीं, प्रदीप जी के साथ काम कर सकते।

अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनिया।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: FM 102.6 MHz व मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम परिचर्चा, आकाशवाणी के 90 सालों का सफर। संचालन राजेश महावर।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी अपने 90 वर्ष की यात्रा पूरी कर रहा है। आकाशवाणी यानी एक समय का ऑल इंडिया रेडियो 8 जून 1936 को अपनी शुरुआत के बाद आकाशवाणी ने देश के कोने कोने में शिक्षा, सूचना, मनोरंजन पहुंचाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। अपनी इस 90 वर्षों की शानदार यात्रा के कुछ खास मील के पत्थर आकाशवाणी के अनेक केंद्रों ने इस अवसर पर आप सभी श्रोताओं के साथ साझा किए, और ऐसे में अनेक अनेक कार्यक्रम अनेक आकाशवाणी के केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल भी इसी दायित्व को निभाते हुए आप श्रोताओं को आमंत्रित करता है अपने स्टूडियो में, और ये एक अवसर है इस कार्यक्रम को आयोजित करने का। तो रेडियो के 90 वर्षों पर यह परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है, और आप सभी श्रोता जब रेडियो सुनते हैं तब आपको ये लगता होगा कि इस रेडियो के पीछे कौन सी दास्तान होती है। एक समय था जब रेडियो सुनने के दौरान कई लोगों ने उस रेडियो को तोड़ दिया था कि इसके अंदर से कौन बोलता है, और आज
2: उस वक्त को 9 दशक पूरे हो गए हैं। आकाशवाणी के नामों में अनेक बार परिवर्तन हुआ, अनेक प्रकार की तकनीकों का आकाशवाणी ने साथ लिया, और आज आप सभी के घर पर एयरवेज यानी आकाश के माध्यम से आपके घर तक, आपके हृदय तक, आपकी मन मस्तिष्क तक ये वाणी पहुंचती है जो आकाशवाणी है। ऐसे में आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के इस स्टूडियो में
1: आप सभी श्रोताओं का प्रतिनिधित्व करते हमारे 4 मेहमान हमारे साथ हैं। उनका परिचय मैं आपको करा दूं। डॉक्टर रामकृष्ण बागला साहब हैं हमारे साथ, अनिल कुमार जटिल जी हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं और अंकिता सेन जी हैं।
2: आप सभी का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम यानी रेडियो जब अपने 90 वर्षों की यात्रा कर रहा है, आप

0: आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप गृहिणी हैं, आप इसे शुरुआत करें। अंकिता जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: अंकिता जी, रेडियो के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आप रेडियो काफी समय से सुनते आ रहे हैं। आपके द्वारा हमें ये बात पता लगी, आप हमें बता सकते हैं रेडियो आप कब से सुन रहे हैं और रेडियो सुनना आपको कैसा लगता है?
1: सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि रेडियो सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मैं रेडियो से जुड़ी हुई हूँ
0: जी।
1: मेरा ननिहाल है ढक चौमेला, वहीं से मेरी रुचि रही है रेडियो सुनने में। वहाँ मेरे मामा जी थे, वो सुना करते थे। फिर उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो हमारे सर थे गौड़ साहब, वो सुनते थे रेडियो। फिर उन्हें से मेरी रुचि और गहरी होती हुई फिर गृहिणी में आ गई, और गृहिणी के साथ साथ रेडियो चलता रहा, काम भी हो जाता है
0: जी।
1: इस तरह से
0: आपने बताया, आप छोटे थे, फिर आप बड़े हुए, हाँ। फिर गृहिणी हुए विवाह के बाद में जी, और वो रेडियो था वो वहीं रह गया, आपने दूसरा रेडियो लिया,
1: हाँ।
0: जी, आपसे हम और बात करेंगे। हमारे जो श्रोता हैं वो सुनना पसंद करेंगे कि इस कार्यक्रम में एक जो गृहिणी है जो रेडियो सुना करती हैं वो भी आज रेडियो पर उनसे रूबरू हैं। राजेंद्र कुमार जी,
2: हाँ जी सर,
0: बहुत स्वागत है आपका।
2: आपका भी बहुत स्वागत,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेंद्र जी, अपने बारे में आप बताइए, रेडियो तो आप सुनते ही हैं, रेडियो कहाँ सुनते हैं, किन परिस्थितियों में सुनते हैं, रेडियो सुनना कैसा लगता है आपको?
2: पहले तो मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई
0: जी। बहुत धन्यवाद
2: सर। मैं शुरू से ही रेडियो सुनता था, पढ़ता था तब से ही, और उसके बाद फिर मैंने ये नागरागी मंदिर के यहाँ पे शॉप डाली
0: जी,
2: तो कोई जरिया नहीं था टाइम पास करने का। फिर मैंने वापस अपना जो पुराना शौक था आकाशवाणी केंद्र वो सुनना वो शुरू किया, और शुरू करते ही जो न्यू जनरेशन थी वो भी मेरा साथ लग गई कि अंकल आपके यहाँ बहुत शानदार गाने चलते हैं, बहुत शानदार प्रोग्राम आते हैं। आज वो भी मेरे देखे देख आकाशवाणी सुनते हैं।
0: क्या बात है, तो ये राज आपने उनको बता दिया।
2: यस,
0: क्या बात है, बहुत
2: बढ़िया। मजा आता उनको सुनने में
0: जी,
2: के शानदार गाने आते हैं सर, शानदार प्रोग्राम आते हैं,
0: बहुत सुंदर।
2: मैंने कहा मैं सुनाता हूँ, आप भी सुनो और औरों को भी सुनाओ।
0: क्या बात है। और राजेंद्र जी, आपके चेहरे की जो ये खुशी है, ये लगता है कि कहीं इसके पीछे रेडियो ही है।
2: हाँ बिल्कुल सही, इससे जो प्रोग्राम आते हैं ना
0: जी,
2: इससे बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और दिन भर टाइम पास कब हो जाता है ये पता ही नहीं चलता।
0: क्या बात है, और टाइम पास के साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन भी होता है, उपयोग,
2: नई नई जानकारी भी मिलती है इसमें
0: जी। जी, बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने आकाशवाणी में आना स्वीकार किया। अब इसी कड़ी में श्रोताओं, अनिल कुमार जटिल जी से भी हम भेंट करवाएं आपकी। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका।
3: आपका भी धन्यवाद
0: जी।
3: हम जब से होश संभाला तब से रेडियो हमारे साथ है।
0: क्या बात है।
3: और सुबह की शुरुआत और रात्रि की रात्रि रेडियो के साथ ही होती है। दिन भर कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रेडियो के साथ होती रहती है
0: जी।
3: रेडियो भी, रेडियो पे काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, काफ़ी प्रोग्राम आते हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ें प्राप्त होती हैं, और इसका शौक पूरे परिवार को ही है, पत्नी को भी है
0: जी।
3: और पत्नी को तो इतना शौक है कि मैंने उनको जन्मदिन पे 2 रेडियो गिफ्ट किए हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है।
3: उनको बहुत
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी।
3: और उनका भी शुरू दिन की शुरुआत रेडियो से होती है, किचन में रेडियो लगा रखा है
0: जी,
3: रेडियो चलाने के बाद वो पूरा अपना काम करती हैं, और रेडियो काफ़ी टाइम से घर में है, करीबन 40-45 साल तो मुझे सुनते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है। अनिल जी, आपकी बातें हमारे श्रोताओं को यकीन लुभा रही होंगी, लेकिन अपने श्रोताओं को मैं आपका एक वर्णन कर दूं कि जब आप इन शब्दों को कह रहे हैं श्रोताओं से, तब आपकी आंखें न जाने किस दिशा में देख रही है, शायद उन बातों को याद कर रही है जब आपने अपनी पत्नी को 2-2 रेडियो गिफ्ट किए होंगे।
3: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
3: बिल्कुल।
0: तो आपसे और बातें होंगी
3: जी।
0: और श्रोताओं, अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर रामकृष्ण बागला जी से। बहुत स्वागत करते हैं रामकृष्ण जी आपका। डॉक्टर रामकृष्ण जी, आकाशवाणी आज आप आए हैं, उसके पहले आप लंबे वर्षों से आकाशवाणी के श्रोता रहे हैं। हम ही

0: चाहेंगे आप अपने काम के बारे में बताएं, क्योंकि आपकी अवस्था जो है वो रिटायरमेंट का आप लाभ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस उम्र को, लेकिन जब आप अपने जॉब में लगे थे या वो वक्त था जब आपने रेडियो सुनना शुरू किया, उसका संक्षिप्त वर्णन अभी कीजिए।
1: रेडियो सुनना, मैंने मेरे बड़े भाई साहब रेडियो लाए 1963 में।
0: क्या बात है, क्या बात जी।
1: उस समय जब लाए तो पूरे परिवार के माता पिता हमारे और हम पांच भाई बहन थे, सबने साथ बैठ करके रेडियो सुनना शुरू किया। उसके बाद पढ़ाई तो चलती रही और 1971 में मैं सर्विस में लग गया मेडिकल करने के बाद, और रेडियो चलते सुनते रहे। पर 83 से तो बराबर जो है सुबह का टाइम जो है उसमें रामायण की वजह से रोजाना रेडियो सुन रहे हैं।

0: 1971 में मैं सर्विस में लग गया मेडिकल करने के बाद, और रेडियो चलते सुनते रहे, पर 83 से तो बराबर जो है सुबह का टाइम जो है उसमें रामायण की वजह से रोजाना रेडियो सुन रहे हैं।
1: आकाशवाणी पर सुबह जो रामचरितमानस आता है वो आप सुनते हैं जी, क्या बात है। आपने ये बताया कि रामचरितमानस आप सुनते हैं, हमारे अनिल जटिल जी हैं उन्होंने अपनी पत्नी को दो रेडियो गिफ्ट किए, ये वाकई में एक बड़ी बात है और खुशनुमा बात है, और हम यही आशा करते हैं कि उन्हीं रेडियो पर आज आप जो भी आकाशवाणी का प्रसारण है वो सुनते होंगे। हमारे राजेंद्र जी जो हैं वो अपनी शॉप करते करते खुद रेडियो सुनते हैं, और आने जाने वाले जो उनके खरीदार होते हैं वहाँ रेडियो सुनाते हैं, और जो हमारी अंकिता सेन जो गृहिणी के रूप में आकाशवाणी पर आई हैं, हमारी आज की अतिथि महिला अतिथि एकमात्र, जो कि ये बताती हैं कि रेडियो का उनका साथ बचपन में भी था और अब जब वो गृहिणी बन गई हैं तब भी वो साथ था। तो श्रोताओं, आकाशवाणी अपने 90 वर्षों की यात्रा कर रहा है, आज हमारे 4 श्रोता हमारे साथ में हैं और आप सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हो सकता है आपके मन में भी ये प्रश्न आए कि काश कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले, अगर ऐसी ही कोई बात आपके जहन में आती है श्रोताओं, तो चंबल चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, और ईमेल है उसका भी आप इस्तेमाल कीजिए, वैसे ये हम आपको कार्यक्रम के अंत में जरूर बताएंगे। आइए इस परिचर्चा को हम जारी रखें। रामकृष्ण जी, आप ये बता रहे हैं कि रामचरितमानस गान आप सुनते हैं, सब परिवार वाले मिलकर सुनते हैं।
0: अभी उस समय जब मैं सर्विस में था और शुरू की 83 से, तो सुबह के टाइम मेरी पत्नी भी मेरे साथ में सुनते थे और हम रामायण खोल करके पढ़ते भी थे
1: कार्यक्रम प्रसारण के साथ साथ वाह क्या बात है,
0: क्योंकि उसमें 3 दोहे आते थे और 3 दोहों के बीच की जो चौपाइयां आती थी और उनका पूरा अर्थ बताया जाता था, तो उससे पूरी वो समझ में आ जाता था। उसके बाद में जब मेरे बच्चे की शादी हुई, लड़के की शादी हुई और बहू आई, तो उसने देखा कि ये रामायण सुनते हैं, तो भी ये लोग भी जो है रामायण पढ़ने लगे उसके साथ।
1: क्या बात है साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रामकृष्ण बागला साहब, आपका जो नाम है वो भी रामकृष्ण है, आप ये बता सकते हैं कि आपका जो नाम रखा गया वो भी कहीं इसी बात से प्रेरित होकर रखा गया?
0: ये तो नहीं बता सकता और मेरे को पता भी नहीं है। पहले मेरा नाम मोहन और सोहन, मेरे बड़े भाई का नाम मोहन था, मेरा नाम सोहन था
1: जी,
0: बाद में वो नाम बदल करके और रामकृष्ण किया गया।
1: क्या बात है, तो साहब रामकृष्ण जी, जब आप अपने बचपन में रेडियो सुना करते थे, आपने बताया 1963 में आपके बड़े भाई रेडियो लेकर आए थे और तब से आपने रेडियो सुनना शुरू किया, उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी?
0: उस समय मैं 12-13 साल का रहा हूँ, 15 साल का रहा हूँ।
1: और अभी आपकी क्या अवस्था है?
0: अभी मैं 81 ईयर्स में रन कर रहा हूँ।
1: क्या बात है साहब, बहुत ही बढ़िया बात है। और श्रोताओं, आज आकाशवाणी पर जब हमारे 4 प्रतिभागी इस कार्यक्रम के लिए हैं, तो उनके परिजन भी हमारे साथ हैं और वो भी बड़े खुश हैं कि आज रेडियो पर हम सब हैं। और श्रोताओं, आइए अब हम वो बात करें, जब अनिल जी ने अपनी पत्नी को 2 रेडियो गिफ्ट किए, उसके बाद में आपको क्या कहा गया, क्या कुछ विशेष व्यंजन बनाकर दिया गया कि ये?
2: पहले तो मैंने उनको पता ही नहीं लगने दिया कि मैं गिफ्ट क्या दूंगा। मैं उनके लिए रेडियो लाके मैंने अपने कमरे में रख लिया
1: जी,
2: और जब वो ड्यूटी से आई तो मैंने उनको हैप्पी बर्थडे
1: बोल के, उनका जन्मदिन था,
2: यस बर्थडे में उनको गिफ्ट दिया। जब उन्हें देखा तो उनका बहुत प्रिय गिफ्ट था, ये बहुत प्रिय था, क्योंकि वो मैंने उनको जब शादी के बाद आई थी तब से रेडियो सुनते हुए देखा था, तो मैं वो रेडियो से उनका बहुत अच्छा लगा हुआ है, गाने सुनती रहती हैं, अपना काम करती रहती हैं, तो बोलती हैं थकान खत्म हो जाती है इससे
1: जी,
2: हाँ फिजिकल एक्टिविटी भी होती है और अपना प्रोग्राम भी देख ली सुन ली देती।
1: क्या बात है अनिल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये सुकून है कि चलिए वो रेडियो पर ही सुनती हैं, कम से कम मुझे कुछ नहीं कहना पड़ता?
2: नहीं नहीं रेडियो के साथ साथ वार्तालाप भी होती रहती है
1: जी,
2: और जब उनका मनपसंद कोई गाना आ जाता है तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है, और शाम को भी जब हम सभी काम से निवृत्त हो जाते हैं, और मेरी तो आदत है

0: रात को 10 बजे रेडियो चला के जब तक नींद नहीं आएगी तब तक तो सुनता
1: चलता रहेगा।
0: रहता
1: क्या बात है अनिल जी, बहुत ही खूब बात
0: हूँ।
1: आपने बताई। अच्छा एक और बात बताइए कि रेडियो आपका शौक, आपकी पत्नी का शौक, आपका भी शादी से पहले बचपन से ही शौक
0: मेरा
1: और उनका?
0: मेरा तो कम से कम, नहीं तो ये देख लो आप, सन 75 से,
1: सन 75 से आप रेडियो
0: यस यस
1: सुन रहे
0: अब
1: हैं?
0: सन 75 से सुन रहा हूँ। और मैंने अपना 10th का रिजल्ट, बोर्ड का रिजल्ट जो है इस पे ही अनाउंस हुआ था, उसके बाद अखबार में आया था।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत
2: बढ़िया।
1: तो रेडियो ने आपको ये बताया कि आप पास होने वाले?
0: नहीं, कल
1: कल
0: रिजल्ट आने वाला है।
1: क्या बात है,
0: हाँ
1: बहुत खूब। तो आज भी वही रेडियो है आपके पास या बदल गए हैं रेडियो?
0: मेरे पास कम से कम मिनी रेडियो से लेके बड़े रेडियो तक 8 सेट मेरे पास अभी रखे हुए हैं।
1: वाह क्या बात है, बहुत।
0: मैं कभी भी उसको रीसेल नहीं करता।
1: क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा आपने बताया कि पत्नी जब काम से लौटी तब आपने उन्हें रेडियो उपहार दिया था। पत्नी क्या काम करती हैं और रेडियो सुनना उनका शौक है, आपको ये कैसे पता लगा कि यही उनका सबसे प्रिय गिफ्ट हो सकता है?
0: शादी के बाद उनका देखा था मैंने, तब मेरे पास रेडियो था तो वो रेडियो पे लगी रहती थी, गाना सुनती रहती थी। मैंने अपने विचार किया था कि क्यों ना इनको रेडियो ही गिफ्ट किया जाए, क्योंकि रेडियो उनकी मनपसंद चीज़ थी। तो पत्नी जो है राजस्थान पुलिस में है
1: जी,
0: तो काफ़ी टेंशन वाली ड्यूटी रहती है, 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है, कम समय मिलता है, लेकिन जब भी ड्यूटी से घर आती हैं तो उनको ये रेडियो से प्रोग्राम सुन के बहुत सुकून मिलता है, काफ़ी थकान दूर होती है
1: जी।
0: हाँ इसलिए सबसे बढ़िया गिफ्ट उनको लगा मेरा, और इसका धन्यवाद उन्होंने मुझको बहुत दिया।
1: क्या बात है, क्या बहुत खूब साहब। हाँ। और आपने इसीलिए एक नहीं दो दो रेडियो ने गिफ्ट कर दिया।
0: यस यस यस,
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो हमारे श्रोताओं को पता लगेगा कि जब पति पत्नी का प्रेम हो तो रेडियो उसका साथ जरूर निभाता है जी। राजेंद्र जी,
3: जी सर,
1: अब हम आपसे बात करें कि आपकी बड़ी खास बात हमें लगी कि आप तो रेडियो सुनते हैं लेकिन अपने दुकान पर आने जाने वालों को भी आप रेडियो सुनने के लिए प्रेरित करते हैं, और इतना ही नहीं उन्हें रेडियो के गीत संगीत और रेडियो की जो जानकारियां हैं वो लुभाती हैं, और इस बात के लिए आप उन्हें और ज्यादा प्रेरित करते हैं। ये कोई एकाध वाक्य आपको याद हो तो बताइए।
3: सर मेरे पास क्या है, दुकान पे सब तरह के श्रोता, मतलब हर तरह के ग्राहक आते हैं, नए भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, महिलाएं भी आती है, लेकिन जब वो मोबाइल चलाते हैं
1: जी
3: तो उसमें लगती है न्यू जनरेशन वाली चीज़ें, लेकिन जब मेरा साउंड चलता है, आकाशवाणी का चैनल चलता है, तो उनका मोबाइल तो हो जाता बंद, और जो गाने प्रोग्राम चलते रहते हैं उसमें वो भी खो जाते हैं
1: जी बहुत,
3: और अपना मोबाइल बंद करके, अरे यार अंकल आपके यहाँ गाने आप चलाते हो या? मैंने कहा भैया आकाशवाणी केंद्र चलाता है।
1: वाह,
0: गाने भी बहुत अच्छे आते हैं,
3: और प्रोग्राम गाने इतने सुरीले आते हैं कि मेरा रात को 11 बजे के बाद भी उठने की इच्छा नहीं होती, जब तक प्रोग्राम वो बंद नहीं हो जाता जब तक मैं शॉप बढ़ा के नहीं जाता।
1: अच्छा क्या बात है, यानी कि आपकी शॉप के बंद होने का जैसे कहते हैं शॉप को बढ़ा देना।
3: आकाशवाणी केंद्र बंद हुआ उसके बाद फिर मेरी शॉप बंद होती है।
1: क्या बात है सब, यानी कि आकाशवाणी निर्धारित करता है कि आपकी शॉप को कब बढ़ाना है,
3: वही टाइम पूरा करता है।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
3: और मेरे घर पे भी
1: जी
3: 3 मंजिला मकान है, 3 मंजिलों पे आकाशवाणी चलता है, ऊपर जाता हूँ तो वो चलता है, बीच में रहता हूँ खाना खाता हूँ चाय पीता हूँ तब वो चलता है, नीचे भी आते आते भी फिर मैं जो गाना सुनता हूँ
1: जी,
3: जैसे मैंने मोबाइल पे पुराना गाना सुना है या मेरी इच्छा होती है सुनने की ये पता नहीं है, लेकिन एक दो दिन बाद वही गाना मेरे को आकाशवाणी में सुनाई में आता।
1: क्या बात,
3: ये शायद मेरी दिल की आवाज़ सुन लेते ये आकाशवाणी।
1: वाह,
3: और मेरे कर्मचारी से भी मैं कहता हूँ, मैंने कहा देखना ये गाना जरूर आएगा।
1: क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस।
3: तो उसके बाद दूसरे दिन
1: जी
3: वही गाना मेरे को सुनाई में आता सर।
1: क्या बात है सर,
3: और मेरा दिल खुश हो जाता है, चलो किसी ने तो मेरी आवाज सुनी।
1: बिल्कुल वैसे आकाशवाणी आप सभी श्रोताओं के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अंकिता जी, हम आपसे मुखातिब होते हैं, आपने बताया कि ननिहाल यानी अब शादी के बाद आपका पीहर जी, वहां का आपने बताया कि वहां से आपको रेडियो सुनना रुचिकर लगा, वहां से आपके रेडियो सुनने की शुरुआत हुई।

0: वहां कौन थे जो रेडियो सुना करते थे?
1: सर वहां पे हमारे घर में भी रेडियो ही चलता था पापा के यहाँ। हमें टेलीविजन देखने ही नहीं दिया जाता था। बचपन से ही रेडियो सुना है मैंने, तो वो एक आदत सी बन गई। जब तक रेडियो चलता नहीं है काम होता ही नहीं है। वो गाने चलते रहते हैं और मेरा काम होता रहता है। एक वो लय ताल बन जाती है रेडियो के साथ मेरे काम करने की।
0: ये जो बात है कि जब तक रेडियो चलता है आपका काम होता है। हाँ। रेडियो बंद होते ही काम बंद।
1: हाँ, मेरी स्पीड बहुत कम हो जाती है काम करने की।
0: जी अच्छा, अब आप ये बताइए, आपका जो रेडियो है वो बिजली से चलता है या सेल से?
1: नहीं, बिजली से चलता है।
0: बिजली से चलता है, वरना अगर सेल डाउन हो जाते तो फिर आपके जो पति हैं उनकी ये समस्या हो जाती कि सेल लाना पड़ेगा तब जाके अगला काम होगा। जी आपने बताया कि रेडियो के साथ आप अपने काम करते हैं। रेडियो सुनना, उसमें कौन से कार्यक्रम आपको ज्यादा लुभाते हैं?
1: एक सखी सहेली है जो मेरा फेवरेट है
0: जी।
1: कृषि संबंधित भी बताते हैं उसमें। हेलो फरमाइश आता है
0: जी।
1: बाल मनोहार आता है जो मेरे बच्चे भी मेरे साथ सुनते हैं। उसमें जो पहेलियां पूछते हैं बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं, फिर उसके साथ जवाब देते हैं।
0: जी बहुत खूब। आपके बच्चे, उनका स्टैंडर्ड क्या है पढ़ाई का, कौन से लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं?
1: मेरा बड़ा बेटा है जो 7th में है, आदित्य
0: जी,
1: और छोटा है वो अभी 1st में है।
0: क्या बात है, 1st और 7th कक्षा के बच्चों। हाँ। को जो आपके पुत्र हैं दोनों
1: जी, जी।
0: उन्हें आप रेडियो का साथ अभी से दे रहे हैं।
1: जी जी जी
0: जी। आपको कैसा लगता है रेडियो का साथ उनके भविष्य के निर्माण में कैसा काम करेगा? क्योंकि ये होता है कि जब रेडियो पर युवाणी कार्यक्रम आता है उसमें जो युवा श्रोता होते हैं उनके, जब वो व्यवसाय के लिए अपनी तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए अपनी तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए वो जब जनरल नॉलेज की बात करते हैं तब रेडियो उनका साथ देता है। आप क्या देखते हैं, रेडियो उनके भविष्य का निर्माण कर सकेगा?
1: जी मुझे तो पूरा विश्वास है कि रेडियो के माध्यम से बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिलती है। सर मेरे घर में टेलीविजन पूरी तरह से बंद है।
0: वाह।
1: मेरे बच्चे और हम, मेरा परिवार पूरा रेडियो ही सुनता है। उसमें जो समाचार आते हैं वो हम सुनते हैं, उसी के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। मौसम विभाग की, कृषि विभाग की, स्वास्थ्य संबंधी, मैं हेलो डॉक्टर कार्यक्रम भी सुनती हूँ, उसमें मुझे बहुत रुचि है, और सखी सहेली सुनती हूँ।
0: ये आपको कार्यक्रम अच्छा
1: जी, जी जी
0: जी। श्रोताओं, जब हमारे आमंत्रित अतिथियों से हम बात कर रहे हैं तब आपको, वैसे तो आकाशवाणी आवाज का एक माध्यम होता है, आवाज के जरिए आप सब पहचानते हैं, हमारे अतिथियों के नाम आप जानते हैं, अब आपको पता लगा क्योंकि हम नाम से उन्हें पुकार रहे हैं। लेकिन जब हम महज रेडियो सुनकर किसी व्यक्ति से मिलते नहीं थे तब तक हम कल्पनाशील रहते थे कि आकाशवाणी में आने वाले, आकाशवाणी पर बोलने वाले व्यक्ति कैसे होंगे, वहाँ कैसे बोला जाता होगा। आज हमारे जो 4 इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागी हैं उनका ये संशय दूर हो गया कि आज जो इस कार्यक्रम का संचालन का काम कर रहा है राजेश, वो कैसा दिखता होगा। लेकिन आप तक केवल आवाज ही काफी है। तो श्रोताओं, कहने का अर्थ है कि मैं राजेश महावर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में जो आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा का एक प्रतीक है। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम जिसका हिस्सा शायद आप भी बनना चाहते हो, हम फिर आपको कह दें अगर आप इसके प्रतिभागी बनना चाहें तो हमें उसी व्हाट्सएप या उसी ईमेल पर अपनी इच्छा जरूर व्यक्त कीजिएगा जो हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। अभी हम अपने अतिथियों से एक बार फिर आपको रूबरू करवाते हैं। रामकृष्ण बागला साहब, 1963 से आप रेडियो सुन रहे हैं, कौन से वो कार्यक्रम हैं जो आपको अभी याद हैं रामचरितमानस के अतिरिक्त?
2: उस समय तो जो लगाते थे तो सुबह में जो खबरें आती थी वो सुन लेते थे, और कभी जो दोपहर के टाइम में
0: जी
2: कोई गाने वगैरह आते थे वो सुन लेते थे
0: जी। कौन से गाने पसंद है आपको साहब, किस तरह की फिल्में आप देखना पसंद करते थे, या रेडियो के अलावा उस समय कौन कौन से मनोरंजन के साधन होते थे?
2: उस समय मनोरंजन के साधन तो फिल्म देखना और गांव में जो है गुल्ली डंडा खेलना।
0: वाह।
2: और शहर में जो है आपस में दोस्तों के साथ बातचीत करना, यही साधन थे।
0: क्या बात है, आपने जो वर्णन किया गांव में गुल्ली डंडे खेलना, हमने थोड़ी देर पहले अपने श्रोताओं को ये बात कही थी कि रेडियो कल्पनाशील हमें बनाता है। जो शब्द वहां कहे जाते हैं वो दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे मानस पटल पर वो जरूर दिखते हैं। और आपने जो बात कही ना कि गुल्ली डंडा खेलना, वो अंकित हो रहा है हमारे जहन में। तो उसके साथ साथ रेडियो की क्या भूमिका थी? कभी ऐसा कोई वक्त रहा कि

0: आप रेडियो लेकर जा रहे हैं, आपके यार दोस्त आपके साथ हैं।
1: नहीं, उस समय एक ही रेडियो था तो वो बड़ा था तो उसको लेकर के नहीं जाते थे, क्योंकि वो उसके उठाना और बाहर ले जाना
0: जी ये
1: कर नहीं सकते
0: जी। वाकई वाकई में। और रामकृष्ण जी, आपसे हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि आपका विवाह कब हुआ?
1: मेरा विवाह 1972 में
0: हुआ। 72 में हुआ आपका विवाह। और उस समय जब उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता था तो उस दौर की ये बात थी कि उपहार में अगर रेडियो नहीं मिला तो क्या मिला?
1: रेडियो मिला था
0: जी जी। उस रेडियो की सुरक्षा का प्रबंध आपने किया?
1: सुना उसको?
0: अच्छा,
1: सुनते रहे
0: जी
1: जब तक चला, सुना
0: जब तक
1: चला। बाकी जो है सर्विस में इधर उधर जाने आने में खराब हो गया।
0: जी जी जी। तो आपकी पत्नी भी आज आपके साथ हैं, यहाँ पर हैं, आपका पुत्र भी आपके साथ यहाँ पर है। हम कार्यक्रम के अंत में उनकी वाणी भी अपने श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जब ऐसा जिक्र कर देते हैं तब श्रोताओं की इच्छाएं जरा और बढ़ जाती हैं जी। तो आपने उस समय रेडियो सुना और आपको विवाह में रेडियो मिला था। उस समय एक और बात हुआ करती थी कि साइकिल मिलना भी जरूरी होता था।
1: आज भी साइकिल डे विश्व साइकिल डे।
0: जब इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है तब विश्व साइकिल दिवस है
1: और सुबह रेडियो में ही बताया गया
0: जी। और एक दौर कि जब ऐसे ही कार्यक्रम में जब हम आकाशवाणी रेडियो 890 का जब हम वर्णन कर रहे हैं तब इसी कार्यक्रम में एक श्रोता ने हमें बताया था कि साहब वो दौर था जब हम साइकिल पर रेडियो टांग करके घुमा करते थे।
1: देखा है मैंने भी।
0: है ना जी, आपने भी देखा?
1: देखा
0: जी, जी। तो ये विवाह के पहले देखा है, बाद में
1: भी देखा और
0: पहले भी देखा
1: जी। तो जब सर्विस में तो जो जवान थे वो कैसे भी रेडियो लेकर के चलते ही थे।
0: जी जी जी। अनिल जी, मैं आपसे बात करूं, आपने भी ये दौर देखा?
2: बिल्कुल देखा।
0: तो उस समय आपको ऐसा लगा कि काश मेरा भी विवाह हो, मुझे भी रेडियो मिले मुझे भी साइकिल मिले?
2: नहीं, वो शौक तो शुरू से था
0: जी,
2: लेकिन हाँ मुझे ये ध्यान है, मेरे मामा जी जो है सन 70 में कोई रेडियो लिया था हमने
0: जी,
2: और उसके लिए उसने एक बॉक्स बना रखा था
0: पहले ही से।
2: यस यस यस।
0: वो रेडियो आएगा इसमें रखेंगे?
2: नहीं, बॉक्स बना रखा था, उस बॉक्स को लॉक करके जाते थे।
0: अच्छा।
2: उसकी सुरक्षा हाथ नहीं लगाए, उसकी सुरक्षा के लिए, तो उस मतलब इतनी सेफ्टी से रखते थे। तब से हमें भी शौक लगा कि मामा जी चलाने नहीं देते तो हम अपना रेडियो लेंगे
0: जी, जी। और आपने भी उसके लिए कोई केस बनाया?
2: नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया
0: जी।
2: और हमारे घर में रेडियो, हर बिल्डिंग पे रेडियो रखा हुआ है, जहाँ पे ऊपर जाते हैं वहाँ ऊपर वाला चलाते हैं
0: जी,
2: और रेडियो में अच्छे प्रोग्राम आते हैं, रात को प्रोग्राम आते हैं, डॉक्टर हेलो डॉक्टर आता है, युगवाणी आती है
0: जी,
2: कृषि के डॉक्टर हेलो डॉक्टर आता है, रात को गाने आते हैं, बहुत पुराने पुराने अच्छे गाने आते हैं, हमारे पसंदीदा गाने आते हैं
0: जी। वाह। तो कोई एक आध पसंदीदा गाना आपका हो तो वो आप हमें बताइए, अगर हो सके तो सुनाई भी सही।
2: नहीं सुनाना तो नहीं, बाकी हाँ महेंद्र कपूर जी का आवाज में है, उपकार फिल्म का गाना है, मेरे देश की धरती।
0: क्या बात है, बहुत सो। इस गीत की झलक हम थोड़ी सी अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, क्योंकि गाना ही इतना खूबसूरत है।

0: अनिल जी, आपने बताया कि आपके मकान की हर मंजिल पर आकाशवाणी होती है।
1: यस यस यस,
0: है ना।
1: यस,
0: बिल्कुल यही बात राजेंद्र जी ने भी कही थी कि जब वो भोजन करते हैं तब दूसरा रेडियो सुनते हैं।
1: यस यस,
0: और जब विश्राम करते हैं तब तीसरा रेडियो सुनते हैं,
2: और दुकान पे आते हैं जब चौथा सुनते हैं।
0: चौथा सुनते हैं जी, क्या बात है। तो
1: नहीं, किसी टाइम हम जब मैं शिफ्टिंग ड्यूटी करता था,
0: हाँ जी,
1: तो नाइट ड्यूटी हुआ करती थी, तो पॉकेट रेडियो ले आता था
0: जी,
1: तो अपना फिजिकल काम करते करते रात को गाने सुनना, तो उसे काफ़ी रिलैक्स मिलता था, बहुत रिलैक्स मिलता था। तो रेडियो, तो रेडियो शुरू से साथ रहा है
0: जी। आप रेलवे में काम किया करते?
1: जी,
0: रेलवे से आप रिटायर हुए हैं?
1: यस यस
0: जी। रिटायरमेंट के पहले,
1: यस,
0: आप जब व्यस्त रहते थे तब क्या अपने काम पर तो रेडियो सुनने का अवसर नहीं मिलता था आपको?
1: नहीं, स्टेशन पर ड्यूटी रहती थी, फिजिकल ड्यूटी रहती थी
0: जी,
1: तो पॉकेट रेडियो चला लेते थे।
0: और उस पर गाने, क्या सुना करते थे
1: रात को? गाने, गीत आते, अपने गाने चलते रहते थे,
0: गाने चलते रहते थे जी,
1: गाने सुनते रहते थे
0: जी। बागला साहब, आप कुछ सोच रहे हैं?
3: नहीं,
0: अच्छा जी। अंकिता जी, एक गृहिणी आप हैं
4: जी,
0: और रेडियो पर जो अलग अलग, जैसे आपने बताया कि आप किसान वाणी भी सुनते हैं, कृषकों के लिए जो प्रोग्राम होता है चौपाल, उसे भी आप सुनते हैं, तो ऐसे में महिलाओं का जो प्रोग्राम आता है उसमें घर के संबंधी, रसोई से संबंधित बहुत सी बातें आती हैं
4: जी, जी,
0: और महिलाओं को केंद्रित रखते हुए जब डॉक्टर्स के प्रोग्राम आते हैं तब हम उनसे ये जरूर पूछते हैं कि अपनी रसोई से स्वास्थ्य के लिए जो सामग्रियां होती हैं उसके बारे में बताइए। वो आप जब सुनते हैं आपको कैसा लगता है? क्या वाकई में आपके लिए वो लाभप्रद होते हैं?
4: जी जी, जरूर, उनसे हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। वो जो बताते हैं मैं उनको अपने दैनिक जीवन में लाती भी हूँ और वैसा करती भी हूँ।
0: जब हम खास तौर पर डॉक्टर से पूछते हैं कि रसोई में निकलने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे हल्दी है,
4: हाँ,
0: खास तौर पर हल्दी जैसी चीजों का उपचार वो बताते हैं, या और भी अलग तरीके जैसे काली मिर्च है, इनका भी अलग, कहने का अर्थ है कि रसोई से जो सामग्री निकलती है वो हमारे पुराने वैद्य जिनका इस्तेमाल करते थे वो रहता है कि हम उससे अपने स्वास्थ्य को सुधार सकें। क्या उन बातों को भी आप अमल में लाते हैं?
4: जी जी जी, मैं अपने बच्चों को हल्दी दूध ही देती हूँ।
0: वाह।
4: कोशिश ये रहती है मेरी कि जो अपने वैदिक जो उपचार है उन्हें वापस रूटीन में लाया जाए।
0: बहुत सुंदर। अंकिता जी, आपसे हम एक बात और पूछना चाहेंगे, थोड़ी सी हास्य की बात है कि रेडियो के इतने ज्यादा शौक के बाद
4: जी,
0: आपके घर में कोई खटपट हो जाती है कि आपके पति ऐसा कहते हो कि जी रेडियो में आपका ज्यादा ध्यान है, हमारे पास नहीं है?
4: जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं इधर बैठा हूँ तो रेडियो में लगी हुई है,
0: हाँ,
4: मेरे तरफ ध्यान ही नहीं है। बस रेडियो ही सुनती रहती है, और फिर बीच में कभी बंद कर देते हैं तो मैं काम छोड़ देती हूँ।
0: ओह।
4: फिर वापस ये रेडियो ऑन करते हैं तब फिर से मैं काम शुरू करती हूँ।
0: तो उन्हें ऐसा लगता है कि रेडियो ही उनकी शक्ति है।
4: जी जी जी,
0: बहुत सुंदर। और श्रोताओं, रेडियो किस तरह का मनोरंजन है जो इस्तेमाल करने में बहुत सस्ता है, लेकिन इसकी जो प्रसारण सामग्री है वो बिल्कुल सस्ती नहीं है, वो बहुत उपयोगी है और आपके ज्ञान के लिए होती है। श्रोताओं, यदि आप रेडियो में अपना सेल लगाते हैं तो बहुत लंबे समय तक चलता है और आपको मनोरंजन देता है, ज्ञान देता है, सूचनाओं का भी माध्यम बनता है। और यदि आपका रेडियो बिजली से चलता है तो उसमें होने वाला खर्चा शून्य के बराबर होता है जी। वागला साहब, वो दौर बताइए जब आप रेडियो सुनने में कभी आपको कोई तकलीफ आई हो।
3: ऐसा मैंने तो कभी महसूस नहीं किया।

0: हालांकि आपको इतने साल हो गए रेडियो सुनते हुए,
1: सुन रहे हैं।
0: आप रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, आपके जो पुत्र हैं उनका क्या व्यवसाय है?
1: उनका व्यवसाय तो टायर शॉप है, कार टायर बेचते हैं केवल
0: जी,
1: और कार का ही जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कार का ही काम है सारा उनके
0: पास। वाह वाह क्या बात है। तो अब आप ये बताइए, जब आपके पुत्र कहीं जाते हो या कभी आपको उस दुकान पर जाना हो, तब रेडियो तो आपके घर पे होता है, क्या आप दुकान पर भी रेडियो ले जाते हैं?
1: हाँ, वो ट्रांजिस्टर है तो ले जाते हैं।
0: अच्छा, रेडियो का इतना शौक है आपको? जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। राजेंद्र जी, आपने बताया कि आपके हर माले पर अपना अपना रेडियो है जी, तो ये जो स्थितियां हैं जब आप रेडियो सुनते हैं और आपके यहाँ पर जो नव युवक आते हैं रेडियो सुनने के लिए, उनकी मनस्थिति का आपको पता है कि वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? और रेडियो के बारे में जो कहा जाता है कि बहुत पुराना एक माध्यम है, अब जमाना बदल गया है, फिर भी आपने रेडियो की लत उन्हें लगा दी?
2: इसका कारण यह है, आज की न्यू जनरेशन जिंदगी को कुछ ही पल का मानती है।
0: हाँ, ये बड़ी गंभीर बात है वैसे।
2: हाँ, कुछ ही पल का मानती है कि जिंदगी 4 दिन की है। मैं उनसे कहता हूं, मैंने कहा भैया जिंदगी तसल्ली से जियो, क्योंकि जिंदगी 1 दिन की नहीं है, इसमें कई पड़ाव आते हैं। जैसे आकाशवाणी में कई पड़ाव आए ना, वैसे ही जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं, तो इसको एंजॉय करके जियो, तनाव में मत जियो। आज की न्यू जनरेशन मोबाइल का इतना यूज कर रही है कि इससे भी तनाव पैदा हो जाता है उनके। लेकिन जब मेरे यहाँ पे आके बैठते हैं तो एक तनाव मुक्त हो जाते हैं, गानों में ऐसे खो जाते हैं, प्रोग्राम में ऐसे खो जाते हैं कि उनको मजा आता है, तनाव मुक्त होते हैं और दिमाग उनका स्थिर होता है। दुनिया भर की टेंशन, मतलब इंसान एक क्रूर स्वभाव हो गया। क्रूर स्वभाव कैसा हो गया, हमेशा गुस्से में, हमेशा तनाव में, उसको ये पता नहीं रहता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ। लेकिन जब मेरे यहाँ आते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार आपके यहाँ आते हैं ना अंकल, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। मैंने कहा काहे का, कि आपके यहाँ पे जो म्यूजिक चलता रहता है धीरे धीरे, गाने ऐसे आते हैं, प्रोग्राम ऐसे आते हैं कि हम उनमें ही खो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं हम कुछ पल के लिए
0: जी।
2: मैंने कहा फिर बाहर जाने के बाद, कि बाहर जाने के बाद वापस तनाव में हो जाते हैं। मैंने कहा भैया आप आकाशवाणी सुनो, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी
0: जी,
2: और नई नई चीजों की जानकारी भी मिलेगी आपको। तो वो ऐसा फॉलो करते हैं, मैं कहता हूँ जैसे फॉलो करते हैं तो वो काफी तनाव मुक्त भी हो गए
0: जी।
2: मेरा तो एक ही काम है, आकाशवाणी खुद सुनो और दूसरों को भी तनाव मुक्त कराओ।
0: क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत ही खास बात आप बोल रहे हैं। आकाशवाणी के लिए एक और टैगलाइन है। और राजेंद्र जी, आकाशवाणी जब सूर्योदय होता है तब से आरंभ होता है और तद अनुरूप ये कार्यक्रम प्रसारित करता है। सुबह जब भक्ति संगीत का कार्यक्रम आता है तब माहौल, वैसे भी सूर्यदेव जो है वो बहुत ही सुंदर माहौल कर देते हैं, और ऐसे में जैसे कहते हैं सोने पर सुहागा, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी पर आता है, वो सुनना आपको कैसा लगता है?
2: वो अच्छा लगता है।
0: जैसे हमारे वागला साहब ने कहा कि रामचरित मानस का प्रसारण होता है और वागला साहब का पूरा परिवार, यहाँ तक कि उनकी जो पुत्र वधु है वो भी रामचरितमानस को अपने साथ में लेकर पढ़ना शुरू करते हैं।
3: उसी के साथ
0: जी, उसी के साथ,
3: उसी के साथ जो आता है उसी के साथ पढ़ने का
0: जी। तो ये कितनी खास बात है। तो ऐसे में जो भक्ति संगीत अर्चना आता है वो या फिर रामचरितमानस,
3: भक्ति संगीत में बहुत अच्छे अच्छे आते हैं भजन
0: जी,
3: और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे आते हैं
0: जी।
3: सुबह 6:05
2: प्रोग्राम पहले भी आता था
3: और 6:35 तक आते हैं करीब
0: जी। क्या बात है, उस समय आते हैं जी।
2: रामचरित मानस का मुकेश जी की आवाज का बहुत शानदार प्रोग्राम आता है।
0: रामचरित सही कह रहे हैं आप,
2: इतना शानदार आता था है कि ऐसा लगता था जैसे
3: अच्छे भजन आते हैं,
2: कोई मतलब साक्षात अपन मतलब सुनते भी जाओ और उसी दौर में
0: कोई देव चलता हुआ।
2: हाँ
0: जी,
2: इतना मतलब मन को तसल्ली वाला रामचरित्र मानस आता था। पहले काफी सुनता था मैं, पहले छोटा था जब, तो मतलब मन को बहुत सुकून मिलता था।
0: आकाशवाणी की अपनी प्रस्तुति है रामचरितमानस गान। पुरानी यादें यूं भी ताजा होती हैं कि एक समय जब आकाशवाणी पर

0: पोस्ट कार्ड्स लोग डाला करते थे। अब दौर हर वक्त बदलता रहता है, कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है। ऐसे में वो जो पोस्ट कार्ड्स का दौर है, उसके बाद में अब टेलीफोनिक प्रोग्राम शुरू हुए, ईमेल आ गए, व्हाट्सएप आ गए, उसके जरिए अब आकाशवाणी से कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। आप सभी जो श्रोता होते हैं वो अपनी बात आकाशवाणी तक पहुंचाते हैं। तो समय बदलता रहता है। वो जो दौर था जब पत्र लिखने का, क्या आप में से किसी ने आकाशवाणी को पत्र लिखे?
1: और जवानों के जो गीत आते थे शाम के टाइम में 4 से 5 बजे, उसमें
0: आपने लिखे थे जी। और जब आपकी फरमाइश जब वहाँ पूरी तब आपको कैसा लगा साहब?
1: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा
0: जी। श्रोताओ, आज हमारे साथ जो आमंत्रित अतिथि हैं उनके परिजन भी हमारे साथ हैं। अब क्योंकि जब उनका जिक्र बार बार हुआ तो हम ये चाहेंगे कि उनकी भी वाणी हम आप तक पहुंचाएं। अब हम अंकिता जी के जो पति देव हैं यहाँ पर हैं हमारे साथ में, तो आप अपना परिचय दीजिए। आप, हम तो अपने श्रोताओं को इतना कहेंगे कि आप अंकिता जी के पति देव हैं
2: जी। मेरा नाम दिनेश सोलंकी है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ
0: जी,
2: और चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान जी से मैं कार्यरत हूँ अभी।
0: और अब जब अंकिता जी ने ये बताया कि रेडियो को लेकर थोड़ी सी झटपट हो जाती है आपके बीच में, हालांकि रेडियो की जो उनकी डिमांड है वो भी आपकी पूरी
2: नहीं, वो एक मजाक के तौर पर रहता है
0: जी,
2: झटपट वाला नहीं है।
0: हाँ, ये नमक मिर्च वाला है बस, केवल इतना सा
2: जी। वो जबरदस्ती बटन बंद कर देता है।
0: जैसे अंकिता जी जब भोजन बनाती हूँ, सब्जी जब बनाती हूँ, उसमें एक छोंक लगता होगा बगार, अगर उसमें अगर नमक और मिर्च ना हो तो आनंद ना आए। वैसे ही शायद आप अपने परिवार के सुंदर माहौल के लिए ऐसा करते हैं
2: जी। जी बिल्कुल, वो वापस चला भी देते हैं।
0: क्या बात है। तो रेडियो में आपका क्या योगदान, आपको भी जब अंकिता जी रेडियो चलाती हैं आप भी सुनते हैं उसे?
2: बिल्कुल सुनता हूं।
0: आपको क्या उसमें पसंद है?
2: उसमें सबसे हेलो फरमाइश।
0: आपने
2: प्रोग्राम बहुत अच्छा
0: कि उसमें भी आप भागीदारी करें
2: जी। जी वो मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैंने बताया आपको कि ये है कि जमाना ये है कि YouTube से चला के हम सुन सकते हैं
0: जी,
2: संगीत गाना हम सुन सकते हैं, लेकिन जो वहां से सुना जाता है, जो ध्वनि आती है
0: जी,
2: वो बड़ी प्यारी है।
0: क्या बात,
2: रेडियो की
0: क्या बात है। तो आपका रेडियो घर पर जब चलता है तो हम ये चाहेंगे कि आज के बाद आप उसको और भी अलग दृष्टि से देखेंगे
2: जी। बिल्कुल देखेंगे
0: जी। बहुत धन्यवाद, आपने आकाशवाणी से बात की।
2: आपका भी धन्यवाद सर।
0: और एक और जहां पर हमारे सहभागी हैं अनिल जी,
3: जी
0: उन्होंने बिना छोंक लगाए हुए बड़े प्यार से दो रेडियो अपनी पत्नी को गिफ्ट किए। अब आप ये बताइए कि आपको क्या ये पता था पहले ही से कि आपकी पत्नी पहले से रेडियो सुना करती थी विवाह के?
3: नहीं, संगीत का उनको बहुत पहले से शौक था, बहुत पहले से शौक था, पीरियड से शौक था
0: जी।
3: ये मुझे पता लग गया था कि संगीत में रुचि रखती है
0: जी। आपने बताया कि आपको पता लग गया था, लेकिन वो दौर तो ऐसा नहीं था कि विवाह के पहले ही पत्नी के शौक का पता लगा।
3: नहीं, नहीं, नहीं। ससुराल आना जाना रहा ना, ससुराल आना जाना रहा, उससे एक्टिविटी पता लगी जाती है
0: जी, जी।
3: कि फिर उनका शौक मैंने देखा तो सबसे बढ़िया मैंने सोचा क्यों नहीं इनको इनका शौक है वो ही पूरा किया जाए।
0: तो फिर आपको ऐसा लगा कि वो रेडियो गिफ्ट करने के बाद आपका स्नेह और बढ़ गया हो?
3: बहुत ज्यादा बढ़ गया।
0: क्या बात है। हम यही चाहेंगे कि आपके परिवार में ये स्नेह बढ़ता रहे और जितने भी श्रोता सुनने वाले हैं उन सबके परिवार में रेडियो के माध्यम से स्नेह का वातावरण बनता रहे।
3: नहीं, फिर हम पति पत्नी सुनते हैं तो बेटे को रुचि नहीं थी
0: जी,
3: बेटा भी हमारा असिस्टेंट मैनेजर है
0: जी
3: पीयूष
0: जी,
3: उसको शौक नहीं था, लेकिन जब हमारा रेडियो चलता है तो उसका मोबाइल बंद होता है और वो भी उसमें लीन हो जाता है गाने वाने सुनने के लिए
0: जी,
3: वो अपना मोबाइल बंद कर देता है।
0: क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब बात बताई। अब हमारे साथ में जो वयोवृद्ध, लेकिन हम चाहेंगे कि उनका शतक रेडियो के साथ में पूरा हो, वागला साहब, उनकी पत्नी जी और उनके पुत्र भी यहाँ पर हैं, तो श्रोताओ आपकी भी ये जिज्ञासा होगी कि उनसे भी आप भेंट करें जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार,
0: हम चाहेंगे आपका भी नाम आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
4: मेरा नाम मीना बागला है
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपका नाम जानकर। आप के बारे में ये बताया जा रहा है कि परिवार की धुरी तो खैर आप हैं ही सही
4: जी।
0: ये बड़ी खास बात है कि बागला साहब जैसा कह रहे थे कि अपने घर में आप जब रामचरितमानस रेडियो पर प्रसारित होता है तब रामचरित खोलकर आप उसका पठन करते हैं
4: जी।
0: ये अनुभव कैसा है आप बताइए, कब से आपने ये शुरू किया, कब से आपको ये ख्याल आया कि आपको ऐसा करना?
4: पहले मेरे पति पढ़ते थे
0: जी,
4: तब मैं काम में ज्यादा बिजी रहती थी
0: जी।
4: तो उसके बाद में बहू आई, बहू आने के बाद थोड़ा फ्री हुई मैं, तो उसके बाद फिर मैंने भी इनके साथ पढ़ना शुरू किया। मुझे

0: एक्चुअली में क्या है, जब जो अर्थ बताते हैं ना पहले पूरा
1: जी,
0: पढ़ने के पहले जो बताते हैं वो मेरे को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उससे पता लग जाता है कि मैं क्या है पूरा
1: जी,
0: तो इसलिए फिर मैंने भी पढ़ना शुरू करा।
1: बहुत सुंदर, और वो अर्थ भी संगीत के साथ बताया जाता है।
0: पहले तो बताते हैं ऐसे स्टोरी रूप में बताते हैं, फिर संगीत के साथ में चलता है
1: जी। आपने मीना जी ये बात कही कि पुत्र वधु आने के बाद में आपका काम बंट गया, थोड़ा आपको राहत मिली। ये भारतीय परिवारों की एक खास बात है कि परिवार जब बढ़ता है, पुत्र होता है, पुत्र की पत्नी आती है, तब परिवार संपूर्ण होता है। जब पुत्री होती है वो किसी और घर की शोभा बनती है। ये जो संस्कार है हमारे, ऐसे संस्कारों का जिक्र जब रेडियो पर होता है तब आपको कैसा लगता है?
0: बहुत अच्छा लगता है सुनकर
1: जी।
0: बहू आने से घर की रौनक आती है, बेटी भी किसी घर की रौनक है वो भी घर में जाकर रौनक देती है।
1: क्या बात है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये बातें सुनकर कितने ही परिवार में ये माहौल बनेगा कि जो भी सास होती हैं, सासू माँ होती हैं, वो अपने पुत्र वधु को और ज्यादा स्नेह करने लगी?
0: जी, बनेगा
1: जी। क्योंकि आपने बताया कि आपके पुत्र वधु भी रामचरितमानस का पठन करती हैं, ये माहौल कैसा बना जबकि एक उम्र का भी अंतर है?
0: उसने जब देखा कि मम्मी डैडी दोनों पढ़ते हैं, फिर उसके मन में भी एक ख्याल आया कि मैं भी शुरू करूं पढ़ना, तो उसने भी शुरू कर दिया।
1: बहुत सुंदर। कोई चौपाइयां आपको याद है रामचरितमानस की?
0: रामचरितमानस निज गावा, तुलसी कृति कथा सुनावा, ये गाथा अमृत बन जावा।
1: क्या बात है। ये वो पंक्ति है जो लता जी
0: शुरू में
1: लता जी कहती हैं। वो पंक्ति है। आज आपके पुत्र भी साथ में हैं। हम चाहते हैं उनकी वाणी भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचे।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम अभय राजा बागला, मेरा यहाँ टायर का व्यवसाय है और मैं रेडियो मम्मी पापा सुन रहे हैं, उनके साथ मैं भी बरसों से रेडियो सुन रहा हूँ
1: जी।
2: मतलब शायद 82-83 से मैं ये रेडियो सुन रहा हूँ
1: जी। 82-83 से आप रेडियो सुन रहे हैं। हाँ। ये बहुत ही पुराना अरसा है और तब से लगातार आप रेडियो सुन रहे हैं, क्योंकि ये वर्णन तो हो ही चुका कि आपके परिवार में रामचरितमानस का पठन होता है। आपको और कौन कौन से कार्यक्रम उसके पसंद है?
2: जैसे अगर मैं अभी का बताऊं तो मैं अभी अपनी गाड़ी में भी ट्यून करता हूं, तो एक हवा महल प्रोग्राम आता है
1: जी।
2: जब मैं शॉप बढ़ा करके घर जाता हूं तो वो टाइम वही होता है जब हवा महल आता है।
1: बिल्कुल।
2: तो 15 मिनट की जो नाटिका आती है वो मैं लगभग रोजाना सुनता हूं कार में।
1: क्या बात है।
2: और वो एक 15 मिनट में अच्छी स्टोरी और एक अच्छी सीख देके जाती है।
1: तब तक आप अपने दुकान से घर तक
2: भी पहुंचते हैं।
1: और जब घर से दुकान आते हैं तब कौन सा वक्त होता है?
2: वो तो सुबह 9:30 बजे का टाइम होता है, उस समय तो मैं जनरली हनुमान चालीसा सुनता हूँ।
1: क्या बात है। यानी कि भक्तिमय आपका परिवार है जी, और रेडियो ने आपका साथ दिया।
2: रेडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कि हमें ना तो डिस्टर्ब करता है और हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है।
1: बहुत खूब।
2: जब मैं पढ़ता था तब भी हम गाने लगा करके मैच कर लिया करते थे, आज बच्चे भी बोलते हैं पर वो आज का म्यूजिक वैसा नहीं है जो म्यूजिक रेडियो पे आता।
1: क्या बात है, क्या बात।
2: वो सुरीले संगीत, वो रफी मुकेश जी के गाने, लता जी के गाने
1: जी।
2: जो आप आकाशवाणी के माध्यम से और जो हम जो आकाशवाणी से सुन रहे हैं संगीत और गाने।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे हमने ये जाना। वागला परिवार आज पूरा हमारे साथ है और साथ में अनिल जी हैं, राजेंद्र जी हैं और अंकिता जी हैं। तमाम श्रोताओं के साथ में आज इस कार्यक्रम का समापन का वक्त आ गया है। इसी कड़ी में अब हम अंकिता जी आपसे ये जानना चाहेंगे, रेडियो पर आप किस तरह का सुझाव व्यक्त करना चाहेंगे?
3: मैं सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि अपने दैनिक जीवन में रेडियो को सुने, रोज नई जानकारियां मिलती है। और सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक सुझाव मिलता है, नई नई बातें सीखने को मिलती है, लोकगीत आते हैं जिससे हमें अपने हाड़ौती क्षेत्र से जुड़े रहने का एक मौका मिलता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रेडियो के माध्यम से अपने दैनिक जीवन में ला सकते हैं
1: जी। रेडियो का 90 वर्षों का सफर चल रहा है, आप आज इसी अवसर पर यहाँ पर हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपकी जो अवस्था है उससे भी पहले रेडियो तब से चल रहा है? और आपने बताया कि आप अपने बचपन से रेडियो सुना करते हैं।
3: जी जी, मैंने मेरे बचपन में 7-8 साल की वर्ष से ही रेडियो सुनती हूँ। पहले मामा जी के यहाँ सुनती थी, फिर पापा के यहाँ भी रेडियो ही था, टेलीविजन हमें देखने को मिलता नहीं था, वही मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ
1: जी।
3: उन्हें भी टेलीविजन नहीं देखने देती हूँ, वो भी रेडियो ही सुनते हैं मेरे साथ।
1: तो आप ये चाहेंगे कि उनका जब परिवार बनेगा आगे का,
3: जी जी,
1: तब भी रेडियो ही चलता है। बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी।

0: रेडियो के प्रति आपका क्या विचार है?
1: अच्छी जानकारी मिलती है रेडियो पर। अभी कुछ समय पहले एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो उसमें बताया था कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने भी वो फॉलो किया। सुबह के टाइम पे आप फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, खाना मत खाओ। तो मैंने ये फॉलो किया तो वाकई में मेरी बॉडी की एनर्जी काफ़ी मतलब तब्दील हुई, काफ़ी मतलब एनर्जिक पावर महसूस हुआ मेरे को।
0: बहुत खूब।
1: उससे पता चला कि वाकई में रेडियो पे ऐसी ऐसी जानकारी आती है जो आपको कहीं नहीं मिलती, और बड़े बड़े एक्सपर्ट ऐसी जानकारी देते हैं जो किताबों में भी नज़र नहीं आती, क्योंकि उन्होंने भी फॉलो किया हुआ है
0: जी,
1: उन्होंने भी आजमाया हुआ, तभी जाके वो बता रहे हैं श्रोताओं को। तो मेरा तो यही कहना है कि आप आकाशवाणी केंद्र के सब तरह के प्रोग्राम सुने, वो ध्यान से सुने, ताकि आपको भी उनसे सीखने की कुछ जानकारी मिले।
0: बहुत खूब राजेंद्र जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अनिल जी, हम आपसे अब ये जानना चाहें, रेडियो को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
2: रेडियो को यही सुझाव देना चाहूँगा, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे प्रोग्राम देता है, सभी तक आसानी से पहुँच जाता है, और 90 वर्ष हुआ है ऐसे, मैं चाहूँगा कि इसको 190 वर्ष हो।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये शून्य भी बढ़ते चले
2: जी।
0: पागला साहब, बड़े लंबे समय से आप रेडियो सुन रहे हैं, 1963 से आपने रेडियो सुनना आरंभ किया, आप आकाशवाणी को क्या सुझाव देंगे?
3: आकाशवाणी में जो प्रोग्राम आ रहे थे उनमें काफ़ी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं और वो जारी रहना चाहिए। दूसरा, जो अभी आजकल शाम के टाइम में खेती बाड़ी का प्रोग्राम आता है वो पूरा नहीं हो पाता किसानों को,
0: समय का ज़रा अभाव रहता है जी। श्रोताओं, आकाशवाणी वो माध्यम है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात के लिए अपने आधार के रूप में चुना, और आप सभी श्रोता इसे अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। ये वही आकाशवाणी है जो बरसों पहले आकाश के माध्यम से हुआ करती थी और अब आपके इस आधुनिक यंत्र के माध्यम से हुआ करती है। अब जब हमने जिक्र किया था कि अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत करना चाहें, तो हमारा मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप के लिए 95301 2020, और ईमेल का पता enjoyairkota@gmail.com। श्रोताओं, इनका इस्तेमाल कीजिएगा आकाशवाणी से सीधा संपर्क करने के लिए। और अब श्रोताओं, इस परिचर्चा की समाप्ति के लिए मैं आमंत्रित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।
2: बहुत शुक्रिया
0: जी, और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अब जैसी की अपेक्षा है, अभी रेडियो के 90 वर्षों का सफर हो रहा है, आने वाले समय पर 10 और लगकर 900 वर्ष भी इसके पूरे हों।
2: बिल्कुल
3: पूरे होने
0: बिल्कुल। आप सभी आमंत्रित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओ, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष भारत में रेडियो प्रसारण की स्वर्णिम यात्रा के रूप में मनाई जा रही है, और इसी अवसर पर इस परिचर्चा का भी आयोजन किया गया आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के इस स्टूडियो में। श्रोताओ, आपको ये जानकारी दें, इस परिचर्चा का संयोजन हिमांशु नामा का था और ये निर्देशन तेजराम मीणा का। और राजेश महावत को भी इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे एक बेहद ही खूबसूरत और मधुर परिचर्चा आकाशवाणी के 90 सालों के सफर पर। संचालनकर्ता राजेश महावर।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे रे।
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज़ ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सहअध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉ. जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जाँच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस

0: नंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म संगीत।

दिन भर की व्यवस्थाओं के बाद शाम के कुछ सुकून के पल और मधुर संगीत आपके नाम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, आपकी रेडियो साथी नेहा के साथ। फिल्म संगीत का पहला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत फिल्म से, जिसका नाम है सोनू के टीटू की स्वीटी। आपको भले ही ऐसा लगेगा कि भाई शाम ढल रही है, लेकिन इस गीत में, जी इस पहले ही गीत में सुबह की ताजगी और नई उमंग का एहसास जुड़ा है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अमाल मलिक की तर्ज पर यह गीत आपने सुना, शब्द रचना कुमार की और सम्मिलित स्वर अरिजीत सिंह, प्रकृति कक्कर और अमाल मलिक के। आइए सुनते हैं अगला गीत सैटेलाइट शंकर से।

मिथुन, अरिजीत सिंह और आकांक्षा के सम्मिलित स्वरों में आपने ये गीत सुना फिल्म सैटेलाइट शंकर से, मिथुन के ही बोल और मिथुन का ही संगीत। अगला गीत अब आप ये सुनिए जिसे हमने लिया है एक बेहद ही खास फिल्म से। इस फिल्म के इस गीत को सुनकर हमें यकीन है आपकी कुछ पुरानी यादें और पुरानी बात आपको जरूर याद आएगी और आप इसी वक्त में वापस लौटना चाहेंगे।

और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार के स्वर में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार और हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें।
3: ओ।
2: बैंक से संपर्क कर

0: आता सक्रिय बनाओ।
1: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख। पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इससे पहले अपने उद्घाटन भाषण में डॉ जयशंकर ने कहा कि 4 साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के संयुक्त आयोग की ये बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान समुद्री यातायात में गंभीर व्यवधान के बावजूद भारत होर्मुज़ जल डमरू मध्य से ऊर्जा माल की आवाजाही जारी रखने में सफल रहा। मंत्रालय के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है और एलपीजी की बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूप से जारी है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योग

0: योगदान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में सभी से सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लेने की अपील की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख किया। श्री मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहे, साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है, वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: इधर प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम हुए। राजधानी जयपुर में फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन आयोजित की गई। इसमें बड़ी संख्या में साइक्लिस्ट, फिटनेस प्रेमी, विद्यार्थी, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिकों ने भाग लिया। इस आयोजन ने स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया। इसके साथ ही सप्ताह भर चले जागरूकता अभियान का भी समापन हुआ। वहीं विद्याधर नगर स्टेडियम में साइकिल रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, पाली, अजमेर, सवाईमाधोपुर, कोटपुतली सहित कई स्थानों पर आम नागरिकों सहित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने साइकिल चलाकर और योगाभ्यास कर फिट रहने का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख है। बोर्ड की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इस बीच सरकार की ओर से नीट UG परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। NTA ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही प्रश्न पत्र लीक और बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। उम्मीदवारों और अभिभावकों को अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी तरह के संदेश पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि अच्छी शिक्षा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान का पूरे समाज में प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा से होता है, इसीलिए इसे उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री बागड़े आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के 23वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गंग नहर निर्माण शताब्दी वर्ष पर जल संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। वहीं केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति से जुड़े मूल्यों पर कार्य करने की आवश्यकता जताई। प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जरूरी काम करवाए जा रहे हैं। लगभग 2,500 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना से 300 से ज्यादा गांवों की लगभग 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि आगामी वर्षों में ये परियोजना बांसवाड़ा जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में शामिल होगी। इसके पूरा होने के बाद क्षेत्र के किसानों को साल भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इससे भूजल स्तर सुधार, जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही ये परियोजना वागड़ क्षेत्र के जनजाति बहुल इलाकों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। शहरी क्षेत्र के सूली डूंगर सनसेट पॉइंट को नगर परिषद ने मॉल

0: रोड की तर्ज पर विकसित करने की खास योजना शुरू की है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से नगर परिषद को हर साल करीब 38.5 लाख रुपए का राजस्व भी मिलेगा।
1: सूर्यनगर में अभी जो विकास कार्य जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है, क्योंकि तैयार हो जाएगा उसके बाद इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा। उसके लिए हमने एक नया पीपीपी मॉडल तैयार किया जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिडर को एक जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा। और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिड प्राइस 20 लाख रखी थी। जो इन्वेस्टर आया है उसने बिडर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास, तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो। एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सूर्यनगर जाना जाता था, काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था, तो इसको एक रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पर सूर्यनगर को हम डेवलप।
0: प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं कई क्षेत्रों में तेज गर्मी का दौर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में जहां एक और तेज धूप और गर्म हवाओं से आमजन बेहाल रहा, वहीं घड़साना क्षेत्र में तेज बरसात हुई और 3 GD इलाके में ओले गिरे। बालोतरा में दिनभर लू चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जैसलमेर में तेज गर्मी के चलते दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आया। पाली में भी लू और उमस के चलते लोग बेहाल रहे। यहां चिकित्सा विभाग ने आमजन को ORS, नींबू पानी और छाछ जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने और जरूरी होने पर घर से बाहर निकलते वक्त सिर ढककर निकलने की सलाह दी है। इधर मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कल 7 जिलों में बारिश और 2 जिलों में हीटवेव की चेतावनी है। पाली में 16वीं राज्यस्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। फाइनल मुकाबला अलवर और जयपुर के बीच हुआ। इसमें जयपुर की टीम ने 3-1 से जीत हासिल की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत ने विजेता और उप विजेता टीमों सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज आखिरी तारीख। पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख विशारद जोशी ने तैयार किया है। पाली जिले की अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुजरात के भुज से सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। बीते दिनों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाली रेलवे स्टेशन से भुज दिल्ली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे विकास कार्य प्रगति पर हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने बताया कि पाली, मारवाड़, सोजत रोड, फालना, सोमेसर और मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशनों का काम भी प्रगति पर है। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 25 मई से 5 जून तक पानी बचाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने लाखोटिया उद्यान से इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान दीपदान के कार्यक्रम हुए, जल चौपाल लगाई गई, पानी को बचाने की शपथ ली गई। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों, बावड़ियों, जल

0: स्रोतों की साफ सफाई सहित जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत के काम किए गए। अभियान के दौरान जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस अभियान का समापन विश्व पर्यावरण दिवस पर हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान 2026 की शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां रखी गईं, वहीं जगह जगह पौधरोपण कार्यक्रम भी हुए। नगर निगम कार्यालय और जिले की सभी नगर पालिकाओं में इन दिनों लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 30 जून तक लगने वाले इन मेलों में स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ने, ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान और अन्य सरकारी लाभों की जानकारी दी जा रही है। सुगम, सरल और सुरक्षित परिवहन के उद्देश्य से वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन और काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही चालान काटा जा रहा है। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। जनगणना 2027 के तहत चल रहे मकान सूचीकरण और मकान गणना का काम जोरों पर है। प्रगणक घर घर जाकर 33 प्रश्नों के जरिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसे HLO ऐप में दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 14 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। लोगों ने स्वयं ऑनलाइन जानकारी पोर्टल पर दर्ज की। इस काम में देसूरी ब्लॉक का तिखी गांव जिले में पहले स्थान पर रहा, जहां सभी ग्रामीणों ने खुद अपनी जानकारियां दर्ज कर मिसाल कायम की। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इसमें पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली का उद्देश्य नियमित व्यायाम और फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित करना रहा। इस दौरान साइकिलिंग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों खांडी गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। पाली कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने किसानों को संतुलित और मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग के महत्व की जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं के बारे में बताकर उनका अधिक से अधिक फायदा उठाने को कहा। अभियान का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से इन दिनों 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जा रही है। CMHO डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि ये दवा 29 जून तक दी जाएगी। जिले के सभी उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पतालों में ये दवा उपलब्ध है। इसके साथ ही पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक नई दिल्ली में पूरी हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड री 12वीं कक्षा रा पुनर्मूल्यांकन खातर ऑनलाइन आवेदन जमा करबारी आज आखिरी तारीख। पोर्टल आधी रात तय खुलेला। और मौसम महकमो प्रदेश रा 12 जिला में आंधी और मेह बरस बारो येलो अलर्ट जारी करियो। समाचार आरएस आ गए, मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोगरी बैठक आज नई दिल्ली में पूरी हुई। इन बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया का विदेश मंत्री सुगियोनो करी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर कया के हाल रा बरसा में दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक भागीदारी हुई। वना कया के बैठक में राजनीतिक, रक्षा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महताऊ खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक समेत द्वीप

0: राष्ट्रीय इमदाद रा सगला पहलवामा थे गहरी चर्चा भी। दोनों मंत्री बहुपक्षीय समन्वय ने आगे बढ़ावा और भारत आसियान संबंधा ने मजबूत करवा माथे चर्चा करी। इनसे पहली आपरा उद्घाटन भाषण में डॉ जयशंकर कहा के चार बरसरा अंतराल रे पछे दोनों देशारा संयुक्त आयोगरी आ बैठक वी है। केंद्र सरकार कहो के अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी रे बावजूद भारत में एलपीजी गैस सबू कम कीमत में मुहैया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक बयान में कहो के भारतीय सिलेंडर किनी भी पड़ोसी देश के मुकाबले सस्तो है। सरकार कहो के पश्चिमी एशिया संकट रे दौरान समुद्री यातायात में देरी रे बावजूद होमोर्ज जल डमरू मध्य से ऊर्जा मालरी आवाजाही जारी राखबा में सफल रहो। मंत्रालय रे मुजब देश में पेट्रोलियम उत्पादारी कोई कमी नहीं है और एलपीजी री बॉटलिंग और वितरण गतिविधियां सामान्य रूपों चल रही है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इन बरसों विषय समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन है। ओ दिन खाद्य सुरक्षा ने एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी का रूप में मजबूत बनावारो मौको देवे है। इन मौके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रखने सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में वणा नागरिकों स्वस्थ खान पान री आदता डालबा और स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बनावा माए योगदान दे बारी अरज करी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी सोशल मीडिया संदेश माए सगलों सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ कानी जाग जगाबा और स्वस्थ जीवन शैली ने अपना बारो संकल्प ले बारी अरज करी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल रा 77वां कार्यक्रम में भाग लेना। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा के साइकिल चलाबा सू पर्यावरण ने साख रखबा में इमदाद मिले है। वणा साइकिल चलाबा सू स्वास्थ्य में होबा वाला फायदा रो जिक्र करता थका कहा के लोगा ने इन पहल में शामिल होर फिट इंडिया रा सपना ने साकार करनो चाहिए।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहे। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: वठी ने प्रदेश में संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम विया। राजधानी जयपुर में फिटनेस पर्यावरण संरक्षण और सतत परिवहन ने बढ़ावो दीवारा लगासु साइक्लोथॉन रखी गई। इनमें बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट फिटनेस प्रेमी पढ़निया कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और नागरिक भाग लेना। इन आयोजन में स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक सहभागिता रो संदेश दियो गयो। इन सागे ही सप्ताह भर चल रियो जागरूकता अभियान भी पूरो वियो। वठी ने नगर स्टेडियम में साइकिल रैली काढ़ी गई। श्रीगंगानगर बाड़मेर पाली अजमेर सवाईमाधोपुर कोटपुतली समेत कई ठोड़ा माथे लोगा समेत पुलिस अहलकार और कर्मचारी साइकिल चला लोगा ने फिट रहबारो संदेश दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई री 12वीं कक्षारा परीक्षारा नतीजा जारी हो बारे पछे इनसु जुड़िया मुद्दारी जांच और उत्तर पुस्तिकावा ने फेरो जांचवा खातर ऑनलाइन आवेदन जमा कर बारी आज आखिरी तारीख है। बोर्ड रा सोशल मीडिया पोस्टर मुजब ये पोर्टल आधी रात तय खुलिया रहेला। इन भी सरकारी कानी नीट यूजी परीक्षा ने साफ कोई तरीकाओं कराबा खातर सगला सुरक्षा उपाय पक्का करिया जा रिया है। ये परीक्षा 21 जून ने वेला। एनटीए सोशल मीडिया माथे चाल रही पेपर लीक और उनरी बिक्री से जुड़ी बाता नकार दियो है। वना पढ़ानिया और उनरा घराला सु इन बेबुनियाद माथा माते भरोसो नी कर बारी सलाह दी है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े कया के चोखी शिक्षा देणो मां की सबू पहली प्राथमिकता वेणी चाहिए। वे कया के ज्ञान रो पूरा समाज में प्रसार विश्वविद्यालय शिक्षा सु होवे है। इन खातर सगला ने मिलर उन्ने चोखो बनानो चाहिए। श्री बागड़े आज लोकभवन सु महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर 23वां स्थापना दिवस माथे संबोधित करिया। इन मौके वणा गंग नहर निर्माण शताब्दी बरस माथे पानी बचाबारो संकल्प ले बारी अर्ज करी। केंद्रीय विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विश्व

0: विश्वविद्यालयर थापना दिवस री शुभकामना देता थका विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति सु जुड़िया मूल्य माथे काम करबारी जरूरत जताई। प्रदेश में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना ने सर्वोच्च प्राथमिकता देता थका जरूरी काम करवाया जा रहा है। करीब 2500 करोड़ रूपया लागतों इन परियोजनाओं 320 गांवारी करीब 42,000 हेक्टेयर कृषि भूमि ने लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों पानी मुहैया वेला। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कया के आवता बरसा माए आ परियोजना बांसवाड़ा जिलारी खेतीरी माली व्यवस्था ने नई दिशा देवा वाली खास सिंचाई परियोजना माए भेली वेला। इनरो पूरो होबारे पछे किसाना ने साल भर खेती खातर पानी मिल सकेला। कया के इनसू जमी माए पानी रो स्तर सुधरेला, पानी री बचत वेला और गांवाई हलकारा विकास ने मजबूती मिलेला। सागई आ परियोजना बागड़ हलका रा जनजाति बहुल इलाका रा सामाजिक और माली विकास माए मील रो पत्थर साबित वेला। जैसलमेर माए पर्यटन ने बढ़ावो दे बारी तैयारी शुरू हो चुकी है। शहरी हलकारा सूली डूंगर सनसेट पॉइंट ने नगर परिषद मॉल रोड री तर्ज माए बनावारी खास योजना शुरू की है। नगर परिषद आयुक्त लजपत लाल सिंह सोढ़ा बतायो कि इन प्रोजेक्ट को नगर परिषद ने हर बरस करीब 38,50,000 रूपया रो राजस्व मिलेला।
1: सूली डूंगर में अभी जो विकास कार्य जारी है वो उसका पूरा सनसेट पॉइंट का रिनोवेशन का है। क्योंकि तैयार हो जाएगा उसके बाद इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना होगा। उसके लिए हमने एक नया पीपीपी मॉडल तैयार किया जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिडर को एक जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई है वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा। और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिड प्राइस 20 लाख रखी थी। जो इन्वेस्टर आया है उसने बिडर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो। एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सूली डूंगर जाना जाता था काफी लोग जाते थे और काफी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था। तो इसको एक रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पर सूली डूंगर को हम डेवलप।
0: प्रदेश में मौसम रो मिजाज लगातार बदल रही है। एक और कई जिला में आंधी चालबा और मेह बरस बसु लोगों ने गर्मी और उमस से राहत मिली तो बठीने कई हल्का में तेज गर्मी आपरो कहर बरसारी है। प्रदेश रा श्रीगंगानगर बालूतरा जैसलमेर पाली में तेज धूप और गर्म हवा चालबा से आम जीवन बेहाल है। बठीने घड़सामाना में तेज बरसात रे सागे ओला पड़वारा समाचार है। चिकित्सा महकमो तेज गर्मी रे चलता आमजनों ओआरएस नींबू पानी छाछ रो सेवन करवा और घरासों से ढाकर 12 आबारी सलाह दी है। मौसम महकमो आज 12 जिला में आंधी और बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है। इंडरे इतर काल 7 जिला में मे बरसबा और 2 जिला में हीट वेव री चेतावनी दी गई है। पाली माए 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी होड़ आज पूरी हुई। फाइनल मुकाबलो अलवर और जयपुर के बीच हुयो। इन माए जयपुर की टीम 3-1 से जीत दर्ज करी। समापन जलसा माए मुख्य अतिथि राजस्थान हॉकी संग्रह अध्यक्ष अरुण कुमार सारसत विजेता और उप विजेता टीम समेत चोखो प्रदर्शन करबा वाला खिलाड़िया ने इनाम दीना। उपभोक्ता मामलात महकमारा ई जागृति मंच ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिले हुए। वो सम्मान तकनीक रे जरिए सरकारी प्रक्रिया में सुधार और डिजिटल काम खातर दियो गयो है। उपभोक्ता मामला खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कयो के ई जागृति उपभोक्ता शिकायतारा तुरंत निपटारा माए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रियो है। इन बरस 1 जनवरी ने शुरू कराया गया ई आई आधारित मंच माथे हाल ताई 2,29,000 बत्ता उपभोक्ता मामलारो पंजीकरण करियो गयो जबकि 2,07,000 बत्ता मामलारो निपटारो करियो गयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित कराया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी वेला। ई सारो आप ही मुफ्त नंबर 1800-11-7800 माथे 26 जून तई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप माए और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए भी आपरा विचार भेजा जा सके है। और अब आखिर माए खास खबर एक कर फेरू। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में पूरी हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी मजबूत हुई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा स्वस्थ भविष्य खातर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन रिकानी सरकारी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा

0: पुराना हो तो पता चल सकता है, कहाँ से पता चले?
1: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर जान।
6: FM 102.6 MHz व मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम न सुन बाला संदा काश्तकार भाई बहनिया गताई धनंजय भाई गया डिसु गणी गणी राम राम राम राम जी राम राम करसान भाई बहनिया हो काई हाल चाल छा आपका मजा का ही होगा बिल्कुल देखो मजा का होनी भी छाए जी करसान भाई बहनिया हो आज 6-7 जून को दिन और आज ही का दिन हर साल मनायो जाओ चो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस बिल्कुल भाई बहनिया हो और देखो इको जो मुख्य उद्देश्य च दूषित भोजन और खराब खान पान सु हो वाली जो बीमारियां च वाका बारा में वैश्विक जागरूकता फैलाई जाओ और जो सुरक्षित खाद्य प्रणालिया च वाका ताई बढ़ाओ मला करसान भाई बनियाओ हर साल की नाई इस साल भी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम राखी गई छे और इस साल की थीम च बोझ से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन बिल्कुल भाई बनियो या थीम बताओ च खाद्य जनित जो बीमारियां वांसु हो वालो जो नुकसान छ उका आंकड़ा को उपयोग कशा प्रभावी समाधान हेरबा का लेख और सभ्या का लेख सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करबा का लेख करो जा सक छ कितनी बढ़िया बात छ देखो करसान भाई बनियो अब बात आओ च खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी छ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दूषित भोजन खावासू खराब भोजन खावासू हर साल दुनिया में 9 में से 1 आदमी बीमार पड़ जाओ छ और ई वजह सु हर साल कतनाई मनख्या की मौत भी हो जाओ छ करसान भाई बण्यो खाद्य जनित जो बीमारियां छ वांसू बचाओ आपन और अपना परिवार का लेख बहुत जरूरी छ तो कुछ सरल आदतां अपना अपना खाद्य जनित जो बीमारियां छ वांसू बच सका जा जैसा साफ सफाई छ भोजन बनावा सु फली और भोजन खावा सु फली हमेशा हाथ साबुन सु छोकी तणिया दोवा फल और सब्जियां का ताई खावा सु फली छोकी तणिया दोवा कच्चा पक्का खाद्य पदार्थ जो छ वहां का ताई अलग अलग रखा या बातों को अपन ध्यान रखा
1: हो गया इंतजाम
2: किसका गुड्डी की फीस का
3: दिखा
2: 20,000 का लोन तुरंत
3: पता है कौन दे रहा है ब्याज कितना है
2: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत
3: वो भी जांच कर
2: हो गया

0: انتظام. پگار ایڈوانس میں بھیجیے.
1: آر بی آئی کہتا ہے
0: صحیح وتیا برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ.
2: किसान भाइयों, आज की टर्म पर जोड़ा की स्वास्थ्य समस्या बहुत देखबा में मिले छे, पण योग को अगर नियम सु अभ्यास करियो जावे तो जोड़ा का स्वास्थ्य का ताई छोकी तण्या सुधारियो जा सके छे, पर बनायो राख्यो जा सके छे. योगाभ्यास जोड़ा का आसपास की जो मांसपेशियां छे वहां का ताई मजबूत करे छे और सूजन कम करवा में मदद करे छे. भाई बहनों, जो कुछ मुख्य योगासन छे ज्यां को अगर नियम सु अभ्यास करियो जाव तो जोड़ा को स्वास्थ्य बढ़िया राख्यो जा सके छे. जश्या ताड़ासन छे, यो आसन शरीर को संतुलन सुधारे छे और रीढ़ की हड्डी और गोड़ा कताई सही मुद्रा में राखवा में मदद करे छे. सेतु बंदासन छे, यो पेट का नीचे का हिस्सा कताई मजबूत करे छे और घुटना का दर्द कताई भी ठीक करे छे. बालासन छे, यो ठीक पीठ और जांगा में तनाव कम करके जोड़ा के ताई आराम पहुंचाओ छे. वीरभद्रासन छे भाई बण्याओ, यो जांगा की मांसपेशियां के ताई मजबूत बनाओ छे, जिसु घुटना पर पड़वाड़ो जो दबाव छे वो देखो कम हो जाओ छे. यहां सब योगासना को अभ्यास करवा सु जोड़ा का आसपास की जकड़न दूर हो छे, जिसु जो जोड़ा का हालचाल छे वो बढ़िया हो छे और लचीलोपन भी बढ़िया बढ़ जाओ छे, बढ़िया हो जाओ छे. तो करसान भाई बण्याओ, आपन योगाभ्यास जरूर करा ताकि आपनो जो जोड़ा को स्वास्थ्य छे वो बढ़िया रहे, बढ़िया बण्यो रहे. करसान भाई बण्याओ, चौपाल कार्यक्रम माल और भी बातचीत करेंगे, जानकारी भी लेंगे, उसे फली एक लिया चाहिए अंतराल.

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: करसाण भाई बण्यो आपना चौपाल कार्यक्रम में टर्म टर्म पर विशेषज्ञ फावना पधारे छे और वो आपन कताई छोकी छोकी बढ़िया बढ़िया जानकारियां दे छे। तो ई क्रम में भाई बण्यो आज जो विशेषज्ञ फावना आपना साथ जुड़ चुका छे वो छे डॉक्टर विमला डूंकवाल कुलपति कृषि विश्वविद्यालय कोटा और यहां से बातचीत कर रहा छे अपना राजू भाई। तो सुना चाहिए बातचीत।
3: आज हम विश्व खाद्य दिवस मना रहे हैं। आज हमारे साथ अतिथि के तौर पर हैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा कुलगुरु प्रोफेसर विमला डूंकवाल जी। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं
4: जी। नमस्कार सर
3: जी। आज हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर हम खाद्य की सुरक्षा के लिए जो चिंतन करते हैं वो चिंतन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी महत्व का है और पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्व का है, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी हमने पर्यावरण को दूषित किया और पर्यावरण का ये प्रदूषण हमें खाद्य की चिंता भी सामने लेकर आ रहा है। इस विषय पर आज आप यहाँ हैं तो बहुत सी काम की बातें और ऐसी अलार्मिंग जो साइन है वो हमारे श्रोताओं तक आपके माध्यम से पहुंचे, इसलिए आपके शब्दों का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे
4: जी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है समस्या से समाधान, साथ ही सुरक्षित भोजन सभी को उपलब्ध हो, इस पर ही हमारा फोकस रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि जो सुरक्षा है वो हम सभी के लिए आवश्यक होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इसी प्रकार से खाद्य को भी हमें सुरक्षा प्रदान करनी आवश्यक हो जाती है। ये हमारे दिमाग से कई बार निकल जाता है कि अगर हम सुरक्षित खाद्य पदार्थ अपने आहार में नहीं लेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां होने की जो अवसर है या चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जैसे हम मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, दो स्वास्थ्य की बात करते हैं। जो खाद्य सुरक्षा है वो हमें क्योंकि अभी

0: हो रहा है कि लोगों का जब नैतिक जब मूल्य जो होते हैं हमारे, जब हमारे जीवन से खत्म हो जाते हैं और हम मनुष्य हैं, वैसे हम पर्यावरण में देखें तो भगवान की जितनी भी कृतियां हैं मनुष्य के अलावा सभी सकारात्मक हैं,
1: क्या बात है
0: है ना।
1: जी।
0: मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है, तो जब उसने अपने लिए सोचना शुरू करा तो हमारी जो भूमि है वो भूमि भी हमारी धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि उसमें निरंतर पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते जा रहे हैं।
1: जी।
0: इसके कारण हम सबको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। हमें एक बार, ये अलार्मिंग सिचुएशन है,
1: जी।
0: हमें यहाँ रुकना होगा। जो हमारी पद्धतियां चल रही हैं उस पर हमको, उस पर फोकस करते हुए अपनी पद्धतियों को फिर से, जो हमारी सनातन कृषि पद्धतियां थी उनको अपनाना होगा। उससे हमारा जो सुरक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा, वो हमारी, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, एक कुलगुरु होने के नाते भी आपने इतनी महत्व की बात ये कही कि खतरे की घंटी ध्वनि हमें सुननी चाहिए और तदनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। आपने ये बताया कि इंसान

0: उससे हमारा जो सुरक्षा की जो हम बात कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा, वो हमारी, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, एक कुलगुरु होने के नाते भी आपने इतनी महत्व की बात ये कही कि खतरे की घंटी ध्वनि हमें सुननी चाहिए और तदनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। आपने ये बताया कि इंसान इस धरती की खूबसूरत कृति है, सबसे समझदार भी है, लेकिन दिशा गलत चुन ली गई है। रफ्तार भी ठीक है लेकिन दिशा गलत है। इसे यदि हम सही लेकर चलें तब काम हमारा बनेगा। जैसे कि इस वर्ष की थीम समस्या से समाधान आपने बताया, ये समस्या तो सामने है, समाधान के तौर पर हमें किस तरह से मानसिक रूप से तैयार होना होगा?
0: जी बिल्कुल, जो हम समस्या से समाधान की बात कर रहे हैं, देखिए समाधान इसका केवल एक ही है कि हमको जो हमारी कृषि पद्धति है उसको शुरू से ठीक करना होगा।
1: शुरू
0: से कैसे? कि जो खेत है उस खेत की जो मिट्टी है उस मिट्टी को हमें पहचानना होगा, और उस मिट्टी के जो भी हम जैसे बोलते हैं उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं, तो उसकी संख्या को निरंतर बढ़ाना होगा। और वो कैसे बढ़ेगा? जब हम, हमारे ये था कि कृषि और पशु दोनों को मिलाकर के अगर हम चलते हैं तो ही हम जो अच्छी कृषि है, क्वालिटी की जो बात करते हैं, वो हो पाता है। लेकिन हमने धीरे धीरे कृषि को पशुओं से अलग कर दिया। जहां हमने पशुओं को अलग करा वहीं पे हमारी कृषि खराब हो गई। तो अब हमें एक बार ये सोचने की जरूरत है कि फिर से पशुओं को हम अपने साथ रखें, और उनके जो भी हम बोल बात करते हैं कि पंच जो तत्व हैं पशुओं के, उससे हमारी खेत की जो मिट्टी है वो फिर से अच्छी होने लगती है। उसका कार्बन जो तत्व होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जीवाणु उसमें बढ़ जाते हैं, और जो बीज जब हम उसमें डाल रहे हैं तो वही वाली बात है कि जब खेत अच्छा होगा तो उसमें जब आप बीज डालेंगे, उपचारित बीज डालेंगे, तो अपने आप में हमारी खेती भी अच्छी होगी। तो हमें हमारी जो, मैंने फिर पहले भी कहा था, सनातन कृषि पद्धति जो हमारी पहले थी वही हमें आज वापस लेनी पड़ेगी, वो ही एक उसका विकल्प है। और उस पर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसने कार्य भी शुरू कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर प्राकृतिक खेती उसके ऊपर पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें गायों से जो भी हमको मिल रहे हैं उसकी जो चीजें, गाय मतलब गोबर है, गौमूत्र है, उससे उसकी खाद बनाई जाती है। उसके बाद हमने एक और कोशिश करी कि जैसे हम बात करते हैं ना वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट भी साथ में लगाया, और उसके बाद हमने केमिकल के साथ भी किया। तीनों का जब हमने जब तुलनात्मक उसमें शोध किया तो प्राकृतिक खेती के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। वर्मी कंपोस्ट भी हम काम में ले रहे हैं लेकिन उसके भी और भी बहुत अच्छे आए हैं। तो हमको ये चीजें ध्यान में देनी होंगी।
1: क्या बात है, आपने इस बात पर भी जोर दिया कि हम जब से क्वांटिटी की तरफ चले गए तब से ये बात सत्य है कि क्वालिटी डम हो गई, और उस डाउन क्वालिटी को अप करने के लिए, यानी कि समस्या से समाधान की जब हम बात करेंगे, तब आपने यही बताया कि जो पंच तत्व है प्रकृति के वो हमारे शरीर को पोषित करते हैं।
0: जी।
1: एक समय था जब ये कहा जाता था कि भोजन हाथ से करना चाहिए जिससे कि पांचों उंगलियां पंच तत्व का प्रतीक हैं। अब जब से चम्मच आ गए तो भोजन जो थाली में था वहां भी गुणवत्ता कम हुई है, और फिर जब भोजन की शुरुआत जहां खेत से होती है वहां भी इन पंच तत्वों की कमी आई है। अब जब आपने ये बात कही कि हम गाय और उसके द्वारा जो तत्व हमें प्राप्त होते हैं उसे हम फसलों में लेकर आ रहे हैं जिससे हमें फिर से गुण मिले, लेकिन क्या वाकई में ये किसानों के लिए चिंता की बात नहीं हो जाएगी कि जब उन्हें अधिक उत्पादन का जो लत लगी है वो फिर से उन्हें कहीं परेशान तो नहीं करेगी?
0: जी बिल्कुल, ये कई बार क्या होता है कि जिनका अपना एक उद्योग चल रहा होता है, ये एक एक बाजार में ये बात छोड़ दी गई है कि जो प्राकृतिक खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे, उनका उत्पादन कम हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं है। अगर हम, जो भी वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि प्राकृतिक खेती के क्या क्या क्या हमको उसमें काम में लेना है, कितनी मात्रा में काम में लेना है, तो उसका उत्पादन भी उतना ही हो रहा है। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी प्रकृति अलग तरह की होती है, हमको ये लगता है कि हम बुद्धिमत्ता पूर्वक जो भी हमें बताया जाता है हम उसमें अपना अपना ज्ञान और जोड़ लेते हैं, और उसके बाद उसका दुगना प्रयोग करते हैं,
1: चाहे वो ज्ञान नकारात्मक दिशा में।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। अब जैसे हम अगर यूरिया की बात करते हैं या पेस्टिसाइड्स

0: जो होते हैं, जितनी भी तरह के हम काम में लेते हैं, तो उसमें तो यही कहा गया ना कि कुछ एक सीमित मात्रा में बताया गया। लेकिन पहले हमने इनको क्या बोला कि ये हमारी दवाइयां हैं, ये हमारे खेत को सुधारेंगी, हमारी फसलों को सुधारेंगी। तो देखिए, दवाई का एक साइकोलॉजिकल पार्ट है कि वो हमको सही करता है, ठीक है। और अगर हम एक बार दवाई हमने ली, नहीं असर हुआ, तो हम क्या कहते हैं, आधी और दवाई ले लेते हैं।
1: जी
0: तो किसान की भी मनोवैज्ञानिकता वही है। वो उसने मान लीजिए एक बोरी उसकी आवश्यकता थी, उसको लगा कि अरे एक बोरी से मैं 1.5 बोरी भी डाल सकता हूं,
1: शायद उत्पादन बढ़
0: उत्पादन
1: जाए।
0: बढ़ जाए।
1: हाँ
0: लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव आना शुरू हुआ।
1: जी
0: अब हमने ये बात शुरू करी कि इसको दवाई नहीं, देखिए शब्दों का भी हमें एक प्रयोग जो होता है वो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। अब हमने कहा ये जहर है, हम सभी यही कहते हैं ना
1: जी
0: कि अरे ये सब जहर है, इन जहर का प्रयोग मत करिए। तो अब किसानों को भी लगने लगा है, तो वो क्या करें कि अब 1 बोरी की जगह, अब क्योंकि आदत है, अभी तक हम उसी पद्धति पे काम कर रहे थे, तो अब एक की बजाय वो आधी पे भी आ गए हैं।
1: शने शने सुधार होगा
0: बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पर होगा।
1: जी। बात हम करें खेत की, वहां की भूमि का आपने जिक्र किया, भूमि भी इतनी बीमार हो गई कि ये भी अलार्मिंग साइन है। किसानों को इस ओर आपके क्या शब्द होंगे?
0: खेती के लिए हमें भूमि को बचाना बहुत जरूरी है। हम
1: जी
0: बात करें जैसे खेत बचाओ की हम जो बात करते
1: जी
0: हैं, और अभी अगर आप ध्यान दें तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी हैं, उनका पूरा जो फोकस है वो इसी बात पर है कि हमको खेत भी बचाने हैं,
1: जी
0: जो कि अभी 1 जून से लेकर के हमारे 31 जून तक चलेगा ये। और आपने भी बात कही कि सतत प्रयास जब हम करते हैं तो वो स्थिर होते हैं, और
1: यकीनन
0: स्थिरता के लिए हमें सघन अभियान चलाने होंगे। हमने अभी हमारे कृषि जो विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से, जो हमारे 6 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हमने ग्राम कृषि महोत्सव आयोजित किए, जिसमें लगभग 1000 से 1100 की संख्या में मतलब किसान आते रहे। और उसका हमारा जो थीम थी वो यही थी कि हमको संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे खेत बचे रहेंगे, और खेत बचेंगे तो ही हम कृषि की बात कर पाएंगे। खेत बचाने से तात्पर्य यही है कि हमें कम से कम पेस्टिसाइड्स काम में लेने हैं, नेचुरल जो चीजें हैं, प्राकृतिक जो चीजें हैं, चाहे वो गाय से प्राप्त हो रही है, या हमें वर्मी कंपोस्ट की हम बात करते हैं उनसे प्राप्त हो रही है, या हम बायोचार बायोमास की बात करते हैं, इन पर ही हमको फोकस करना होगा। इससे हमारी कृषि की लागत भी कम होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, और हम जिसको हम चर्चा में यहाँ लेकर के बैठे हैं कि खाद्य सुरक्षा,
1: जी
0: वो भी हम उसको अचीव कर पाएंगे।
1: जी बहुत ही सुंदर बातें आपकी हैं। अब आसमान से मेघ बरसता है, पानी आता है, लेकिन कभी कभी जब फसलों की कटाई होती है उस दौरान हम ये देखते हैं कि आसमान से कुछ और भी बरसता है। हमारे खाली मैदानों पर, मकानों की छतों पर कुछ काले काले चिन्ह होते हैं। पता लगता है कि किसान भाइयों ने अपने खेत की पराली है उस जला दी है। यहाँ बहुत समझाइश की जा रही है, लेकिन आप अगर इस विषय पर और जोर देंगे तो खेत का जो उपजाऊपन है वो और बरकरार रहेगा।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। कई बार क्या होता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम अपना ज्ञान भी लगाते हैं, कि कोई भी हम जब कार्य करते हैं तो अगर आप पूर्व की जो पद्धतियां उसको देखें तो सबसे ज्यादा पंजाब है जहां पर की पराली बहुत ज्यादा जलाई जाती थी, क्योंकि गेहूं का उत्पादन वहां पे बहुत ज्यादा होता था।
1: जी
0: तो ऐसे में प्रदूषण पूरी तरह होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि किसानों को हमने दूसरी तरह की पद्धतियां बताई कि पराली को अगर हम मतलब उसके रोल बना दें तो वो हमारे चारे के काम में भी आ जाते हैं। उससे और दूसरी तरह की ईंट बनानी शुरू करी, ब्रिक जो होती है उस
1: जी,
0: तरह से
1: जी,
0: बन जाती हैं। साथ ही हमने कृषि विश्वविद्यालय में जीरो टिलेज पे काम किया। जीरो टिलेज मतलब कि जो पराली जो वहां पे रह गई है उसको वापस उस खेत में रोटावेटर चला करके उसमें मिक्स कर दिया जाता
1: जी
0: है, और फिर खेत को खाली छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा कि जो पराली वहां पर है वो धीरे धीरे उसमें एक तो मॉइस्चर रिटेन करेगी,
1: जी
0: जैसे पानी की भी कमी हो जाती है तो पानी मॉइस्चर रिटेन करती है, और उससे को खाद में कन्वर्ट हो
1: परिवर्तित हो
0: जाएगी, है
1: जाती
0: ना।
1: जी
0: तो उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अब क्योंकि हमारे कुछ कृषक जो भाई हैं उनको ये पता नहीं है, और वो उसको जलाने का काम करते हैं। जलाने से क्या हुआ कि जो पराली के मतलब हम बोल रहे हैं कि उससे हमको जो खाद मिलनी थी वो भी नहीं मिली, साथ ही हमने जो खेत के अच्छे जीवाणु थे उसको भी हमने जला करके खत्म

किसान बयां के आए बड़ाबू और आबाली जो पीढ़ियां छ वहां का लेकर खेती लायक जमीन का ताई सुरक्षित राखबो छ। ई अभियान का तहत कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय का विद्वान और स्थानीय प्रशासनिक जो अधिकारी छ वो गांव गांव जार किसान बयां के ताई आधुनिक खेती और मिट्टी प्रबंधन को प्रशिक्षण दे रहा छ और कई तरह की योजना का बारे में बता रहा छे। तो किसान भाई बनियो आपन जरूर जागरूक बना और अपना आसपास कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र हो तो वहां जार आपन जे भी पूछबो चाहवा, जे जानकारी लेबो चाहवा वह जरूर लिया और जैविक खेती की तरफ आपन जरूर बढ़ावा, क्योंकि जैविक खेती ऐसी चीज है किसान भाई बनाओ जो आपनी या जो खेत की मिट्टी छ जो या बंजर होती जा रही छ इम जान फूंक सके छ। किसान भाई बनियाओ अब देखो चौपाल कार्यक्रम जानकारियां को भी छ, नई नई बातें को भी छ, तो लारा को लाराई मनोरंजन भी छ। तो किसान भाई बनियाओ अब सुना चाह विश्वामित्र दादीज को गायो यो मीठो सो लोक भजन।

वाह जी वाह, कृष्ण भाई बने हो, लोक भजन को तो देखो आनंद ही आएगी। और अब चालता चालता अपने मौसम की जानकारी भी ले लें चा। आज 7 जून का दिन तापमान अधिकतम रियो 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहबा की संभावना छ। 17 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बाढ़ चालबा की संभावना छ और 59% नमी रहबा की संभावना छ। खाल 8 जून की बात करा तो अधिकतम 43 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तापमान

तूफान रहबा की संभावना छ। 23 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बाढ़ चाल बा की संभावना छ और 58% नमी रहबा की संभावना छ। कहीं कहीं आसमान में बादला छाया रहबा की भी संभावना छ। ई मौसम की जानकारी के साथ ही देखो आज चौपाल कार्यक्रम को टर्म भी पूरा होयो। तो दियो आपका धनंजय भाई के ताई आज्ञा चाला चा। फिर मिलेंगा। राम राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम चौपाल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102.6 MHz और साथ ही प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। अब हमारे श्रोता सुनेंगे लोक संगीत आधारित चिरमी।

ये रचना अभी आपने सुनी शिवा उपाध्याय और पार्टी के स्वर में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारी अगली रचना चुन्नी मारवाड़ी के स्वर में।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के प्रिय श्रोताओं, आपके दिल की धड़कनों को छूने के लिए एक बार फिर से आ रहा है वही प्रोग्राम जिसका नाम तो याद ही होगा आपको,
0: रात के सुकून भरे पलों में काव्य संगीत और अल्फाज की अदायगी से आपकी धड़कनों को महकाता हुआ कार्यक्रम रात रानी के फूल, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर रात रानी के फूल।
1: अब ये कार्यक्रम सुनिए अपने बदले हुए दिन यानी रविवार को रात 9 बजे।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है और हम सभी फिलहाल लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम चिरमिका। और आइए अब आपको सुनवाते हैं के बागड़ी की आवाज में ये मधुर लोकगीत।

करीम खान केजड़ला के स्वर में ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया और आइए अब आपको सुनवाते हैं चिरमी का आखिरी लोकगीत जिमा पड़बा वालो छ टोटो क्योंकि मन क्या न देखनो छ कोटो।

और इसी कोटा के गीत के साथ चिरमी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये स्वर था रतनलाल वर्मा का। हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम चिरमी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

मीका सिंह और योयो हनी सिंह के सम्मिलित स्वरों में आपने सुना ये गीत फिल्म वेलकम बैक से, कुमार की शब्द रचना और ए नाडियाद्वाला का संगीत। रात्रि में आपका आपके घरों तक का सफर और आपके सफर में हमेशा आपके साथ 90 सालों से आपका अपना आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल, और इसी चैनल से आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आपकी रेडियो साथी नेहा के साथ। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और मस्त गीत फिल्म मस्त से, सुनिधि चौहान और सोनू निगम के सम्मिलित स्वरों में।

संदीप चोटा की सरगम से सजा ये गीत अभी आपने सुना, जिसे हमने लिया है फिल्म मस्ती से। सुनिधि चौहान और सोनू निगम के स्वर और शब्द रचना नितिन बलकवर की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लज्जा से एक और लोकप्रिय गीत, जिसमें आवाज है अनुराधा पोडवाल की, संगीत अनु मलिक का और शब्द रचना समीर की।

कुछ महकते हुए पल सजाए जा रहे हैं आज आपके चंबल चैनल पर कुछ मनचली धुनों के साथ। मैं हूं आपकी रेडियो साथी नेहा आपके साथ, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कैलाश खेर और सपना मुखर्जी के सम्मिलित स्वरों में ये गीत फिल्म कॉर्पोरेट से।

श्रोताओं, कहते हैं जीवन में रंग हो तो हर पल खास बन जाता है, और जब बात संगीत के रंगों की हो तो भाई मजा ही कुछ और है। तो चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं जो अपने मधुर बोल और दिलकश धुनों के कारण आज भी श्रोताओं की पसंद बना हुआ है, और यकीन है कि आप इसकी धुन को सुनकर इस गीत को जरूर साथ में गाएंगे।

कुछ तड़कती भड़कती धुनों के बीच ये ठंडक भरा गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म डेंजरस इश्क से। चलिए एक और गीत आप तक पहुंचाते हैं फिल्म दीवार से। स्वर है उदित नारायण और रूप कुमार राठौड़ के।

रंगीन सफर में जी संगीत के इस रंगीन सफर में अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसमें लोक संगीत की मिठास, चुलबुलापन और दिल को थिरकाने वाली धुन सब कुछ एक साथ मिल जाते हैं। तो देर किस बात की, आइए सुनते हैं फिल्म डेंजरस इश्क से ये गीत।

विशाल भारद्वाज की तर्ज पर ये गीत अभी आपने सुना रेखा भारद्वाज के स्वर में फिल्म डेढ़ इश्किया से, और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर

0: स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें करियर

0: airforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331048। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ X पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102.6 MHz व मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 9 बज रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं आज का हमारा फिल्म संगीत आधारित विशेष कार्यक्रम रात रानी के फूल।

रात रानी के फूल कार्यक्रम सुनने वालों को राम नारायण मीणा का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे श्रोताओं, हमारे फिल्म संगीत में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में एक थीम के साथ हम आपके लिए पेश करते हैं। भारतीय फिल्म संगीत में शास्त्रीय और लोक दोनों विधाओं का खूबसूरत समन्वय महसूस किया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे गीत सुनवाने जा रहे हैं जिनमें प्रादेशिक संगीत और लोक साहित्य का सुंदर तालमेल है। हमें पूरा यकीन है कि अपनी मिट्टी की खुशबू से महकते हुए गीतों का ये कार्यक्रम आपके हृदय को कहीं ना कहीं जरूर स्पर्श करेगा।

कुछ आवाजों के हिस्से में रही चंद कविताएं, कुछ कंठों से फूटी सिर्फ दर्द भरी सारंगियां, कुछ आवाजों को आज भी सुनकर लगता है जैसे निर्जन रेगिस्तान में किसी मुसाफिर के अंजूरी में भर गया हो किसी मीठी झील का शीतल जल।

कुछ आवाजों को सुनकर गोधूली की वेला में रंभाने लगती है खूंटे पर बंधी गाय की बछड़ी। कुछ आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे गंगा मैया दे रही हो सुहागिनों को अमर सुहाग के वरदान। कुछ आवाजों पर रीझ कर अपने गांव लौटने लगता है एक परदेसी चांद।

कुछ आवाजें याद दिलाती हैं मोहब्बत की अमिट कहानियों की, कुछ आवाजें कम सुनी जाती हैं, लेकिन वे आवाजें जब जब दिल के करीब से गुजरी, रूह को छूकर गुजरी।

और कुछ अच्छा सा सुनने के लिए हमेशा ट्यून कीजिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल FM 102 मीडियम देव 212.31 मीटर और अब आपके मोबाइल ऐप पर न्यूज ऑन AIR देश दुनिया में कहीं भी अपनी भाषा अपना संगीत अपना रेडियो चैनल आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। रात रानी के फूल आकाशवाणी कोटा से रात की खामोशी में महकते हुए गीतों का कार्यक्रम।

कुछ आवाजों को सुनकर याद आती है बैलों की जोड़ी, गन्ने के खेतों में जवान होती मोहब्बतें, खेत की मेड़ पर किसी का इंतजार करता भोलापन, और कोरे कलशों के स्पर्श को तरसता पनघट के कुएं का वो मीठा जल।

कुछ आवाजें याद दिलाती हैं चटक रंगों से सजी चुनरियों की, कुछ आवाजें याद दिलाती हैं केसरिया पगड़ियों के गौरव की, कुछ आवाजों को सुनकर सब कुछ लुटाने को जी चाहता है।

0: कार में हो सवार या कर रहे हो वन विहार, हो गांव की पगडंडी या हो रातें ठंडी ठंडी,
1: क्या कहना है क्या सुनना है।
2: कहने सुनने के लिए मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाएं, बिना स्पेस दिए टाइप करें न्यूज ऑन AIR,
0: NEWSONAIR। इसे इंस्टॉल करें, ओपन करें, भाषा चुनें, कंटिन्यू करें
2: और अब आकाशवाणी के तमाम केंद्रों में से चुनें आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
0: तो जुड़े रहिए देश और दुनिया के किसी

0: कोने में
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से,
0: क्योंकि जब मोबाइल है आपके पास तो हम भी हैं आपके साथ।
2: आप सुन रहे हैं रात के सुकून भरे पलों में काव्य संगीत और अल्फाज की अदायगी से आपकी धड़कनों को महकाता हुआ कार्यक्रम रात रानी के फूल, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर रात रानी के फूल।

कुछ आवाजें अंकुरित होती हैं रेत के धुरों में, जहां कटीली झाड़ियों में पकते हैं मीठे बेर, जहां सूरज की किरणों को छूकर स्वर्ण सी हो जाती है बालू रेत, उन्हीं अभावों में बसी ढाणियों के कंठों में बहती हैं कुछ सुरीली सरिताएं। सुना है उन ढाणियों के बच्चे जब रोते हैं तो उनका रोना भी सुरीला।

समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, रास्ते बदलते हैं, आदमी द्वारा बनाई हुई चीजें बदलती हैं, लेकिन अपनी मिट्टी का प्यार कभी नहीं बदलता। दूध की धार की मिठास और उसका रंग नहीं बदलता। सर्दियों में अलाव के सहारे का अपनापन आज भी वही है। तुम्हारे गांव से लौटते समय कार के पीछे तड़प कर दौड़ती थी ना जो धूल, उन गलियारों को आज भी तुम्हारा इंतजार है।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पीव जी, ओ ढोला जी, ओ पीव जी, थोड़ी सी नचा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है शिक्षा नगरी का लोकप्रिय रेडियो चैनल आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर बिना स्पेस दिए।

0: हुए टाइप कीजिए NEWSONAIR। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।
1: गगरागी चंपा की डाली अर मधमाती होगी अजी, मने लागे छे के छोरी आती जाती।
0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर। प्रिय श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपने लोक की महक अनुभव की होगी। जी हाँ, फिल्म संगीत में कुछ ऐसे गीत हमने आपके लिए चुने जो किसी न किसी प्रदेश के लोक संगीत से प्रेरित रहे हैं। ये क्रम आगे भी जारी रखेंगे। बहरहाल, जो गीत आज के कार्यक्रम में आपने सुने उनका विवरण इस प्रकार है। फिल्म रुदाली में भूपेन हजारिका, फिल्म मैंने प्यार किया में शारदा सिन्हा, फिल्म रजिया सुल्तान का गाना कब्बन मिर्जा की आवाज में, फिल्म हीरो का गीत रेशमा की आवाज में, फिल्म नदिया के पार का गीत हेमलता और जसपाल सिंह की आवाजों में, फिल्म लेकिन का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म तलाश का गाना अलका याग्निक का गाया हुआ, पिया मिलन फिल्म का गीत हेमलता, रत्नेश सिंह और जसपाल सिंह की आवाजों में, लम्हे फिल्म का गीत था लता मंगेशकर, शिव हरी और इला अरुण का गाया हुआ, और फिल्म मंथन का गीत हमने सुना प्रीति सागर और साथियों के स्वरों में। आलेख, संपादन और प्रस्तुतकर्ता राम नारायण मीणा। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: हमारे श्रोता अभी आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत आधारित आज के हमारे विशेष कार्यक्रम रात रानी के फूल का, प्रस्तुति रामनारायण मीणा की।
1: हमने अमृत को कभी चखा तो नहीं, उसकी अमर मिठास शायद ऐसी ही होगी।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। हमारे श्रोता अब से कुछ ही देर में सुनेंगे मुंबई से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब से धरती बनी है सूरज उगता है और फिर उफक के उस पार ढुलक जाता है अगली सुबह फिर से आने के लिए। जब से बनी है धरती तब से हो रही हैं शामें, लेकिन हर शाम का रंग अलग अलग होता है। कोई शाम होती है गुलाबी रूमानी नाजुक नरम, तो कोई शाम ऐसी होती है मानो उसमें खुल गया हो उदासी का रंग आंसुओं का नमक। ऐसी शामों में दिल डूब डूब जाता है। कोई ऐसी शाम होती है जब मन सोच के समंदर में डुबकी लगाने लगता है। कोई उदासी कोई ख्याल कोई फलसफा ऐसी शामों का।

कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई गीत हमारी बात कहता नजर आता है, यूं लगता है कि यही बस यही तो थी हमारी कैफियत, हमें लफ्ज नहीं मिल रहे थे। कुछ एहसास शब्दों के परे होते हैं, कोई आवाज सीधे दिल में उतर जाती है क्योंकि ये दिल की आवाज होती है, दिल की पुकार, एक बेचैन दिल की पुकार। गाने इसीलिए हमारे हमदम, हमारे मीत बन जाते हैं।

गीत में हम ऐसे गीत लेकर आते हैं जो दिल के नर्म एहसासों को छुएं, जिन्हें सुनकर लगे कि हाँ बस यही तो मेरा गाना है। विविध भारती इसीलिए आपका हम सफर बन जाता है, क्योंकि हर पल आपका साथ निभाता है। अचानक गूंजता है कोई मधुर स्वर, जैसे रात में जुगनू चमक उठते हैं, अंधेरे में घिरी रात।

छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए हैं।

पहाड़ों पर पसरी खामोशी अच्छी लगती है। सदियों से खड़े हैं ये पहाड़ आसमान से बातें करते, हवाओं के कान में कुछ कहते। पहाड़, मौसम, नगमा।

मौसम सीधे मन पर असर डालता है। इसीलिए तो दुनिया बदहवास भागी जा रही है पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां बिताने। आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि कैसी भीड़ होने लगी है आजकल पहाड़ों

जैसे कहीं दूर से कोई पुकार रहा है, एक बेचैन पुकार, सदियों का इंतजार, सदियों की कशिश, एक आवाज जिसमें है उदासी की लहर। जाने कौन है जो किसी को रोकना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता। जाने कौन है जो वक्त को रोक लेना चाहता है। जाने कौन है जो दूर से पुकार रहा है।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और

0: श्री सुगियो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashwani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है।

0: और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
1: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए। और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते

0: बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानते हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें। और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर
0: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है। और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास,
1: शायद कागज खो भी जाते हैं। हाँ।

0: सकते नहीं।
1: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है, वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है, यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था, आज ये करने की जरूरत नहीं है। आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
2: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
1: बिल्कुल।
2: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
1: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
2: जी।
1: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई है, जहाँ शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
2: सर्जरीज में भी इसकी काफी
1: बिल्कुल
2: उपलब्धि है
1: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर 2024 में, हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया, उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान

0: तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है, ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है, और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता, और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है, और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर, तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीवी और कोविड 19 का भी जिक्र किया, तो आज

0: टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
1: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से, तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से, ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर, टीबी की जांच से लेकर, टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी के जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर, दवा से लेकर, जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
0: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड 19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड 19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
1: देखिए, कोविड 19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति

0: या ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिंस जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। US हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर फाइव मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के

0: अंदर है, तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं। लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है। और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं। और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on EIR. This program is also available on our YouTube channel News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है @gmail.com।

FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 11:44 हो रहे हैं और अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।